0: श्रोताओं, अभी आपने सुना शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरंजनी में प्रतिमा चौधरी का राग बैरागी में सितार वादन। ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देश

0: देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। Senior BJP leader Hemanta Biswa Sarma will be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya will administer him the oath of office in secrecy at a ceremony to be held at the Veterinary College playground in Khanapada area of the city. 4 ministers, including 2 from the BJP and 1 each from AGP and BPF, will also take oath along with the Chief Minister. They are Rameshwar Teli, Atul Boda, Charan Bodo and Ajanta Niyog. In a social media post, Mr. Sarma said that former Minister Ranjit Kumar Das will be NDA's candidate for the Assam Assembly Speaker's position. This will be the 2nd consecutive term for Mr. Sarma as Chief Minister of, and 3rd term for an NDA government in Assam. The swearing-in ceremony will be attended by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP President Nitin Nobin, among others. The NDA, comprising the BJP, Aham Gana Parishad, AGP and Bodoland People's Front, BPF, secured a sweeping mandate in the assembly polls, winning 102 seats in the 126-member house. The BJP bagged 82 seats, while AGP and BPF won 10 seats each. Mr. Sarma, who first became Chief Minister in 2021, is set to become the first non-Congress leader in Assam to serve 2 consecutive terms as CM. This will be the NDA's 3rd consecutive term in the state since the BJP-led alliance first came to power in 2016 under then-CM Sarbanand Sonowal. Enforcement Directorate, ED, has arrested former Fire and Emergency Services Minister of the Government of West Bengal, Sujit Basu, in Kolkata in connection with the South Dumdum Municipality recruitment scam. Officials at the ED said that Bose allegedly recommended around 150 candidates for various posts under the South Dumdum Municipality in exchange for pecuniary benefits during the former TMC regime. The officials noted that ED has traced direct proceeds of crime in the form of flats allegedly acquired by him in lieu of providing municipal jobs to various individuals. The probe agency have also identified

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर अब प्रस्तुत है चिंतम, जिसमें आज आप सुनेंगे रहीम के विचार।
1: शुभ प्रभात। आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे लघु वार्ता रहीम के विचार। आलेख है डॉक्टर विजयानंद का और वाचन स्वर नीलम मलकानिया का।
2: अब्दुल रहीम खां खान खाना उर्फ रहीम भक्ति काल के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। उनके काव्य में समाहित भाव पूरे मानवीय जगत को प्रेम, भाईचारे और भक्ति की रीति नीति का बड़ा संदेश देते हैं। उनका मानना था कि सबको सलाम और राम राम तो कीजिए, पर मित्र उसे ही मानिए जो वक्त पर साथ निभाता हो। रहीमन धोखे भाव से मुख से निकसे राम, पावत पूरन परम गति कामाधिक कौ धाम। अर्थात यदि कभी धोखे से भी भाव पूर्वक मुख से राम का नाम लिया जाए तो कल्याण हो जाता है, भले ही वो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाप आदि से ग्रस्त क्यों न हो। राम के नाम में इनसे बचाव खुद ब खुद हो जाता है। राम की व्यथा और कथा सुनने के बाद व्यक्ति में सारे अवगुणों की जगह बचती ही नहीं। मुनि नारी पासान ही कपि पशु गुहु मातंग, तीनों तारे राम जो तीनों मेरे अंग। जब अहिल्या, पशुवत वानर सेना और आदिवासी पदराज सब राम की कृपा से कल्याण के सत्य पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, फिर भूलवश अहंकार और निजता का भाव तो बहुत छोटी सी बात है। राम नाम जान्या नहीं भई पूजा में हानि, कही रहीम क्यों मानी है जम के किंकर कानी। राम के बारे में पूरी तरह जान लेने के बाद तो जीवन चेतना के दीक्ष में प्रवेश कर जाता है, जहां अंधेरे में भी रोशनी के दर्शन होते हैं। राम की महिमा को जाने बगैर उनकी चर्चा व्यर्थ है। वे सच्चे मन में स्वतः उतरते हैं और उचित मार्ग के दर्शन करवाते हैं। राम नाम जान्यो नहीं जान्यो सदा उपाधि, कही रहीम तिहु आपुनो जन्म गवायो वादी। जिन लोगों ने अपने धन, पद और उपाधि को ही जाना,

0: राम के नाम को जाना नहीं है, उनका जन्म व्यर्थ है। वे केवल वाद विवाद कर अपना जीवन नष्ट करते हैं। वे राम राम करें या सलाम करें, उनका कुछ नहीं होने वाला। सबको सबको ऊ करे कह सलाम कह राम, हित रहीम तब जानिए जब कछु अटके काम। रहीम ने अपनी भक्ति से भारतीय जनमानस को नहीं, पूरे जीवन जगत को अपने चिंतन दर्शन से प्रभावित किया और सोच विचार कर जीवन जीने की कला सिखाई। उनका ये भी मानना था कि यदि कोई प्रियजन किसी कारण से रूठ गया हो तो उसे बार बार मनाना चाहिए। जिस तरह मूल्यवान मोतियों की माला टूटकर बिखर जाती है तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरोकर पुनः माला का रूप मिल जाता है। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार, रहीमन फिर फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। हालांकि वे ये भी कहते हैं कि सच्चे प्रेम के संबंध को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी रिश्तों में मनमुटाव हो भी जाए तो कड़वाहट नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई सच्चा रिश्ता एक बार टूट जाता है तो फिर बिना गांठ के नहीं जुड़ता। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ परी जाए।
1: और आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस में बालकांड का भाग 53।

विश्व मोहिनी के स्वयंवर में अपने को कपि के रूप में पाकर नारद मुनि के क्रोध की सीमा ना रही। वो उपहास के पात्र बन गए थे। ब्राह्मणों के वेश में वहां उपस्थित शिव के गणों ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी। नारद मुनि का आक्रोश श्री हरि के प्रति उमड़ा, जिन्होंने सुंदर रूप का वरदान मांगने पर उन्हें बंदर का समूह और भयंकर शरीर दे दिया। अतः मुनिवर ने उन्हें जी भरकर कोसा, कहा, जो शरीर धारण कर तुमने मुझे ठगा है तुम्हें वही शरीर मिलेगा, ये मेरा शाप है। तुमने मेरा रूप बंदर का सा बना दिया, अतः बंदरों की ही सहायता से तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। प्रभु ने नारद जी का शाप शिरोधार्य किया और अपनी माया लीला वापस ले ली। नारद मुनि अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़कर आक्रोश में शाप देने के लिए क्षमा मांगी। प्रभु ने उन्हें शांति प्राप्त करने के लिए शिव जी का शतनाम जपने का परामर्श दिया।

0: रामचरितमानस में अभी आप सुन रहे थे बालकांड का भाग 53। इसी के साथ रामचरितमानस का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। सुबह के ठीक 6:55 होने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता। पश्चिमैशियायाः संघर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु संकटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमंत्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे सरदार धाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां संबोधयन् आसीत्।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान यत् केन्द्र प्रशासनस्य निरंतर प्रयास ही भारतम पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरात् आरभ्य संयुक्तारबामीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली इत्येतेषां देशानां षड्दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय पञ्चदेशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्रीमोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामीरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतया ऊर्जा सहयोगे सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यतः। स्वीय यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमंत्री शुक्रवासरे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पांच देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडप्पडी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार

0: को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
1: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduce consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said there's a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
3: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
2: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी ऑन अ 6th विजिट टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे एंड इटली फ्रॉम फ्राइडे। ऑन द फर्स्ट लेग ऑफ हिज 5 नेशन विजिट मिस्टर मोदी विल रीच यूएई ऑन फ्राइडे, where he will meet the President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Senior BJP leader Himanta Biswa Sharma will be sworn in as the Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya will administer him the oath of office and secrecy at a ceremony to be held at the Veterinary College playground in Khanapara area of the city. 4 ministers, including 2 from the BJP and 1 each from the AGP and BPF, will also take oath along with the Chief Minister. They are Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Niyog. In a social media post, Mr. Sharma said that former Minister Ranjit Kumar Das will be the NDA's candidate for the Assam Assembly Speaker's position. This will be the second consecutive term for Mr. Sharma as Chief Minister and third term for an NDA government in Assam. The swearing-in ceremony will be attended by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP President Nitin Naveen, among others. The NDA, comprising the BJP, Ahom Gana Parishad, AGP, and the Bodoland People's Front, BPF, secured a sweeping mandate in the assembly polls, winning 102 seats in the 126-member house. The BJP bagged 82 seats, while AGP and BPF won 10 seats each. Enforcement Directorate, ED, has arrested former Fire and Emergency Services Minister of the Government of West Bengal, Sujit Basu, in Kolkata in connection with the South Domdom Municipality recruitment scam. Officials at the ED said that the Bose

इसी भजन के साथ कार्यक्रम संगीतिका अब यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे संगीतिका के अंतर्गत प्रत्युष शर्मा द्वारा भजन। इनके साथ संगत कर रहे थे तबले पर सलीम अहमद, हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष और बांसुरी पर विनय प्रसन्ना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त हो चुका है 7:33:17। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

जी हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो और मैं हूँ आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त जो लेकर आती है हर बार एक नया प्यारा सा गीतों भरी गुड मॉर्निंग ये खूबसूरत सा कार्यक्रम और लेकर आती है छोटी सी मुस्कान और कोशिश रहती है एक उस छोटी सी मुस्कान को थोड़ा सा और बड़ा बनाने की। और जरिया क्या होता है? जी हाँ, हमारा ये कार्यक्रम और इसमें प्ले होने वाले बहुत ही खूबसूरत से गीत।

जी हाँ दोस्तों, आप भी आ जाइए। दोस्तों कहते हैं ना कि हर सुबह दो चीजें लेकर आती है अपने साथ, एक तो नई रोशनी और साथ ही कुछ नए सपने। कभी कभी हम रात में बड़े बड़े सपने देखते हैं। कोई खुद को सफल इंसान के रूप में देखता है, तो कोई अपने परिवार को खुश देखता है, तो कोई बस इतना चाहता है कि उसकी जिंदगी में सुकून बना रहे। लेकिन मजेदार बात तो पता है क्या है, अलार्म बजते ही सारे सपने ऐसे भाग जाते हैं जैसे स्कूल टीचर आते ही पीछे वाली बेंच के बच्चे सीधे हो जाते हैं और कहते हैं ना, सब चीज़ें भूल जाते हैं, क्या सपना देख रहे थे, क्या नहीं देख रहे थे, सब कुछ भूल जाते हैं जैसे ही आंखें खुलती हैं।

0: जी आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और इस खूबसूरत से कार्यक्रम को लेकर आपके साथ आज इस शो में हूँ मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त। गीतों के साथ साथ अगर कुछ संदेश जानकारी भी आपको सुनवा दी जाए तो क्या रहेगा, सोने पे सुहागा ना। तो सुनते हैं पहले ये संदेश, उसके बाद जारी रखेंगे अपना ये सफर।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जी हाँ, जानकार तो बनिए और साथ ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी तैयार हो जाइए, क्योंकि दोस्तों हर सुबह सिर्फ नींद से उठने का नाम नहीं, हर सुबह अपने सपनों को फिर से याद करने का मौका है। क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। हो सकता है अभी रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाएं, और ये भी हो सकता है कि कभी कभी आप खुद पर भी शक करने लगे, लेकिन याद रखिए सूरज भी हर दिन अंधेरे से लड़कर ही चमकता है।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जी हाँ, जानकार बनिए और सतर्क रहिए, और साथ ही साथ अपना जो जमा पूंजी है उसको भी सुरक्षित रखिए। फिलहाल वक्त हो चुका है 7:50, ऑलमोस्ट हो गए हैं 7:51। कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और आपके साथ हूँ मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। बात यहाँ कर रहे हैं सपनों की। सुबह सबसे ईमानदार होती है, ये तो सभी को पता है, लेकिन अगर आप उदास हो और वो चुपचाप आपके पास बैठ जाती है, कौन? सुबह। तो आप उसे खुशी में बदल सकते हैं, यानी आपकी जो उदासी है उसे सुबह जो है वो खुशी में बदल सकती है। और साथ में अगर ठंडी ठंडी हवा चल रही हो गुनगुनाते हुए, तो आपकी सुबह को और भी खूबसूरत बनाती है। और इस खूबसूरत सुबह के साथ जो देखते हैं आप सपना, जो आपने रात भर देखा है, उसे भी पूरा करने की पूरी जो है ना ख्वाहिश जो है वो और जोर पकड़ लेती है।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जी हाँ दोस्तों, वक्त हो चुका है 7:56 और ये हुए पूरे 25 सेकेंड्स। तो दोस्तों, आज की सुबह खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए कि चाहे हालात कैसे भी हों, आप अपने सपनों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, अगर ज़िंदगी कभी बहुत तेज़ भागने लगे ना, तो कभी कभी सुबह की चाय लेकर बालकनी में बैठ जाना, और क्योंकि कई बार जो है ना, जवाब नहीं होते हैं, किताबों में नहीं होते हैं, और अगर आप उन जवाबों को कहीं ढूंढना चाहते हैं तो शायद कुछ खाली वक्त अपने साथ बिताइएगा, उन जवाबों को जो है वो आप ढूंढ पाएंगे। क्योंकि सुबह की जो ठंडी हवा और सूरज की जो गर्म रोशनी मिलती है आपको, आपके मन को और शांत करती है और आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको एक तरोताजगी देती है।

तो दोस्त बैठे क्यों हैं, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? उठिए, मुस्कुराइए और इस नई सुबह को दिल से गले लगाइए। और फिलहाल इस कार्यक्रम को यही समाप्त करने की जो है ना मुझे इजाज़त दीजिए। और इसी तरह से आप सभी के लिए बहुत खूबसूरत गीतों के साथ फिर से गीतों भरी गुड मॉर्निंग को लेकर जल्द हाजिर होंगी। और आप अपना ख्याल रखें, अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करें और सपने पूरे भी करें। ध्यान रखें अपना, स्वस्थ रहें। आई होप आपको ये कार्यक्रम भी पसंद आया होगा। और इसी आशा के साथ अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के ठीक 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व सरमा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को

0: बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज चार अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन चार कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
2: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
6: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में।

0: वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
2: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
4: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सर फिरोजी।
5: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया।

0: वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam Municipality Recruitment Scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
2: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
1: Prime Minister said that India spends lakhs of crores of rupees in foreign exchange to import many products from abroad, and the crisis has led to steep rise in imported goods and severely disrupted global supply chains. Mr. Modi said that his government is working to ensure the impact of the crisis on Indians is minimal.
2: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
1: Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma will be sworn in as the Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya will administer him the oath of office and secrecy at a ceremony to be held at the Veterinary College playground in Khanapara area of the city. 4 ministers, including 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF, will also take oath along with Chief Minister. We have more from a correspondent.
3: Along with Dr. Himanta Biswa Sarma as Chief Minister, 4 other members of the Council of Ministers will also be sworn in today. The 4 cabinet ministers are Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Niyog. The swearing-in ceremony will be witnessed by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers of BJP-ruled states. The Veterinary College ground at Khanapara in Guwahati has been fully decorated to host the swearing-in ceremony. Elaborate arrangements

0: Sharma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Four ministers, two from BJP and one each from AGP and BPF, to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Domdom municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a six-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बहरान के पेश नज़र आवाम से ज़रे मुबादला बचाने के लिए ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में आसाम के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनके हमराह चार वज़रा भी हलफ लेंगे, जिनमें बीजेपी के दो, एजीपी और बीपीएफ के एक एक वजीर होंगे। ईडी ने जनूबी दमदम म्यूनिसिपलिटी भर्ती घोटाले मामले में मगरबी बंगाल के साबिक वजीर सुजीत बसु को गिरफ्तार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमे से मुत्तहिदा अरब इमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के छह रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई कमजोर हालत में है और बामुश्किल कायम है। और बांग्लादेश ने भारत में मुनक़िदा मर्दों के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से कौमी क्रिकेट टीम के दस्तबरदार होने की वजूहात जानने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बहरान के दौरान ज़र मुबादला बचाने के लिए आवाम से ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। कल शाम गुजरात के वडोदरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कोरोना के वक्त के तौर तरीकों जैसे घर से काम करने, ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल मीटिंग्स, नीस पेट्रोल और डीजल के कम इस्तेमाल को दोबारा अपनाने की अपनी सबका अपील को दोहराया। दरामदात में कमी लाने और मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इज्तमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम सभी को मिलकर मुल्क के वसाइल पर बोझ कम करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए।
2: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गाँव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत बैरून मुल्क से बहुत सी मसनूआत दरामद करने पर ज़र मुबादला की मद में लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है, जबकि मौजूदा बहरान के बाईस दरामद होने वाली अशिया की कीमतों में काफी इजाफा हो गया है और आलमी सप्लाई चेन भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि इस बहरान के असरात मुल्क के शहरियों पर कम से कम पड़े।
2: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
1: उन्होंने कहा कि जब तक हालात मामूल पर नहीं आ जाते, मुल्क के मुफाद में हर छोटा और बामानी कदम जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक बसों और कार पुलिंग को अपनाने के जरिए पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील का इरादा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हालात के मामूल पर आने तक

0: सोना खरीदने से गुरेज करने की भी अपील की। एक अहम सियासी और तारीखी पेशरफ्त के तहत हेमंत बिस्वा सरमा लगातार दूसरी मुद्दत कार के लिए आसाम के वजीर आला की हैसियत से आज हलफ लेंगे। वह आसाम की तारीख में लगातार दूसरी मरतबा इस ओहदे पर फाइज होने वाले पहले गैर कांग्रेसी लीडर होंगे। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, डॉ सरमा और उनकी वजारती कौंसिल को ओहदे और राजधारी का हलफ दिलाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के बतौर वजीर आला के अलावा वजारती कौंसिल के चार अराकीन भी आज हलफ लेंगे। ये चार काबिनी वजीर हैं रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग। हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दिगर कई मरकजी वजरा और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वजराए आला शिरकत करेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब की मेज़बानी के लिए गुवाहाटी के कानपाड़ा के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर सजाया गया है। तकरीब के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों के इज्तिमा को देखते हुए खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। कामरूप मेट्रो ज़िला इंतजामिया ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक और गाड़ियों की हसब मामूल आमोदरफ को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने मगरबी बंगाल हुकूमत के फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के साबिक वजीर सुजीत बसु को कोलकाता में जुनूबी दमदम म्यूनिसपल्टी भर्ती घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी हुकाम के मुताबिक सुजीत बसु पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने साबिका टीएमसी हुकूमत के दौरान जुनूबी दमदम म्यूनिसपल्टी में मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्री के लिए तकरीबन 150 उम्मीदवारों की सिफारिश माली फायदे हासिल करने के लिए की थी। उन्होंने बताया कि ईडी ने रिश्वत से हासिल शुदा आमदनी के बराह रास्त शवाहिद का सुराग लगाया है, जिनमें ऐसे फ्लैट्स शामिल हैं जो मुबैना तौर पर मुख्तलिफ अफराद को म्यूनिसिपल नौकरियां दिलाने के एवज हासिल किए गए थे। तहकीकती एजेंसी ने उनके बैंक खातों में बड़ी मकदार में नकद रकम जमा होने की भी निशानदही की है। सुजीत बसु को आज खसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। ये थी खबरें। अब ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आइंदा जुमे से मुत्तहदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। ये दौरा हाल ही में तय पाने वाले भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे एफटीए के तनाजुर में यूरोप के साथ खासतौर पर तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में भारत की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाएगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई नाजुक हालत में है और बमुश्किल कायम की है। जनाब ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब ट्रंप महीनों तवील जंग के खात्मे के ईरान के तजवीज़ को पूरी तरह नाकाबिले कबूल करार देकर मुस्तरद कर चुके हैं। ईरान के साथ जंगबंदी की तजवीज़ को मुस्तरद किए जाने के जिम्न में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों को बताया कि जंगबंदी इंतहाई नाजुक सूरतहाल का शिकार है। सदर ट्रंप ने ईरान की जानिब से भेजी गई तजवीज़ को रद्दी की टोकरी में डालने के काबिल करार दिया। व्हाइट हाउस में जच्चा की सेहत देखभाल से मुतालिक तकरीब में ट्रंप ने शुरका से कहा कि वो अपनी बातों को मुख्तसर करें क्योंकि उन्हें ईरान के मामले पर जनरलों के बड़े ग्रुप से तबादला ख्याल करना है। सदर ट्रंप को इतवार के रोज ईरानी तजवीज़ मौसूल हुई जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वो 28 फरवरी को ईरान के साथ शुरू हुए जंग के खात्मे का कोई रास्ता निकल आएगा। इस जंग से तेल की आलमी सप्लाई के अहम समुद्री रास्ते मसदूद हो गए हैं जिसके नतीजे में कई मुल्कों में तेल की किल्लत पैदा हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ जंगबंदी को इंतहाई नाजुक करार देने के बाद तेल के बाजार लड़खड़ा गए हैं और भारतीय कशीदगी में इजाफा हो गया। जनाब ट्रंप की जानिब से इस तबसरे के बाद जंगबंदी के बरकरार रहने से मुतालिक ताज़ा खदशात में इजाफा हो गया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी अमन तजावीज़ पर अपना जवाब भेजा जिसमें सभी महाजों पर मुखासमत के खात्मे, अमरीकी पाबंदियां हटाने, ईरान के मुंजमद असासे जारी करने, अमरीका की बहरी नाकाबंदी खत्म करने और आबनाए हरमुज पर ईरान के इंतजाम को तस्लीम करने की बात कही गई थी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: ईरान के मुतालबात बुनियादी तौर पर फौरी

0: न्यूक्लियाई रियायतों की बजाय जंग के हालात और इकतसादी सूरत हाल पर मबनी है, जिसे वाशिंगटन इस मरहले पर कबूल करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहा। दोनों फरीकों के दरमियान काफ़ी दूरी है और मसालेहतकार मुश्तरक हल ढूंढने में जद्दोजहद करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पूरे मगरबी एशिया में जंग का दबाव और इकतसादी दबाव बढ़ता जा रहा है। इस दौरान मुत्तहदा अरब अमारात में हुकूमत कौमी करने के लिए कौमी कमेटी तश्कील दी है। मुत्तहदा अरब अमारात अपनी अहम तंसीबात और तवानाई के मराकज़ पर हमलों के जवाब में बैनुल अक्वामी कानूनी जवाबदेही तय करने और हर्जाना हासिल करने की कोशिश कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: भारतीय बहरिया के नामजद सरबराह वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि मुल्क सरहद पार से होने वाली किसी भी जसारत से निमटने और उसका कलाकमा करने के लिए तैयार है। मगरबी बहरी कमान के कमांडिंग इन चीफ फ्लेग ऑफिसर जनाब स्वामीनाथन ने कहा कि भारत कई सालों तक दहशतगर्दी से मुतासिर रहा है और वह मुल्क में बिलखसूस बैरूनी सरजमीन से की जा रही दहशतगर्दी को कबूल नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन दहशतगर्दों और दहशतगर्द कैंपों को खासतौर पर निशाना बनाया गया जिन्होंने साल 2025 में पहलगाम वाकये को अंजाम दिया था। जनाब स्वामीनाथन पाकिस्तानी दिफाई अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तबसरों से मुतालिक रिपोर्ट पर रायजनी कर रहे थे, जिसमें आसिम मुनीर ने कहा था कि इस्लामाबाद के खिलाफ मुस्तकबिल में किसी भी तरह की मुहिमजोई का नतीजा इंतहाई खतरनाक और वसीतर होगा। जम्मू कश्मीर में हुक्काम ने जरूरी इजाजत नामे हासिल किए बगैर काम करने की पादाश में बाइक और कैब खिदमात फराहम करने वाली कंपनी रैपिडो पर पाबंदी लगा दी है। जम्मू के आरटीओ जसमीत सिंह ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि रैपिडो कंपनी एग्रीगेटर सर्टिफिकेट के बगैर काम कर रही थी, जिससे मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में उसकी खिदमात गैरकानूनी हो गई है। कानून की वजारत आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर के ब्लॉकों की नीलामी का दूसरा मरहला शुरू करने जा रहा है। दूसरे मरहले के तहत वजारत जम्मू और कश्मीर हुकूमत के ताउन से नीलामी के लिए 12 चूना पत्थर के ब्लॉक्स पेश कर रहा है। ये ब्लॉक अनंतनाग, राजौरी और पुंछ अजला में वाक़ हैं और इनमें नए शिनाख्तशुदा ब्लॉक्स के साथ साथ दूसरी कोशिश के साथ दोबारा नीलामी किए जाने वाले दोनों ब्लॉक्स शामिल हैं, जो वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल और सनअत की मुस्तकिल शिरकत के तई हुकूमत के अज़्म की अक्कासी करते हैं। बांग्लादेश में भारत में मुनाक़िदा मर्दों के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से कौमी क्रिकेट टीम के दस्तबरदार होने की वजूहात जानने के लिए एक 3 रुकनी तहकीकती कमेटी तश्कील दी है। 10 मई के सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक साबिक एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर AKM वलीउल्ला और इस कमेटी की सरबराही करेंगे, जबकि बांग्लादेश के साबिक कप्तान और मौजूदा चीफ सेलेक्टर हबीबुल बशर और सुप्रीम कोर्ट के वकील फैसल दस्तगीर कमेटी के अरकान में शामिल हैं। कमेटी को हिदायत दी गई है कि वह 15 काम के दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराया। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
2: शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम मोदी के गुजरात दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम ने सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनाक़िदा सोमनाथ अमृत महोत्सव के दौरान कहा कि सोमनाथ मंदिर भारत की अटूट श्रद्धा की अलामत है और ये मंदिर हजारों बरसों से तहरीक का सरचश्मा रहा है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने एक अहम खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है कि मुल्क में हर तरह के ईंधन और तवानाई का वाफिर जखीरा मौजूद है, हुकूमत का बयान। इसी अखबार ने एक और अहम सुर्खी लगाई है, हुकूमत ने कहा कि VVG रामजी एक्ट मुल भर के देही इलाकों में 1 जुलाई से नाफिज होगा।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बहरान के पेश नज़र आवाम से ज़र मुबादला बचाने के लिए ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा हेमंत बिस्वा शर्मा आज गुवाहाटी में आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। ईडी ने जनूबी दमदम म्यूनिसिपलिटी भर्ती घोटाला मामले में मगरबी बंगाल के साबिक वजीर सुजीत बसु को गिरफ्तार किया है।

0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से मुत्तहिद अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली के 6 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई कमजोर हालत में है और बमुश्किल कायम है। और बांग्लादेश ने भारत में मुनक़िदा मर्दों के ICC T20 वर्ल्ड कप से कौमी क्रिकेट टीम के दस्तबरदार होने की वजूहात जानने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 8:45 और 15 सेकेंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित राम नारायण द्वारा सारंगी पर बजाया राग अलहिया बिलावल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप सुन रहे थे पंडित राम नारायण द्वारा सारंगी पर बजाया राग, राग अलहैया बिलावल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810

0: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है।
1: हम सब लोगों ने अपने जीवन काल में, अध्ययन काल में लाइब्रेरी जरूर देखी होगी। पुस्तकालय महत्वपूर्ण स्थल होता है, जहां दुनिया भर के लेखकों की लिखी गई, अनुभव की गई और साझा की गई जानकारियां एक पुस्तक के माध्यम में वहां संरक्षित रहती है। और जो भी लोग अपने अध्ययन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो पुस्तकालय जाते हैं, वहां अपने मनपसंद की किताबें देखते हैं और वहां से उन अर्जित की गई, संरक्षित की गई ज्ञान को अपने फायदे के लिए, अपने समग्र विकास के लिए उपयोग करते हैं। जैसे जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होता जा रहा है, उसी तरह से लाइब्रेरी का महत्व बढ़ रहा है और लाइब्रेरी की उपयोगिता भी बढ़ रही है। लाइब्रेरी का महत्व बढ़ रहा है, इसके रोल भी बदल रहे हैं, जिम्मेवारियां भी बदल रही है और एक स्किल डेवलपमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किस तरह से पुस्तकालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं आधुनिक युग में, खास करके हमारे जो पर्यावरण से जुड़ी हुई जानकारियां हैं उसके लिए भी। विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर पीके भट्टाचार्य। आप निदेशक हैं, साथ ही आप एक सीनियर फेलो हैं नॉलेज रिसोर्स सेंटर में, जो कि द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है दिल्ली में। डॉक्टर पीके भट्टाचार्य जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: एक तो हरित कौशल विकास की बात करते हैं, जो ग्रीन स्किलिंग की बात होती है, और उसमें इस चीज को, पुस्तकालय की भूमिका आप किस रूप में देखते हैं और इस तरह का जो विकास है वो व्यापक स्तर पर लागू करना क्यों जरूरी है?
2: तो आपका इस प्रश्न का जवाब हम दो तरीके से देंगे। पहले हम देते हैं जो ग्रीन स्किल को, जो हम बोलते हैं स्केल अप करना, तो ये बढ़ाने के लिए क्यों जरूरी है आज के दिन में। देखिए, हम सब जानते हैं जो भारत कोशिश कर रहा है, जो हम लोग 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में आए और 2070 तक हम चाहते हैं नेट जीरो कंट्री बन जाए। अब ये सब चीज बनने के लिए आपको कई सारे और चीज में बदलाव लाना पड़ेगा, जिनमें सबसे पहले आता है जो एक सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस जो फॉलो करना पड़ेगा आपका इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री को पहले जो भी प्रोसेस फॉलो करके आजकल वो बिजनेस कर रहे हैं, उन चीज को बदल के न्यू टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, नए नए एरियाज पे काम करना पड़ेगा और वो सारा काम देखना पड़ेगा जो सस्टेनेबल हो। अब ये सस्टेनेबल जब हम ये वर्ड बोलते हैं, इसमें जो चीज सबसे जरूरी होती है, जो एक तो टेक्नोलॉजी का यूज और दूसरा जो उन टेक्नोलॉजी को चलाने वाला, जो कि एक ऐसा स्किल के साथ, ऐसे हरित कौशल का साथ बंदा आएगा जो उन इंडस्ट्रीज का जो भी नया चेंजेस है उनको लागू कर पाए। अब इस हिसाब से अगर देखें तो मैं कुछ आंकड़ा आपको अगर दूं तो आपको समझ में आएगा। जो गवर्नमेंट सोचते हैं 2030 तक हमें कम से कम 32 लाख अतिरिक्त हरित कौशल श्रमिकों की आवश्यकता है, जिनमें लगभग 45% जो आज के दिन में जैसे काम कर रहा है उनमें बदलाव लाना पड़ेगा, जो हरित कौशल के ऊपर काम करेंगे। अब डिफरेंट सेक्टर पे काम होगा, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल आज हम बोलते हैं उनमें चेंज होगा, वेस्ट मैनेजमेंट में चेंज होगा। अब इन सब एरियाज में जो भी काम होगा वो सस्टेनेबल स्पेसिफिक हो। ये जो हमारा खाद्य वगैरह आगे और जरूरत होगी तो उस चीज के लिए हमें चाहिए होगा जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, तो ये सारे चीज की जरूरत होगी और इसी चीज के लिए हमें चाहिए ये हरित कौशल वाले काफी सारे लोग, जो एक्चुअली आज के दिन में हमारे अंदर कमियां हैं। दूसरी जो क्वेश्चन आपने पूछा था, जो लाइब्रेरी इसमें कैसे मदद कर सकती है, अब देखिए लाइब्रेरी स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन है, हम सब कोई जानते हैं लाइब्रेरी में बहुत नॉलेज है, आज तक हम नॉलेज लोगों को दे के आए हैं। अब इनमें अगर हम ऐसा काम कुछ करें जो उन नॉलेज से ऐसे छोटे छोटे आप कह सकते हो कोर्सेस बनाए, कोर्स मॉड्यूल बनाए, और जो कोर्स मॉड्यूल जो सस्टेनेबिलिटी ड्रिवन हो, सस्टेनेबिलिटी को फोकस करके बनाया हो, उन कोर्स मॉड्यूल अगर लाइब्रेरी से छोटे छोटे कोर्सेस चलाया जाए, और या तो एक महीना वाला या एक दिन वाला, 7 दिन वाला, ऐसे कोर्सेस चलाया जाए और जो लोग इन कोर्स को वैल्यू एड करेंगे, जो लोग इस कोर्स को प्राप्त करने के बाद इनको यूज करके अपना नौकरियां वगैरह मिलेगा, अगर ऐसा स्थिति में हम पहुंचा सके या तो अपना निजी बिजनेस शुरू करेगा ऐसे स्थिति में पहुंचा सके, तो मैं सोचता हूं जो लाइब्रेरी अपना प्रॉपर

0: काम कर रहा है।
1: इसको और आगे बढ़ाने के लिए पुस्तकालय के संसाधनों का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है इस तरह के हरित कौशल विकास के लिए?
0: अब देखिए, लाइब्रेरी बेसिकली बहुत तरीके से कर सकते हैं। जो चीज आपको एक एग्जांपल दू, हमारा जो गवर्नमेंट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाए हैं, इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बोला जा रहा है जो पुस्तकालय में जो लोग बैठे हैं, इनकी काम केवल अपनी लोगों को पुस्तक या तो नॉलेज सर्विस प्रोवाइड करना नहीं होना चाहिए, ये आसपास की जो समुदाय है उन लोगों के साथ भी मिलके उनका भी नॉलेज गेन कराना जरूरी है, उन लोगों को भी शिक्षा देना जरूरी है। अब मैं जो चीज कर रहा हूँ, ग्रीन स्किल में बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत लोग चाहिए जो इस टाइप की इंडिया को आगे ले जाने के लिए काम करेगा। हमें लाइब्रेरी फील्ड में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें सिखाया जाता है इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड सिंथेसिस, और इन दोनों चीज के दौरान हम लोग ये सीखते हैं कैसे इंफॉर्मेशन डिफरेंट जगह से लेके और जगह से लेके इन चीज को किस तरीके से हम एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट एक रिपोर्ट फॉर्म में हम अपना यूजर को देते थे। इस केस में हमें जो चीज करना पड़ेगा, जो हम सस्टेनेबिलिटी की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से छोटा छोटा इंफॉर्मेशन लेके उसको एकत्रित करके हमारा कोशिश ये होना चाहिए जो हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाएं। अब जो हम पहले रिपोर्ट बनाते थे अब हम उसको मॉड्यूल बना रहे हैं। अब इन मॉड्यूल को हो सकता है जो कुछ केसेस में हमारे शायद इतनी नॉलेज लेवल नहीं होगा, हो सकता है, जो चीज हम टेरी लाइब्रेरी में भी फेस किए हैं। अब उस केस में क्या होगा, जो आपको जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स है, जो एक्सपर्ट है उस फील्ड की, उनसे एक बार वैलिडेट कराना, उनसे एक बार समीक्षा कराने का भी जरूरत है। वो उसको देख के अगर आपको बता दे जो बहुत बढ़िया बना है आपका ये मॉड्यूल, तो फिर इन चीज को लेके हम ये हरित कौशल का जो प्लान बोल रहे थे ये चीज आगे ले जाए।
1: विभिन्न हितधारकों के लिए अगर हम बात करें कि जो हरित कौशल की बात करते हैं और जिसमें पुस्तकालय के संसाधनों का उपयोग इस क्षेत्र में किया जाता है, तो ये तरीके क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे ये कार्य किया जा सकता है?
0: जैसे कि देखिए, गवर्नमेंट का एक जो स्कीम्स है इनको आगे ले जाने के लिए कई सारे मिशन्स लाए हैं गवर्नमेंट, जिनमें एक मिशन है मिशन लाइफ। अब मिशन लाइफ सस्टेनेबिलिटी इन योर लाइफस्टाइल, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस के ऊपर जोर देते हैं। अब इसकी तहत हम लोग जो करते हैं, जो इनमें ना 7 टॉपिक है, जिनमें आपका क्लीन एनर्जी, नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसको कैसे यूज करेंगे, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे यूज करेंगे, आपका उससे क्या बेनिफिट होगा, देन आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से आप रीयूज करो ताकि उन्हीं वेस्ट से कोई और चीजें बने, ताकि आपको बार बार ज्यादा चीजें फेंकना ना पड़े, उसी चीज को यूज कर सकते हो। ये जो प्लास्टिक हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज है ये सब कोई जानते हैं, फिर भी हम प्लास्टिक की पन्ने यूज करते हैं। अभी जैसे हमने ग्वालियर में वहाँ कम्युनिटी के साथ एक मेगा प्रोग्राम किया है 2 महीना, वहाँ हर एक बंदा, जैसे कि मान लीजिए जो वहाँ का व्यापारी है, वहाँ का जो कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स है, इन सबको सिखाया है जो भाई वेस्ट जो पेपर है या वेस्ट जो क्लॉथ्स है उससे कैसे क्लॉथ बैग बनाया जा सकता है या तो पेपर बैग बनाया जा सकता है, और उससे किस तरीके से आपका जो प्लास्टिक बैग है उसको आप छोड़ सको उसकी यूज। ऐसे और भी एरियाज है जिन चीज को बेसिकली मिशन लाइफ की थ्रू हम लोगों को सिखा सकते हैं और सिखा भी रहे हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो तरीका है, लाइब्रेरी जो मैं कह रहा था, डिफरेंट ट्रेनिंग्स दे सकते हैं लोगों को, जैसे कि एक दिन का ट्रेनिंग, ये मिशन लाइफ वाला आपको एग्जांपल दिया, हमने कई सारे टाइप की ट्रेनिंग कराते हैं जिनमें कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग्स है। अब इन टेक्निकल ट्रेनिंग जो है आपका वेस्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग और सोलर एनर्जी के ऊपर हम कराते हैं, सोलर एनर्जी एप्लीकेशन। अब इन चीज की हर एक जगह पे यूज है, जैसे गांव में जब हम सिखाते हैं लोगों को तो सोलर एनर्जी कैसे सोलर पंप यूज करके, सोलर ड्रायर यूज करके फसल सुखाएंगे, जहां पे जानवरों का प्रॉब्लम है, फसल खा जाते हैं या नष्ट करते हैं, तो उन टाइप की केस में हम कैसे सोलर फेंसिंग यूज कर सके, ऐसे कई सारे ट्रेनिंग्स हम लोग सिखाते हैं लोग को, उनके लिए कोर्स मॉड्यूल बना के, उनको वीडियो बना के उनको दिखाया जाता है। 3 से 5 दिन की ट्रेनिंग में सिखाया जा सकता है। हमारे कुछ बड़े ट्रेनिंग्स भी होते हैं जो वेस्ट, सोलर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए है, तो इस केस में हम गवर्नमेंट की जो ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम MoEFCC दैट इज वन एंड पर्यावरण मंत्रालय जो है, तो उनके साथ मिलके उनकी ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलती है उसकी अंदर हमने ये कोशिश की है। तो आज तक 1500 बच्चों को इन एरिया एरियाज में हम लोगों ने ट्रेनिंग दिए है। अब इन लोग क्या करते हैं, जो एक एक महीना का ट्रेनिंग करते हैं हम लोग, रेसिडेंशियल होती है ये ट्रेनिंग। अब इन ट्रेनिंग में ये लोगों को सिखाया जाता है कैसे सोलर पैनल को यूज करके आप ये डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलेगा आपको, और उन इलेक्ट्रिसिटी को किस किस चीज में आप यूज कर सकते हो। जहां बैटरी की जरूरत है वहां पे आप यूज करो। फार्मर्स बैकग्राउंड से जो लोग है उनको सिखाया है, जो ये जो उनका पॉली हाउस बनाया जाता है जिसके अंदर आपको एक टेम्परेचर कंट्रोल होता है, तो सर्दियों में गर्मियों में तो कहीं पंखा वगैरह चलाना, उस केस में सोलर टेक्नोलॉजी की जो बिजली है वो कैसे यूज कर सकते हो, ये सब चीज उनको सिखाया जाता है। सिमिलरली जब आप वेस्ट मैनेजमेंट में आते हो, तो हम लोगों ने कोविड के बाद जो बड़ा झमेला था, जो बहुत सारे हैजर्डस वेस्ट, मेडिकल वेस्ट बन रहा था, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, लोगों को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो हम लोगों ने उनको ट्रेन किए है जो किस तरीके से वो एक एक सामान को मैनेज करेंगे, उससे कैसे पीपीई किट बनाया जा सकता है, इन सब चीज के बारे में उनको नॉलेज दिए है, कैसे इसको मल्चिंग जिसको बोलते हैं वो किया जा सके ताकि उस वेस्ट प्रोडक्ट को दोबारा किसी चीज में यूज किया जाए। तो इन टाइप की ट्रेनिंग जो लोगों को दिए है, तो उसमें हमने महिलाओं के लिए रखे थे ये ट्रेनिंग, हमारा 4 ट्रेनिंग अब तक हुआ है, चारों ट्रेनिंग में सारे के सारे महिलाओं को जॉब मिल गई है। ये जो नियर बाई जो नर्सिंग होम्स है वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे प्रदूषण हमें बोला जाता है जो 25% प्रदूषण सिटी लेवल में आता है ये परिवहन से, तो सच परिवहन का तहत हम लोगों को कोशिश करना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे यूज करें। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करने के लिए मेजर प्रॉब्लम है जो हमारे पास चार्जिंग स्टेशन सही से नहीं है, और अगर चार्जिंग स्टेशन है भी वो काम नहीं करता, तो इसलिए हमें रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए चाहिए था काफी सारे चार्जिंग चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स जो ट्रेंड हो, स्किल्ड हो। तो इन टाइप की लोगों को हम लोगों ने ट्रेन कराया, जो बेसिकली इसमें हमें सपोर्ट कर रहा है कॉर्पोरेट लेवल का भी लोग, जैसे कि मर्सिडीज से हमें सपोर्ट मिलता है, मर्सिडीज बेंच से, तो इनके साथ मिलकर हम लोगों ने कुछ कोर्स मॉड्यूल बनाया जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्स मॉड्यूल, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल अप्रूव्ड कोर्स मॉड्यूल है। तो उन कोर्स को जब उनको सिखाया जाता है, तो वो लोग एक्चुअली आईओटी ड्रिवन हो चार्जिंग स्टेशन उनको भी बेसिकली मैनेज कर सकते हैं और कोशिश कर सकता है जो उसको रिपेयरिंग भी। तो इसमें हमारे लिए क्या हो रहा है एडवांटेज, जब एक चार्जिंग मशीन खराब होता है उसको दोबारा रिपेयरिंग के लिए भेजना नहीं, वो वहीं पे मैक्सिमम काम उसका हो जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चाहती भी है जो लाइब्रेरी में जो रिसोर्स है उनको यूज करे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स और आगे चल के उनसे लोगों को शिक्षा प्रदान करे। अब मेरा कहने का मतलब है वो शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो लाइफ में यूज करे और उससे उनको रोजगार भी मिले, या तो उनको अपना जो निजी समस्या है उन चीज को ठीक ठाक कर पाए। ये जो यूनिवर्सिटी सेटअप है, यूनिवर्सिटी सेटअप में आप लोग कुछ जो भी लोग वहाँ आएंगे उनको एक स्टैंडर्ड प्रशिक्षण दे पाएंगे, लेकिन बहुत सारे केस में हमें वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है जो यूनिवर्सिटी सेटअप में नहीं पॉसिबल। उन केस में अगर हमारा कुछ स्टैंडर्डाइज कोर्स बने जो एनसीफेट में अप्रूव कराया जाए जो गवर्नमेंट की है, तो फिर वो छोटे छोटे कोर्सेस जो बेसिकली यूनिवर्सिटी की एक एक साल वाली कोर्स नहीं, मे बी 5 दिन वाली कोर्स, तो वो चीज डायरेक्टली उनको सिखा के उनकी बेनिफिट हो सकता है।
1: देखिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो कई सालों से है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइंटिस्ट की बात की, अब आ रहा है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, न केवल कि सिर्फ शिक्षा देने में बल्कि एक समग्र शिक्षा जिसमें सामाजिक सरोकार भी जुड़े हुए हैं उनसे। और आपने एक नई बात की है कि पुस्तकालयों को भी किस तरह से सामाजिक सरोकारों से जुड़ना चाहिए, उनको समाज के लोगों तक जरूरतमंदों तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि पुस्तकालय जब हरित पुस्तकालय बनेगी तो न केवल ये ज्ञान प्रदान करेंगे बल्कि एक ऐसे भविष्य के निर्माण में भी मदद करेंगे जो टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हो। डॉक्टर पीके भट्टाचार्य जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, आपने इतने महत्वपूर्ण विषयों में जो पुस्तकालयों की बदलती हुई भूमिका है, जो उसका महत्व है आधुनिक युग में विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के, उन सब बातों पर विस्तृत जानकारियां दी आकाशवाणी आने के लिए, और इन सब जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। प्रस्तुत करता थे दिलीप झा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से प्रसारित किया गया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। हमारे प्रसारण आप सुन रहे हैं एआईआर लाइव न्यूज 24x7 मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। सुबह के 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक।

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लैके मैं हाजिर हाँ शमिंदर कलेर। अज दे इस प्रोग्राम च असी सुणांगे कविता पाठ, इस तों इलावा कुछ गीत भी सुनवाए जाणगे। इस तों पहलां गल करदे हां कौमांतरी पौधा सेहत दिवस दी। पौद्यां ते रुखां दी साडी जिंदगी च बहुत ज़्यादा अहमियत है। पौधे धरती ते ओने ही जरूरी ने जिन्ना कि जिंदगी दे लई साह, क्योंकि रुख बूटे साडे लई ऑक्सीजन दा कम करदे ने। इसलिए बूटे लगाने जिन्ने जरूरी ने उस तो भी ज़्यादा जरूरी है उन्हां दी देखभाल ते उन्हां दी सेहत दा ध्यान रखन दी। साडी जिम्मेवारी सिर्फ पौधे लगाउण तक सीमित नहीं, बल्कि इन्हां पौद्यां दी सांभ संभाल दी भी है। पौधे तां ही रुख बन सकदे ने जे असी उन्हां दी सेहत संभाल वल ध्यान देवांगे। इसलिए सब तो ज़्यादा जरूरी है कि पौद्यां नूं समय सिर खाद पानी ते गोड्डी कीती जावे, ते इस दे नाल ही पौद्यां दे आले दुआले किसी भी तरह के प्लास्टिक के लिफाफे जां होर समान इकट्ठा ना होण दिता जावे। जिथे पौधे लगाए गए ने उस च लोड़ींदी वेथ रखी जावे तां जो पौधे नूं वधन फुल्लण दा पूरा मौका मिल सके। इस दे नाल ही पौधे अजिहियां जगह ते लाने चाहीदे ने जिथे सूरज की रोशनी पहुँचती होवे। ते गायक हरजीत हरमन केसर उत्ते सजन नूं मिलन की गल कर रहे ने। आओ सुनदे हां हरजीत हरमन की आवाज़ एक गीत। जिस वेले कणकां नूं पहला पानी लाउंदे जट, तोरियां नूं पैंदे जदों पीले पीले फुल वे। गीत दे बोल लिखे ने प्रगट सिंह ने, ते संगीतबद्ध कीता है अतुल शर्मा ने।

0: ना धर्मां दे झगड़े ना जातां दी कंध बणावांगे, इक्को रंग च रंग के देश नूं अगे ले जावांगे, इक्को रंग च रंग के देश नूं अगे ले जावांगे। नफरत दी अग नूं अज ही बुझाउणा है, प्यार ते एकता नाल नवां इतिहास बणाउणा है। नफरत दी अग नूं अज ही बुझाउणा है, प्यार ते एकता नाल नवां इतिहास बणाउणा है। आओ कसम चुकीए, आओ कसम चुकीए, न वंडांगे न वंडण देवांगे, न वंडांगे न वंडण देवांगे। इस देश दी शान नूं सिर उत्ते चुक के लै जावांगे, क्योंकि मेरा देश सिर्फ जमीन नहीं, मेरी पछाण है, मेरी रूह ते मेरी जान है। हुण मेरी अगली कविता है प्लास्टिक तो आज़ादी। ना सोने दी लोड़ सानू, ना हीरे दी चमक प्यारी, ना सोने दी लोड़ सानू, ना हीरे दी चमक प्यारी, साड़ी धरती ही खजाना ऐ साड़ी असली सवारी, पर असी आप ही वैरी बन के इसनू दुख पहुँचाया, पर असी आप ही वैरी बन के इसनू दुख पहुँचाया, प्लास्टिक दे जाल विच फसा के सा लैना भुलाया, हवा विच विष वस गया, पानी भी रो पिया चुपचाप, मिट्टी दी कोख भी तड़फे कहंदी बस करो ए पाप, मिट्टी दी कोख भी तड़फे कहंदी बस करो ए पाप। हर रुख सानू समझावे, हर पत्ता देवे संदेश, हर पत्ता देवे संदेश, कुदरत नाल प्यार करो, कुदरत नाल प्यार करो, यही है जीवन दा वेश। आओ मिल के सौ चुकीए, आओ मिल के सौ चुकीए, बदलाव दी लोड़ है अज, कपड़े दे थैले वरतांगे, कपड़े दे थैले वरतांगे, यही बने साड़ा साज। बोतल कच दी, बोतल कच दी स्टील दे भांडे अपनी रीत बनाइए, प्लास्टिक नू अलविदा कह के नवा सवेर लियाइए, प्लास्टिक नू अलविदा कह के नवा सवेर लियाइए। जद हर दिल विच जोत जगेगी, सोच नवी उडारी लवेगी, साफ भारत हरा भारत दी धुन हर थां सुनाई देवेगी, साफ भारत हरा भारत दी धुन हर थां सुनाई देवेगी। ए धरती साड़ी माँ है, ए धरती साड़ी माँ है, इसका कर्जा चुकाना है, प्लास्टिक मुक्त करके इसनू सच्चा फर्ज निभाना है, प्लास्टिक मुक्त करके इसनू सच्चा फर्ज निभाना है। हुण मैं एक होर कविता तुहाडे सामने रख रही हाँ, मोबाइल वरदान भी अभिशाप भी। हथ विच छोटा जिहा डब्बा दुनिया सारी समाई, हथ विच छोटा जिहा डब्बा दुनिया सारी समाई, ज्ञान दे दरवाजे खोलदा पर सोच भी कैद कराई, कदे ऐ गुरु बन जांदा, कदे ऐ गुरु बन जांदा, सही राह दिखांदा, कदे ऐ जाल बुण लैंदा इंसान नूं फसांदा, कदे ऐ जाल बुण लैंदा इंसान नूं फसांदा। ऑनलाइन किताबां सिक्ख्या दी नवी उड़ान, घर बैठे ही मिल जांदी हर एक विद्या दी पछाण, घर बैठे ही मिल जांदी हर एक विद्या दी पछाण, दूर बैठे यार मिल जाण वीडियो कॉलां दे नाल, दुनिया छोटी लगदी जुड़ जांदे दिल हर हाल, पर जद लत बन जावे ऐ रोशनी अंधेर कर जांदी, पर जद लत बन जावे ऐ रोशनी अंधेर कर जांदी, माँ दी हसी प्यू दी गल सब कुछ पिछे रह जांदी, रोटी ठंडी हो जांदी पर स्क्रीन गरम रहंदी, नज़रां मिलन दी थां ते सिर्फ चैटां ही चलदियां रहंदियां, खेत मैदान सूने हो गए। बचपन फोन विच कैद, खेड मैदान सुने हो गए बचपन फोन विच कैद। हसदे चेहरे फोटो बन गए, असली खुशी हो गई गुम हो के। नींद चुरा के रातां दी अखां नू थका दिंदा। बस एक होर वीडियो कह के समा सारा खा लेंदा। ए सच है मोबाइल बिना अज मुश्किल है जीना, पर ए भी सच है इस दे गुलाम बन के नहीं सी जीना। बनाइए इसनू साधन ना कि अपनी पछाण। समय दी कीमत समझिए यही जीवन दा माण। पढ़ाई जानकारी मदद ए सारे ने उपहार, पढ़ाई जानकारी मदद ए सारे ने उपहार, पर रिश्तियां दी गर्माहट कदी ना भूलिए यार। चलो एक वादा करिए दिल नाल आज ही यारो, मोबाइल नू सीमित रखिए ना बनन देइए इसदा गुलाम साडो। वक्त नाल संतुलन रखिए असली दुनिया दे नाल प्यार। ए जीवन दी सच्ची जित यही सुख दा असल सार।
1: कविता पाठ तुसी सुन रहे सी स्नेह विच होरां तो। ते कविता पाठ सुन तो पहलां असी गल कर रहे सी कौमांतरी पौधा सेहत दिवस दी। हरे परे वातावरण नू वेख के हर कोई उस वल खिंचिया चलिया आंदा है, क्योंकि कुदरत वल्लों दित्ती गई इस नेमत की तुलना किसी होर शायद नाल कीती नहीं जा सकती। दरख्त अते पौधे सारी दुनिया का भेट भरते ने। यह कह लै जाए कि असी रुखां ते पौद्यां दा जीवन भर मुल नहीं तार सकते तो यह कहना जरा भी गलत नहीं होएगा। इंसान तो इंसान, पशु पंछी भी इन्हां तो बिना नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हां दा जीवन इस कुदरती नियामत ते निर्भर है। जिहड़ा भोजन असी खांदे हाँ उस च 80% हिस्सा पौद्यां तो प्राप्त करदे हाँ ते 98% पौद्यां तो ऑक्सीजन प्राप्त करदे हाँ। पौधे सानू जीवन बख्शदे ने, फिर साडा भी फर्ज बनता है इस दी देखभाल करिए। ये छोटे छोटे पौधे ही फसल बन के साढ़े देश की आर्थिकता नू मजबूत करते हैं। इसलिए तुसी छोटे छोटे नुकते अपना के इन्हां हरे भरे पौद्यां नू कीड़े मकौड़ियां तो बचा सकते हो, क्योंकि 48% फसलां तो कीड़े मकौड़े ते बीमारियां लगन कारण ही बर्बाद हो जांदियां ने। लगातार कीटनाशक दवाइया की वरतों ते रसायनिक खादा की वरतों करके धरती की सेहत खराब हो रही है, जिस करके पौद्यां दी सेहत तां बिगड़नी लाजमी है। इस दे नाल ही इक्को तरह दीआं फसलां बीजण नाल भी साडी धरती दा हाजमा खराब हुंदा है। इसलिए जे तुसी चाहुंदे हो कि धरती विचला पानी बरकरार रहे ते धरती मां दी सेहत ते कोई माड़ा प्रभाव ना पवे, तां इसलिए तुहानू फसली विभिन्नता अपनाउणी पवेगी। पौद्यां दी बची रहिंद खूंद नूं साड़न दी बजाए पैली दे विच ही वा देना चाहीदा है। इस तरह कुछ छोटे छोटे उपा करके तुसी पौद्यां दी सेहत नूं सही रख सकते हो। यह तां सी कौमांतरी पौधा सेहत दिवस बारे जानकारी। तो आओ हुण प्रोग्राम दे सिलसिले नूं अगे तोरदे हुए सुनदे हाँ बब्बू मान दी आवाज़ च गीत नींदरां नहीं आउंदियां।

बब्बू मान की आवाज़ च गीत तुसी सुन रहे सी ते हुण अगला गीत तुहाडी नज़र है मास्टर सलीम की आवाज़ च। सारा सारा दिन तेरे बिन हुण नहीं गुजरता यारा।

मास्टर सलीम की आवाज़ च एक गीत तुसी सुन रहे सी। आस है कि मिट्टी की महक प्रोग्राम तुहानू पसंद आया होगा। इस दे नाल ही मिट्टी की महक प्रोग्राम का समा हुण खत्म हुंदा है। हुण शमिंदर कलेर नूं इजाज़त दिओ।

अभी आप सुन रहे थे पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर पर सुबह के 10 बजने को है कुछ ही।

0: क्षणों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्वा सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमुड़ी को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा है। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडापड़ी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर में व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा ने पुंछ जिले के सुरनकोट सेक्टर के परिचालन क्षेत्रों का दौरा किया और आतंकवाद रोधी अभियानों की समीक्षा की। इस दौरान कोर कमांडर को वरिष्ठ अधिकारियों ने आतंकरोधी ग्रिड, खुफिया नेटवर्क और अंतर एजेंसी समन्वय तंत्र के बारे में भी जानकारी दी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात धर्मशाला में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाए। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid the West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel. Stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis, Prime Minister said, "There is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources."
4: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
3: He said that India spends lakhs of crores of rupees in foreign exchange to import many products from abroad, and the crisis has led to a steep rise in imported goods and severely disrupted global supply chains. Assam is set to witness a historic political event today with the swearing-in of Himanta Biswa Sarma as the Chief Minister of the state for a second consecutive term, making him the first non-Congress leader in Assam's history to hold the post for back-to-back terms. Dr. Sarma and his Council of Ministers will be administered the oath of office in secrecy by Governor Lakshman Prasad Acharya. Along with Dr. Himanta Biswa Sarma as Chief Minister, four other members of the Council of Ministers will also be sworn in today. The four cabinet ministers are Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Niyog. The swearing-in ceremony will be witnessed by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers from BJP-ruled states. U.S. President Donald Trump has said he expected Taiwan and energy security to dominate discussions during his upcoming visit to China, while praising his relationship with Chinese President Xi Jinping and expressing confidence that tensions over Taiwan would not escalate. Speaking during a White House maternal health care event yesterday, Trump said his administration was now doing great with China after accusing previous U.S. administrations of allowing Beijing to take advantage of the United States. Trump repeatedly praised Xi during the interaction with reporters. International Nurses Day is being observed today. The day is observed every year on the 12th of May to celebrate nurses and their contribution to healthcare around the world. The theme for this year is Our Nurses, Our Future. Empowered Nurses Save Lives. On the occasion, Nagaland Chief Minister Niofo Rio honored the nurses who serve with compassion, resilience and professionalism every day. The Cannes Film Festival, the annual celebration of independent cinema on the French Riviera, will kick off today with John Travolta, Adam Driver and Barbara Streisand among the superstars set to walk the red carpet. Cannes is the world's biggest film festival, first conceived in 1939 as an alternative to Venice's film extravaganza, which was then under the sway of the ruling fascists. The India Met Department has issued an orange alert for rain in Uttarkashi, Chamoli, Rudraprayag, Bageshwar and Pithoragarh districts of Uttarakhand for the next 36 hours, while a yellow alert has been issued for the remaining districts. According to the department, there is a possibility of hailstorms and gusty winds in various parts of the state during this period. In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad today. The match will start at 7:30 p.m. Indian time. Earlier, Delhi Capitals defeated Punjab Kings by 3 wickets at the Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Chasing a target of 211 runs set by Punjab Kings, Delhi Capitals scored 216 for 7 in 19 overs. And that is the end of this news bulletin.

आप भी अपनी पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखिए ईमेल। ईमेल का पता है ip.radiodelhi@gmail.com। और एक आग्रह और करूँगा, जिन श्रोताओं ने 10-10 मेल भेज दिए हैं अब वो मेल ना भेजें, और आप भी सिर्फ एक मेल भेजिए ताकि आपका नाम शामिल हो पाए और दूसरों का भी नाम शामिल हो पाए। कई बार होता है रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण हम दो बार किसी एक श्रोता का नाम ले लेते हैं और किसी का नाम छूट जाता है, तो श्रोताओं में एक नाराज़गी होती है। तो ऐसा ना करें, कृपया करके एक ही मेल करें और हम प्रयास करेंगे कि आपकी मेल इस प्रोग्राम में शामिल हो पाए। और ये भी प्रयास करेंगे कि अगर आपकी पसंद का गाना नहीं शामिल कर पा रहे हैं तो आपका नाम किसी न किसी गीत के साथ हम शामिल कर लें। तो आइए, सबसे पहला जो गीत हमने चुना है वो सुनवाते हैं आपको। और ये गीत है सावन को आने दो फिल्म से। दोस्तों, मौसम बदल रहा है और ज्येष्ठ आषाढ़ के बाद अब सावन का इंतज़ार होता है, तो मॉनसून की चर्चा भी शुरू हो गई है। गर्मी बढ़ रही है कई जगहों पर, लोगों को अब प्रतीक्षा है कि सावन आए तो गर्मी कम हो और मौसमी फुहारें पड़ें। येसुदास की आवाज़ में ये गीत है और राज कमल इस गीत के संगीतकार हैं। बहुत ही सुंदर सा गीत है, सुनवाएंगे आपको। पहले नाम बताते हैं जिन श्रोताओं की पसंद पर यह गाना हमने लिया है। गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुषी गुप्ता। और गिरिडीह से शिवानी कुमारी, प्रियंका साहू, अभय कुमार, गुड्डू कुमार। और बसबेठिया पश्चिम बंगाल से मुन्नी देवी शॉ, जयप्रकाश साव, वसंत लाल, रिया, जिया, टूसी, आयुषी, अनिरुद्ध। और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, कमला रानी और गीतिका खोरवाल। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर हम सुनेंगे ये बहुत ही प्यारा सा गीत येसुदास के स्वर में।

दोस्तों कैसा लगा आपको ये गीत ज़रूर बताइए, और मैं फिर से निवेदन करूंगा कि एक ही मेल करिए ताकि सभी श्रोताओं के नाम शामिल कर पाएँ हम इस कार्यक्रम में, और अच्छे से अच्छे जो गीत हैं आपकी पसंद के वो सुन पाएँ और सुनवा पाएँ। और अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं वो भी बहुत ही प्यारा सा नगमा है, इसे हमने लिया है मन मंदिर फिल्म से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत है। और सुनने के लिए आप सभी ने हमें ईमेल किया है, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी और सोनू भाटिया, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र शिपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार, शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित और केशु तथा रिधान खुराना ने, खैर बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुग्गू और भाविका सिक्का, और गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान और अनु खान ने। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं एक और प्यारा सा नगमा, और एक मेल करिए ताकि आपका भी नाम शामिल हो पाए।

दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म क्रांति से। 1981 में ये फिल्म आई थी, आज से 45 वर्ष पहले। और इस फिल्म में 19वीं सदी में ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों को और उससे संघर्ष, उससे टकराव, उससे लड़ने की कहानी है। एक प्रतीक है ये फिल्म, अपने समय की बहुत बड़ी फिल्म थी और बहुत पसंद की गई थी। जिस तरह के इमोशन थे, जिस तरह के गाने थे, जिस तरह का संगीत और पूरा जो एम्बियंस था, पूरा बैकग्राउंड, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि हमें उस दौर में ले जाता है जब अंग्रेज़ या विदेशी हुकूमत हमारे देश के लोगों के साथ अत्याचार कर रही थी। बड़े बड़े कलाकार इस फिल्म में, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, परवीन बॉबी समेत तमाम बड़े कलाकार उस दौर के थे और बहुत ही पसंद की गई थी। और इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई थी 26 स्थानों पर, 26 सिनेमाघरों में एक साथ। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का गाना, जिसे आवाज़ की बात अगर हम करें, किन आवाज़ों में ये गीत आप सुनने जा रहे हैं,

आवाजें हैं लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और साथियों की। गीत के बोल संतोष आनंद ने लिखे हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ये धुन तैयार की है। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने सदर बाजार कुरावली मैनपुरी उत्तर प्रदेश से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा, अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह, उदयपुर राजस्थान से रमेश नचानी, भारती, विनीत, मिथिल, प्रगति नचानी, यवतमाल महाराष्ट्र से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री और धनश्री, बल्हार शाह से सूरज लोंढे, प्राची और एकलव्य लोंढे, उदयपुर राजस्थान से अशोक तुलानी और लाला, सोनी, मोहन कसारा, शेर सिंह राजपूत और बाबू भाई, चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, प्रतीक, ऋतिक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। आप सभी की पसंद पर हम सुन रहे हैं क्रांति फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, एक मेल और आया है संदीप मक्कर, ज्योति मन्नत, भरत, कमल साहनी का जालंधर पंजाब से, और आपने आग्रह किया कि इसी गीत में मेरा नाम शामिल करें, तो आपका नाम शामिल कर लिया है। और आज के कार्यक्रम में अब आप मेल न करें, आपसे निवेदन रहेगा, ताकि बाकी श्रोताओं के नाम भी हम ले पाएं।

दोस्तों, हमने क्रांति फिल्म का जिक्र जब किया तो ये हमने बात की कि किस तरह का संघर्ष भारत के लोगों ने उस दौर में अपनी स्वाधीनता, अपने अधिकारों को पाने के लिए किया था, किस तरह का संघर्ष उनके जीवन में था। लेकिन उस जीवन में कैसे जीवन को खुश करना है, जीवन में खुश रहना है, उसके जो तरीके हैं वो ढूंढने की बात, वो ढूंढने का संदेश इसमें है। और सच है कि हम और आप उस दौर की परिस्थितियों का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते जब भारत पराधीन था और किसी को अपने जीवन को अपने मन से, अपने स्वेच्छा से जीने का अधिकार नहीं था। तो भारत की जो आज़ादी हमने पाई है, ये सिर्फ उन नामों की ही बदौलत नहीं है जिनको हम इतिहास में जानते हैं, जो इतिहास में दर्ज हैं, बल्कि ऐसे अनेक गुमनाम हमारे देश के लोगों ने, जिन्होंने ये चुना कि हमें अपनी आज़ादी, हमें जंजीरों में जकड़ी हमारी भारत माँ नहीं बल्कि स्वाधीन और स्वतंत्र भारत माँ चाहिए, और उसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। और ऐसे न जाने कितने लोग, न जाने कितने गुमनाम चेहरे और नाम इस आज़ादी की लड़ाई में, इस आज़ादी के यज्ञ में अपने आप को आहूत कर इस देश को स्वाधीन कराया। तो बहुत ही खूबसूरत सा गीत हमने सुना क्रांति फिल्म से। कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है सुरेश वाडेकर की आवाज़ में, संतोष आनंद के ही शब्द हैं और धुन संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की ही। और इस गीत को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं के ईमेल हमें प्राप्त हुए हैं। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान और अबान अब्बासी, चंदर नगर सहारनपुर से एस के नारंग, आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग, और पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक, भवरपुर छत्तीसगढ़ से राधेश्याम देवांगन, चंपा, राजू, नेहा और जगदीश देवांगन, वीर

वीरम गाम गुजरात से अजीत भावसर, प्रमिला भावसार, भावेश और सनी भावसार के साथ ही दुर्ग छत्तीसगढ़ से आरसी कामड़े, करुणा मीणा अश्विनी और विपुल कामड़े, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम, आशीष विश्वकर्मा और व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। तो आप सभी की पसंद पर हम सुनने जा रहे हैं प्रेम रोग का वो गाना जो आवाज़ सुरेश वाडेकर की है जिसमें, और बहुत ही प्यारा सा गीत है ये।

आशा करते हैं कि आपके जो खत आ रहे हैं उनको हम सम्मिलित कर पा रहे हैं। कोशिश है कि एक गीत के लिए कम से कम 6-7 ईमेल हम शामिल कर पाएँ। और अगला जो गीत हम सुनवाने जा रहे हैं श्रोताओं, वो लता मंगेशकर की आवाज़ में है और ये गीत हमने लिया है हिना फिल्म से, और इसमें आवाज़, संगीत और गीत दोनों रविंद्र जैन का है। बहुत ही खूबसूरत गीत है ये भी, और सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं ने ईमेल किया है। जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया, फजिलका पंजाब से सुभाष गोधरा गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा। आपने लिखा है कि लाइव सुन रहे हैं, किसी भी गीत में नाम शामिल कर लीजिए, तो आपका नाम शामिल हो गया। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, राजू अग्रवाल, किशोर प्रियांशी, विवेक ने लिखा है चौधरीवास हरियाणा से, और हरियाणा से ही ज्योतराम मांगेराम, कमला देवी ने ईमेल किया। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा नूर, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान ने भी ईमेल किया। साथ में यवतमाल से आप सभी श्रोताओं के ईमेल मिले, जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता का। तो आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर के स्वर में हिना फिल्म से रविंद्र जैन का गीत और संगीत।

श्रोताओं, कई बार होता है कि आपके मेल बहुत बार आते हैं, या एक बार भी आप मेरी बात सुनकर एक ही मेल करते हैं और आपका मेल शामिल नहीं हो पाता, तो आपको लगता है, निराशा होती है और आप थोड़ा सा नाराज़ भी होते हैं। नाराज़गी भी ज़रूरी है क्योंकि, और उचित है कि जब मैंने कहा कि आप एक मेल करिए, एक मेल किया फिर भी नहीं शामिल हुआ, तो अभी कुछ श्रोताओं के ऐसे ही मेल शामिल किए हमने। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, और सोनीपत से सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित घुसी गोस्वामी, दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा, सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर मुजक्किर और जरीफ अंसारी, जींद हरियाणा से मनदीप केशोदक्ष और प्रीति, गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम सत्तोड़, और डीबी राणा ने नेहरू बिहार दिल्ली से लिखा है। आप सभी की पसंद पर हम सुनेंगे लता मंगेशकर का ही की ही आवाज़ में गीत, और जो है रोटी फिल्म से, ये भी बहुत ही प्यारा सा नगमा है, आइए सुनते हैं।

दोस्तों छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा ने हमें ईमेल किया और कहा कि रोटी फिल्म के इस गीत के साथ ही मेरा नाम, हमारा नाम शामिल कीजिए। तो आपका नाम शामिल कर लिया। और दोस्तों रोटी फिल्म अगर आपने देखी होगी और उसके सारे गाने देखे होंगे तो एक बहुत ही प्यारा सा गीत है, बहुत ही प्यारा सा गीत कहें या संदेश कहें। देखिए फिल्म में या हम सिर्फ मीडिया, अखबार, मैगज़ीन को ही नहीं मानते, टीवी पर चलने वाले, रेडियो पर चलने वाले न्यूज़ को ही नहीं मानते, बल्कि जो भी चीज़ें लिखी और बताई दिखाई जाती हैं वो सब मीडिया हैं, माध्यम है संदेश देने का। तो रोटी फिल्म के माध्यम से एक संदेश समाज को दिया गया था और उसमें एक महिला रोटी चुरा कर जा रही होती है और कुछ लोग उस पर चोर चोर कहकर पत्थर मारते हैं। तो राजेश खन्ना उस समय उस हीरो, उस फिल्म के नायक आते हैं और वो कहते हैं कि यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो जिसने पाप ना किया हो वो पापी ना हो। तो एक बहुत ही अच्छा सा संदेश उस फिल्म के इस गीत के माध्यम से और पूरी फिल्म की कहानी के माध्यम से देने का प्रयास किया गया। बहुत ही प्यारी सी फिल्म थी और बहुत ही प्यारा सा उसका पूरा बैकग्राउंड जिस पर फिल्म बनाई गई। तो ये गीत आपने सुना और अगला गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं थोड़ा सा अगले दौर का, और वो गीत जुबैदा फिल्म का है, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में है, एआर रहमान का संगीत है, बहुत ही सुंदर सा गीत। आइए सुनते हैं और किन श्रोताओं की पसंद पर इस गीत को शामिल किया है आज के इस कार्यक्रम में आपकी फरमाइश में, इस गीत के बाद हम बताते हैं आपको।

0: श्रोताओं, अब आपके नाम ले लेते हैं, नहीं तो समय निकल जाएगा और आप फिर नाराज हो जाएंगे कि आपकी ये खत आपके ईमेल शामिल नहीं हो पाए। करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप, गुगलानी, जगमोहन, प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा और हरिपाल कौर जी, राम राम रामन जी, राजू अग्रवाल, पंकज चरणदास, चौधरीवास हरियाणा से लिखते हैं और साथ में सुनील पाठक, रारकली बाजार, जगराव, पंजाब से, दतरंगी से, छत्तीसगढ़ से, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा ने ईमेल किया, राम नरेश, रेखा, करण, अल्पेश, रघु यादव, रचना, सृष्टि यादव, सवि यादव और आप सभी ने संगम विहार दिल्ली से लिखा, राजेंद्र जातोलिया, उषा जातोलिया, चारू जातोलिया, दिल्ली नागलोई से आपने मेल किया, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी और कल्पित चौहान, गर्वी और हिमांश चौहान। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर यह खूबसूरत सा गीत हम सुन रहे थे और इसके साथ ही आज का आपकी पसंद का ये कार्यक्रम श्रोताओं अब संपन्न होने का समय हो रहा है। तो मुझे यानी देवेंद्र त्रिपाठी को इस कार्यक्रम को संपन्न करने की दीजिए अनुमति, लेकिन आप लगातार बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजने को है, कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे

कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा है। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडापट्टी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दोहरीघाट औड़िहार यात्री पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया। इससे मऊ और गाजीपुर जिलों के यात्रियों को किफायती और सुरक्षित रेल सेवा उपलब्ध होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस रेल सेवा का विस्तार जल्द ही वाराणसी तक किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख रेल अवसंरचना परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक प्रमुख चार लेन का गलियारा गंगा के दक्षिण में प्रयागराज कानपुर आगरा दिल्ली मार्ग के साथ विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान के फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमेरिकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 474 अंक लुढ़ककर 75,541 पर, जबकि निफ्टी 126 अंक की गिरावट के साथ 23,689 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं सबरस कार्यक्रम, और कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह स्वर में ये गजल।

श्रोताओं, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के स्वर में इस गजल के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर आप हमारे प्रसारण सुन रहे हैं। साथ ही हम आपसे जुड़े हुए हैं AIR लाइव न्यूज 24x7 डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी। और अब समय हुआ है दिन के 11:30 और ये समय है सुरमंजरी, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी का। इसमें आज आप सुनेंगे उस्ताद जावेद अली खां का राग जौनपुरी में गायन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद जावेद अली खां का राग जौनपुरी में गायन। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम श्रोताओं अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। 12 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
2: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लाऊं जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
1: श्री शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के हैं। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी बार सरकार है। श्री शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर

0: अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma has taken oaths as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered him the oath of office and secrecy at a ceremony held at the Veterinary College ground in Kanapara, Guwahati.
2: Moi Sri Himanta Biswa Sarma Ishwarar namat shapat lao je bidhir dwara sthapito Bharatar sangbidhanor proti moi prokito bishwas aru anugotya pokhon korim.
1: Along with Dr. Sarma, four MLAs, Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Niyog were also sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers from BJP-ruled states attended the ceremony. With this, Dr. Sarma has become the first non-Congress leader in Assam to serve consecutive terms as chief minister. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid the West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat last evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel.
3: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें।

पर आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।

आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, सामने खड़ी विपत्ति से डरे नहीं बल्कि उसका सामना करें।

ये गीत आपने सुना इजाजत फिल्म से आशा जी की आवाज में। घर आंगन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 90 साल पूरे होने पर आकाशवाणी के बारे में इतिहास की बात कर रहे हैं और इसी में 90 वर्षों का हम सफ़र आकाशवाणी के आज़ादी के ऐतिहासिक प्रसारण की अब हम बात कर लेते हैं। आज़ादी की पहली सुबह और वंदे मातरम की गूंज, 15 अगस्त 1947 की वो सुबह 6:30 पर प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने आकाशवाणी से वंदे मातरम का पूर्ण संस्करण प्रस्तुत किया। ये गायन सरदार वल्लभ भाई पटेल के विशेष अनुरोध पर बंगिया काफी राग में पिरोकर प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रगीत के प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट करने के लिए पंडित जी ने रेडियो स्टूडियो में खड़े होकर ये प्रस्तुति दी थी। ये गायन केवल संगीत नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत की सांस्कृतिक अस्मिता और करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक बन गया। 24 जनवरी सन 1950 को वंदे मातरम को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गीत का दर्जा भी दिया गया।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

दोस्तों, घर आंगन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अमित कमल। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डेज ऑफ द डे की, इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ। जी हां, हम जिस ऑक्सीजन में सांस लेते हैं उसका 98% पौधों से आता है। हम जो भोजन खाते हैं उसका 80% पौधों से प्राप्त होता है, लेकिन हर साल कीटों और बीमारियों के कारण हमारी लगभग 40% फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिससे सभी के लिए भोजन और पोषण उपलब्ध कराने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न होती है। इसी समस्या को दूर करने और जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ 12 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक वैश्विक दिवस है जो पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के महत्व को उजागर करता है, क्योंकि ये भूख को कम करने, गरीबी मिटाने, पर्यावरण की रक्षा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस का इस साल का थीम खाद्य सुरक्षा के लिए पादप और जैव सुरक्षा है, यानी प्लांट बायो सिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी है। ये विषय पौधों को कीटों और बीमारियों से बचाकर वैश्विक खाद्य आपूर्ति को सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर देता है।

हिमालय की गोद में फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। दोस्तों, घर आंगन कार्यक्रम में हम आपके हित की बात लेकर आते हैं और ऐसी ही एक जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के साथ काम करना चाहते हैं या भारत के बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। हाल ही में DRDO ने दिल्ली और हल्द्वानी के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस इंटर्नशिप में अनुभव के साथ आपको हर महीने पैसे भी मिलेंगे। जो विद्यार्थी BE, BTech और ME, MTech के फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं वो इसमें इंटर्नशिप कर सकते हैं। DRDO की इस इंटर्नशिप प्रोग्राम की अवधि 6 महीने तक की है, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2026 से हो सकती है। चयनित उम्मीदवारों को 30,000 रुपये दिया जाएगा। शुरुआत के 3 महीने पूरे होने पर 15,000 रुपये और बाद के 3 महीने पूरे होने पर 15,000 रुपये दिए जाएंगे। दोस्तों, स्टूडेंट्स के लिए कम से कम 15 दिन इंटर्नशिप में एक्टिव रहना जरूरी होगा और 6 महीने की इंटर्नशिप पूरी कर लेने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। DRDO इंटर्नशिप के तहत आप www.drdo.gov.in/DRDO/EN/offerings/vacancy पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद सारा प्रोसेस ऑफलाइन होगा।

आशा जी की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म सावन की घटा से। दोस्तों, बहुत से छात्र घंटों पढ़ाई नहीं करना चाहते, वो ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसमें कम पर्दा हो और करियर भी सेट हो जाए। आज के समय में ऐसे कई डिप्लोमा कोर्स हैं जिन्हें करके अच्छी सैलरी पाई जा सकती है, और ऐसे ही कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे। ये कोर्स 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बीच पूरे हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसे कोर्सेज की तलाश कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके साथ साझा कर रहे हैं। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करियर की डिमांड में है। इस कोर्स में SEO, सोशल मीडिया और एड्स जैसी स्किल्स सिखाई जाती है। इस कोर्स को करने के बाद नौकरी के साथ फ्रीलांसिंग के मौके भी मिलते हैं, और साथ ही आप ब्लॉग को के बूम होने के कारण, ब्लॉगर्स के बूम के कारण वीडियो एडिटिंग स्किल्स में काफ़ी अच्छी कमाई के अवसर मिल जाते हैं। अगर आपको क्रिएटिविटी काम करना पसंद है तो आप वीडियो एडिटिंग कोर्स कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर में दिलचस्पी है और बीटेक आदि नहीं करना चाहते तो आप वेब डेवलपमेंट में HTML और CSS JavaScript जैसे कोर्स कर सकते हैं। इन्हें सीखकर आप वेबसाइट बना सकेंगे और इसमें भी आपको फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। साथ ही साथ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का कोर्स करके आप इवेंट कॉरपोरेट शूट कर सकते हैं। इसके अलावा वेडिंग फोटोग्राफी तो है ही, इसके ज़रिए आप अपना चैनल भी बना सकते हैं और मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर सकते हैं। ये सीखकर खुद आप अपना काम शुरू कर सकती हैं और इससे अच्छी कमाई भी होती है। होटल मैनेजमेंट का शॉर्ट टर्म कोर्स भी आजकल चलन में है, जिसमें आप होटल मैनेजमेंट से जुड़े किसी स्किल्स जैसे कुकिंग, सर्विस डेस्क, फ्रंट ऑफिस यानी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आपने सुना सम्राट फिल्म से। दोस्तों, घर आंगन कार्यक्रम में हम एक ना एक सफलता की कहानी आपके साथ साझा ज़रूर करते हैं और आज ही एक कहानी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक छोटे से गांव से निकली संजू मिश्रा की कहानी इस बात का उदाहरण है कि सीमित संसाधनों में भी बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। सिर्फ 10,000 की छोटी सी पूंजी से शुरू किया गया उनका अचार का काम आज सालाना 10 से 15 लाख रुपए के टर्नओवर में बदल चुका है। संजू मिश्रा ने बीएड कर रखी है। उनका सपना था शिक्षक बनना, लेकिन कुछ कारणों से उनका सपना अधूरा रह गया और वो शिक्षक नहीं बन पाई। वह इस समय प्राइवेट इंस्टीट्यूट में शिक्षक हैं, बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करवाती हैं। संजू मिश्रा कंपटीशन की तैयारी के साथ साथ अचार का बिजनेस कर रहे हैं।

मिश्रा शिक्षक न बन पाने के बाद काफी निराश हो गई थी। उसी समय इनके भाई ने इन्हें मोटिवेट किया और उन्हें बताया कि उनके अंदर एक हुनर है, वो है अचार बनाने का। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वो अचार बहुत अच्छा बनाती हैं। इनके भाई ने ही अचार के बिजनेस का आइडिया संजू को दिया। संजू ने मात्र 10,000 से अचार के बिजनेस की शुरुआत की। शुरुआत में संजू मिश्रा ने घर पर ही आम, नींबू और मिर्च का अचार बनाना शुरू किया और वो अपने बनाए अचार को आसपास के गांव और मोहल्लों में बेचा करती थी। उनके अचार का स्वाद इतना अच्छा होता था कि लोगों को काफ़ी पसंद आने लगा। धीरे धीरे उनके अचार की मांग बढ़ने लगी और ज़्यादा लोग उनसे अचार खरीदने लगे। संजू मिश्रा के अचार की डिमांड बढ़ने लगी तो उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। उन्होंने अचार की मात्रा बढ़ाई और अलग अलग तरीके के अचार बनाना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ आम और नींबू ही नहीं बल्कि लहसुन, कटहल और मिक्स अचार भी बनाने लगे हैं। इस समय उनके पास लगभग 18 प्रकार के अचार उपलब्ध हैं। ये सफलता की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता अगर उसे पूरी लगन के साथ किया जाए। और जब आप इस तरीके के काम करेंगे और सफल होंगे तो आपके लिए भी लोग ये गीत गाएंगे।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत आपने सुना कभी कभी फिल्म से। कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन। दोस्तों, घर आंगन कार्यक्रम में हम एक छोटी मोटी सी जानकारी आपके साथ हमेशा साझा करते रहते हैं। ऐसी ही एक जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं दोस्तों। शेफ की टोपी को टोक ब्लैंच कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सफ़ेद टोपी। इसका डिज़ाइन 16वीं सदी में फ्रेंच किचन से आया था। इसमें 100 प्लेट्स यानी सिलवटें होती हैं, जो उस शेफ के 100 तरीकों के व्यंजन पकाने की कला का प्रतीक मानी जाती हैं। शेफ सिर्फ टोपी को फैशन के लिए नहीं पहनते, बल्कि शेफ की कैप हाइजीन और सम्मान का प्रतीक भी मानी जाती है। अगर रसोई कोई साम्राज्य है तो शेफ ही उसका राजा होता है और उसके सिर पर टोपी उसका ताज होती है। शेफ की सफ़ेद यूनिफॉर्म में उनकी ऊंची टोपी सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। शेफ के लिए उनकी टोपी भी राजा के लिए उनके ताज जितनी ही कीमती होती है। लेकिन दोस्तों, टोपी के ऊंची होने के पीछे की वजह से लोग अनजान हैं। आखिर शेफ की कैप ऊंची क्यों होती है, ये सवाल कभी ना कभी आपके दिमाग में भी आया होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण है कि खाने में बाल न गिरे, इसलिए शेफ ऊंची टोपी पहनते हैं। और यही वजह है कि प्रोफेशनल किचन में शेफ्स को सिर ढककर ही काम करने की इजाज़त होती है। इसके अलावा जैसे आर्मी अफसर अपनी यूनिफॉर्म से पहचाने जाते हैं, वैसे ही शेफ की पहचान उनकी वाइट यूनिफॉर्म और टोपी से होती है। टोपी की ऊंचाई शेफ की पोजीशन और एक्सपीरियंस को बताती है। इसे लेकर एक कहानी भी प्रचलित है दोस्तों, जिसके मुताबिक 16वीं सदी में इंग्लैंड के राजाओं में से एक राजा हेनरी ने भोजन में बाल पाए जाने पर एक रसोई का सिर कटवा दिया था। इस घटना के बाद सभी रसोइयों को खाना बनाते समय टोपी पहनने का आदेश दिया गया था और इससे उनके बाल पके हुए भोजन से दूर रहते थे और रसोई में स्वच्छता और साफ सफाई बनी रहती थी। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी आपके लिए।

वक्त फिल्म से ये गीत आपने सुना आशा जी की आवाज़ में। घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं और बच्चों की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आजकल माता पिता को ज़्यादातर यही शिकायत रहती है कि उनका बच्चा पढ़ना नहीं चाहता या फिर किताबों को देखकर ही वो दूर दूर भागने लगता है। इस वजह से कई बार पेरेंट्स बच्चों पर काफ़ी गुस्सा होने लगते हैं और उन्हें डांटने लगते हैं। बता दें, आपकी आदत बच्चे को पढ़ाई से तो दूर करेगी ही और साथ ही आपसे डर की वजह भी बनेगी। लेकिन इससे और इसके लिए हम आपके साथ कुछ बातें साझा कर रहे हैं जिससे बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा और वो फोकस भी कर पाएगा। अक्सर देखा जाता है दोस्तों कि घर में जिस तरह का माहौल होता है वही बच्चों के व्यवहार में देखने को मिलता है। दरअसल बच्चे हमेशा अपने माता पिता और घर के बाकी बड़ों से देखकर ही सीख लेते हैं। बच्चों में पढ़ाई के प्रति ललक जगाने हो तो इसके लिए आपको खुद भी उनके साथ बैठकर पढ़ना होगा। इसके लिए आप उनके सामने किताबें पढ़ने बैठ सकते हैं, उनमें से उन्हें कुछ कहानी पढ़ा सकते हैं, सुना सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे बच्चों में किताबों के प्रति उत्सुकता बढ़ेगी। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाते वक्त पूरा उदाहरण देकर समझाइए। इसके लिए आप छोटे छोटे किस्से कहानियों की मदद ले सकते हैं। एक और काम आप कर सकते हैं कि बचपन से ही बच्चों को लाइब्रेरी विजिट करवाते रहें। जहां पढ़ाई का माहौल हो तो आगे चलकर भी उनमें किताबों के प्रति ललक बनी रहेगी और लाइब्रेरी से बढ़िया जगह कोई हो ही नहीं सकती। और बच्चों को अलग अलग जगहों की लाइब्रेरी घुमाने लेकर जाएं या फिर उन्हें बुक स्टोर्स पर ले जाकर बुक्स दिखा सकते हैं और अलग अलग किताबों को लेकर उनसे चर्चा कर सकते हैं। बच्चे छोटी छोटी बातों से ही खुश हो जाते हैं। जब भी आपका बच्चा पढ़ाई करने बैठे तो उसे शाबाशी जरूर दें, उसमें रीडिंग

अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें और साथ ही इससे बच्चे में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी और वह आगे और भी अच्छा करने की कोशिश करेगा और कहीं दूर तक जा सकता है, आपका बच्चा कुछ मुकाम हासिल कर सकता है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत आपने सुना दूसरा आदमी फिल्म से। दोस्तों, सारी चीज़ों की बातें हमने कर ली घर आंगन कार्यक्रम में, और अगर खाने पीने की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा और हल्का रखने के लिए लोग तरह तरह की चीज़ें खाते हैं। ऐसे में सत्तू एक सुपर फूड की तरह काम करता है। ये न सिर्फ ठंडक देता है बल्कि पाचन को भी बेहतर बनाता है। सत्तू से बनी चटनी स्वाद में जबरदस्त होती है और इसे रोटी, परांठा या चावल के साथ आसानी से खाया जा सकता है। अगर आप भी कुछ हेल्दी और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो सत्तू की चटनी जरूर बनाएं। तो चलिए जानते हैं इसकी आसान सी रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले एक कटोरी में 3 या 4 चम्मच सत्तू लें। इसमें बारीक कटा प्याज, लहसुन और हरी मिर्च डालें। अब इसमें नमक, नींबू का रस

और गरम करके सरसों का तेल डालें। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ठंडा पानी डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स करें। ध्यान रखें कि चटनी ज़्यादा पतली ना हो, हल्की गाढ़ी रखें। आखिर में ऊपर से हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला लें और आपकी स्वादिष्ट और ठंडी ठंडी सत्तू की चटनी तैयार है। आप भी खाएं और अपने अपनों को भी खिलाएं।

ये गीत आप सुन रहे हैं आए दिन बहार की फिल्म से और आवाज है लता मंगेशकर की। इसी गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं अगली मुलाकात तक। अपने दोस्त अमित कमल को यहीं पर दीजिए इजाजत और सुनते रहिए FM गोल्ड।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।

0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ. सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लौ जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करी।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे।

0: राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रुपये नकद और पदक शामिल हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़ककर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma today took oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office in secrecy to Dr. Sarma at a ceremony held at the Veterinary College ground in Khanapara, Guwahati.
2: Moi Sri Himanta Biswa Sarma Ishwarar namat shapat lao je bidhir dwara sthapito Bharatar Sangbidhanar proti moi prokito bishwas aru anugotya pokhon korim.
1: Along with Dr. Sarma, four MLAs were also sworn in as cabinet ministers. They include Rameshwar Teli and Ajanta Niyog from the BJP, Atul Bora from Ahom Gana Parishad, and Charan Boro from Bodoland People's Front. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers of NDA-ruled states attended the ceremony. With this, Dr. Sarma has become the first non-Congress leader in Assam to serve consecutive terms as Chief Minister. The National Democratic Alliance NDA returned to power for a third consecutive term in the state, securing 102 seats in the 126-member Assam Legislative Assembly. The Bharatiya Janata Party emerged as the dominant force with 82 seats, while its allies, the Ahom Gana Parishad and the Bodoland People's Front, won 10 seats each. The National Testing Agency, NTA, has decided to cancel the NEET UG 2026 examination conducted on the 3rd of this month for admission to undergraduate medical education. In a social media post, NTA informed that the decision has been taken in the interest of students and in recognition of the trust on which the national examination system rests. The agency also stated that the government has decided to refer the matter to the Central Bureau of Investigation, CBI, for a comprehensive inquiry into the allegations of paper leak. The agency said it will extend full cooperation to the Bureau and provide all materials, records and assistance required for the investigation. It said the decision was taken following inputs examined by the NTA in coordination with central agencies and investigative findings shared by law enforcement agencies.

0: vacancies. The NTA said the examination will be reconducted on dates to be notified separately. Prime Minister Narendra Modi has hailed the decisions of the first cabinet meeting under West Bengal's newly elected Chief Minister Shubhendu Adhikari. In a social media post, the Prime Minister said the welfare of people of West Bengal is the top priority. Mr. Modi expressed happiness that the people of the state will have access to Ayushman Bharat, the world's largest healthcare scheme that ensures top quality and affordable healthcare. The state government announced several important decisions after the first cabinet meeting yesterday. Transfer of land to the Border Security Force within 45 days for fencing the borders with Bangladesh was among the decisions. In Uttar Pradesh, an FIR has been registered in Mahoba district against Samajwadi Party MP Ajendra Singh Lodhi over alleged objectionable remarks against Prime Minister Narendra Modi. The case was lodged at Mahoba Kotwali police station following a complaint filed by BJP leader Satyendra Pratap. Police said the FIR has been registered under various sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita. The controversy erupted after Lodhi allegedly made objectionable remarks against the Prime Minister while reacting to Mr. Modi's appeal urging people not to buy gold. President Draupadi Murmu today conferred the National Florence Nightingale Awards 2026 to 15 nursing professionals at a function held at Rashtrapati Bhavan. The award has been given for their outstanding contribution in the field of nursing. These prestigious awards are presented to registered nurses, midwives, auxiliary nurse midwives and lady health visitors serving across central and state governments, union territories and voluntary organizations. International Nurses Day is being celebrated today, marking the birth anniversary of Florence Nightingale, the founder of modern nursing. The theme this year is Our Nurses, Our Future, Empowered Nurses Save Lives. Benchmark domestic equity indices were trading around 1.3% lower in afternoon trade today. The Sensex plunged 1,041 points to 74,975, while the Nifty shed 297 points. To 23,519 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर. और आइए अब प्रस्तुत है लाइव रेडियो कार्यक्रम एक ही फिल्म से. लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश.
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है. रुकिए, वरना घर आ जाएंगे.
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले. दूसरे कमरे में जाइए. आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो.
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दो, बच जाओगे.
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए. अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा.
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है.
3: अरे?
2: डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है. इसीलिए पैनिक ना करें. पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें. उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें.
4: हेलो मम्मा.
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
1: आदाब, सत श्री अकाल, स्वीकार कीजिए आपके अपने दोस्त और इस लाइव रेडियो कार्यक्रम की होस्ट रैना तंवर का खुशनुमा प्यार भरा नमस्कार. तो दोस्तों, ये घड़ी है हमारे और आपके पसंदीदा लाइव रेडियो कार्यक्रम एक ही फिल्म से. और आज का हमारा खास सफर समर्पित है बॉलीवुड के एक ऐसी फिल्म को जिसमें है कॉमेडी, रोमांस, मस्ती, एक्शन और फैमिली

हमारा ईमेल आईडी ipradiodelhi@gmail.com। तो हिंट तो हमने दे ही दिया है और यकीनन हमारे श्रोता बहुत समझदार हैं, समझ ही गए होंगे कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं ये फिल्मी सफर इस खूबसूरत नगमे के साथ। सुनते हैं, मजे लेते हैं और इंतजार करूंगी मैं आपके सबसे पहले भेजने वाले श्रोता के संदेश का।

ये गाना किस फिल्म का था, ये तो आप सभी को पता चल गया होगा और हमारे पास जवाब भी बेहद सारे आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेज का। फिल्म सत्ते पे सत्ता, जी हाँ बिल्कुल सही। और डीबी राणा जी ने सबसे पहले हमें जवाब दिया है, नेहरू विहार दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें मैसेज देने के लिए। लेकिन आज के हमारे फेवरेट श्रोता जी, बता ही दिया हमने नाम उनका। और वाह क्या कमाल का गीत है ना दोस्तों, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। आज भी जब ये गाना बजता है तो दिल अपने आप पुराने दिनों की गलियों में घूमने लगता है।

इस गाने की खास बात यह थी कि इसे फिल्म के सातों भाइयों की दोस्ती और जिंदगी के अलग अंदाज को दिखाने के लिए शूट किया गया था। और क्या आप जानते हैं, इस फिल्म की कहानी हॉलीवुड फिल्म सेवन ब्राइड्स फॉर सेवन ब्रदर्स से प्रेरित थी, लेकिन बॉलीवुड अंदाज में इसे इतना मज़ेदार बनाया गया कि ये अपने समय की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल हो गई। अब जरा सोचिए, सात शरारती भाई और उनकी जिंदगी में एक आती है समझदार लड़की, यानी हेमा मालिनी जी। फिल्म में उनका किरदार पूरी कहानी को खूबसूरती से बदल देता है। और अब वक्त है अगले गाने का, जो प्यार और मासूमियत से भरा है। और हमारे पास मैसेज आया नेहरू चौक मैडम, सुरेश जाधव, अनीता जाधव, सोनल प्रसाद और भी बहुत सारे मैसेज हैं। पिपरिया से कमलकांत, दीपा, रिमझिम और मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकुर, राघव। और फिर हमारे पास अजीत भास्कर का भी आया है मैसेज, और बिट्टू घने एक फिल्म से, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सुरेश, पूनम, गंगेन, इसी तरीके से हमें बहुत सारे, भूषण खेरा जी की फैमिली, उन पूरी परिवार से हमें मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और सुनते हैं अगला ये प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, दिलबर मेरे, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत आज भी रोमांटिक प्लेलिस्ट की शान बना देता है। कहते हैं इस गाने की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी शानदार थी कि दर्शकों की इस जोड़े

खूब पसंद करा था। और दोस्तों सत्ते पे सत्ता सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म नहीं, बल्कि इसमें फैमिली बॉन्डिंग, भाईचारा, प्यार का खूबसूरत संदेश भी था। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक सीधा साधा भाई और एक खतरनाक विलेन दोनों किरदार बखूबी निभाए थे, और यही डबल रोल फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण बना। अब माहौल का थोड़ा सा और मस्ती भरा बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले बता देते हैं हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का, इसी तरह से प्यार बरसाए रखिएगा। कैसा प्रोग्राम लगता है इसी से हमें पता चलता है जब आपके मैसेज आते हैं। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरनान, अविराल, उन्होंने हमें मैसेज किया है। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन जी का मैसेज आया है हमारे पास, भूषण खेरा जी का मैसेज आया है हमारे पास, और बिट्टू गंगनेजा ने हमें जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश पूनम गंगनेजा जी ने मैसेज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मैसेज करने के लिए। और अब सुनते हैं हमारा ये अगला नगमा, बहुत ही खूबसूरत। और सच में ये गाना बहुत ही खूबसूरत है, जिंदगी ऐसे ही बतानी चाहिए।

0: और जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम ये जो है एक ही फिल्म से। यस, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट रैना तंवर, और हम मस्ती भरे सारे गाने और फिल्म को फिल्म के दिलचस्प किस्सों के साथ लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले एक सुनते हैं संदेश।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो हम बात कर रहे हैं सत्य पे सत्ता फिल्म की, और आज देखिए दोस्तों वाह कितना अच्छा दोस्त सुन, अभी हमने गाना सुना ना जिंदगी मिलके बिताएंगे, तो हम सब ये गाना ना बहुत ही खूबसूरत है, और सच में जिंदगी बहुत छोटी सी है ना, तो जिंदगी हमेशा मिलके बितानी चाहिए। ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि दोस्ती और भाईचारे का एक एंथम बन चुका है। आज भी कई दोस्त अपनी यादों में इस गीत को जरूर शामिल करते हैं। इस फिल्म के सातों भाइयों के नाम भी बड़े दिलचस्प थे, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, यानी हफ्ते के 7 दिनों पर आधारित 7 किरदार। और दोस्तों कहते हैं कि जो फिल्म के सेट पर ना खूब मस्ती होती थी, कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान सभी कलाकार सचमुच एक परिवार की तरह रहने लगे थे। और 7 भाइयों की कहानी, जो अनाथ थे, एक दूर दराज फार्म हाउस में रहते थे, अनपढ़ और असभ्य थे। बड़ा भाई रवि जो है बाकी 6 भाइयों को पालन पोषण करता, और रवि को इंदु यानी हेमामालिनी से प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेते। इंदु घर में आती है तो सब जंगली भाइयों को ना सभ्य बनाने की बहुत कोशिश करती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब रवि के हम शक्ल बाबू खूंखार विलन यानी कि एंट्री होती है, और एक साजिश के तहत दोनों सभी भाइयों की जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। अब जरा रोमांस और शरारत का तड़का लगाया जाए, तो तैयार हो जाइए अगले खूबसूरत गीत के लिए।

0: अटक गया।
1: क्यों?
0: कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता,
2: कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता।
3: दुखी बेदुखी हो।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: क्या बात है ना दोस्तों, इस गाने की एनर्जी आज भी लोगों को झूमने पर मजबूर कर देती है ना। आर डी बर्मन साहब के संगीत की एक सही यही खासियत थी कि उनके गाने वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। और हम बता दें कि हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, जिसमें कि हमें नेहरू चौक पैनल से सुरेश अनीता जागर सोनल और मैसेज किया है, और उसी तरीके से हमें डोल राणा जी ने किया था।

पूजा भोपालगढ़ और संजय साहू पोटियाला से हमें मैसेज कर रहे हैं। पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेज करने के लिए। हमें सुनील पाठक जी ने मैसेज किया है हमें, और इसी तरह से देवशंकर तामूरिया जी ने मैसेज किया है, मांगे राम जी ने मैसेज किया है हमें, और इसे उन्होंने हिमानी शुभम यश ऋतु सभी ने हमें मैसेज किया है। लालगिरी से हमें गोस्वामी जी ने मैसेज किया है, और आर कुमार जी ने मैसेज किया हमें मिंटू पंजाब से, बंडिंग खेड़ा और पिंकी लवली आरती अरोड़ा, और लालगिरी जी ने, हरजिंदर सिंह भाटिया जी ने हमें मैसेज किया है, एंजल सोनू पप्पी हरजिंदर भाटिया जी सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हरजिंदर जी सिंह बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी पसंद कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम को। और सुनते हैं जाते जाते ये वाला गीत, क्योंकि अब समय हमारा हो गया है, हमें अलविदा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के इस खूबसूरत सफर में जाते जाते सुनते हैं ये वाला गीत। तो दोस्तों आज के इस खूबसूरत सफर यहीं समाप्त करती हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आर डी बर्मन साहब के संगीत और ये सब फिल्म के जो सुनहरी यादें और दिल को छू जाने वाले गीत मैंने प्ले किए थे वो बहुत अच्छे लगे होंगे आपको। आपकी दोस्त रैना तंवर आपसे लेती है इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई फिल्म गानों और जड़ी कुछ जुड़ी यादों के साथ। जाते जाते इतना ही कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि मई के संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का भागीदार बनके एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभाएं, क्योंकि ऑयल और पेट्रोल भी बहुत महंगा है भाई, पैदल चले जितना जा हो सकता है। तो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट दे और आपके दिल को दे जो सुकून वो काम जरूर करे। सुनते रहिए आपका अपना आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से जुड़े रहिएगा हमारे कार्यक्रम के साथ।

जिनका मैं नाम नहीं ले पाई, कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। और नरेंद्र सूथक जी का भी मैसेज हमें आया है, और जाते जाते मैं नाम बता देती हूँ, हरजिंदर सिंह जी का भी आया है। बहुत सारे मैसेज आए हैं जिनको मैं ले नहीं पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सारे ही हमारे बहुत ही खास श्रोता हैं। इसी तरह से जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोहन जी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और अब से कुछ ही देर में हम सुनेंगे पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश हिंदी में समाचार। तो जुड़े रहिए हमारे इस आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। पेपर लीक होने के इल्जाम कारण नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के हुक्म दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूजे कार्यकाल लई असम के मुख्यमंत्री वजों सहु चुकी। आज अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को साल 2026 लई राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड प्रदान किए। सीबीआई वालों लखा रूपये के कथित रिश्वतखोरी मामले में बीती देर रात पंजाब च मोहाली स्थित पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर से छापेमारी। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटन्स का मुकाबला शामी 7:30 सनराइजर्स हैदराबाद न होगा। हुण खबरां विस्तार नाल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सिक्ख्या विच दाखले लई इस महीने की 3 तरीक नूं होई नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करन दा फैसला कीता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट

एनटीए ने दस्सिया कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित विच अते राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली के भरोसे नूं मानता देंदे होए लिता गया है। एजेंसी ने भी कहा कि सरकार ने पेपर लीक के इल्जामां की व्यापक जांच लई मामले

0: प्रदान करेगी। एनटीए ने कहा कि फैसला केंद्रीय एजेंसियां दे नाल नाल एनटीए वालों जांच के नतीजों का मुलंकन करने तों बाद लिया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा लई नवी तरीक वक्रे तौर ते नोटिफाई की जाएगी। रजिस्ट्रेशन दे वेरवे उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 लई चुनिया गया परीक्षा केंद्र बदलिया नहीं जाएगा ते दोबारा परीक्षा लई वरत्या जाएगा। एजेंसी ने भी कहा कि दोबारा परीक्षा लई मुड़ रजिस्टर करने की कोई लोड़ नहीं होगी ते कोई वादू परीक्षा फीस नहीं ली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने अज लगातार दूजे कार्यकाल लई असम के मुख्यमंत्री वजो सहु चुकी। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानबारा विच वैटनरी कॉलेज के मैदान विच कराए गए एक समारोह विच डॉ शर्मा नूं अहुदे ते सरकारी भेद गुप्त रखने की सहु चुकाई। डॉ शर्मा के नाल चार विधायकों ने भी मंत्री वजो सहु चुकी। इन्हां विच भाजपा तों रामेश्वर तेली ते अजंता नियोग असम गण परिषद तों अतुल बोरा ते बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट तों चरण बोरो शामिल सन। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री ते भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद सन। राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोल एनडीए 126 मैंबरी विधानसभा 102 सीटा प्राप्त करके असम विधानसभा विच लगातार तीजी बार सत्ता विच आया। भारतीय जनता पार्टी 82 सीटा नाल सब तो वड्डी पार्टी वजो उभरी जदों कि इसके सहयोगी असम गण परिषद अते बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10-10 सीटा जितियां। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ के कतल की जांच अपने हाथों में ले ली है। एजेंसी ने राज पुलिस की सिफारिश तो बाद अज अधिकारिक तौर पर मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के ज्वाइंट डायरेक्टर की निगरानी हेठ एक विशेष जांच टीम बनाई जाएगी। राज पुलिस एजेंसी को केस डायरी सौंपने की तैयारी कर रही है। सीबीआई की टीम अज अपराध स्थान का मुआयना करने लिए मध्यग्राम पुलिस स्टेशन का दौरा कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवे चुने गए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अगुवाई हेठ राज कैबिनेट की पहली मीटिंग में लए गए फैसलों की शलाघा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों की भलाई सब तो वड्डी तरजीह है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि डबल इंजन सरकार प्रमुख केंद्रीय योजनाओं तक निर्विघन पहुंच यकीनी बनाएगी। कल राज कैबिनेट की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन्हां में 45 दिनों के अंदर बांग्लादेश सरहद से वाड़ लाने लई सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ नूं जमीन तब्दील करना शामिल सी। राज सरकार ने केंद्र सरकार की प्रमुख सेहत योजना आयुष्मान भारत ते केंद्र सरकार दी होर पहलकदमियां नूं राज विच लागू करने का भी ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी एशिया संकट दरमियान विदेशी सिक्के की बचत करने लोगों को ईंधन बचाने ते विदेशी उत्पादों की वरतों घटाने की अपील की। कल गुजरात के वडोदरा विखे एक जनतक रैली को संबोधन करदिया श्री मोदी ने पेट्रोल ते डीजल की खपत घटाने घर तो काम करने ऑनलाइन क्लासा ते वर्चुअल मीटिंग वर्गे कोविड युग के उपावान अपनाने की अपनी अपील दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
0: ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ xnl@tirrnewslander, ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਏ rn-airjalandhar ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਏ @airjalandhar। आज अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस है। यह दिन आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। इस साल का विषय है साडियां नर्सां साडा भविख। यह दिन दुनिया भर में नर्सिंग पेशेवर लिए बेहतर सहायता सुरक्षा और वसीलियां की जरूरत को उजागर करता है। यह मरीजों की देखभाल भाईचारक सेहत और आर्थिक विकास में नर्सां की महत्वपूर्ण भूमिका को मानता देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज राष्ट्रपति भवन विखे एक समारोह विच 15 नर्सिंग पेशेवर नु साल 2026 लई राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड प्रदान किए। यह अवार्ड नर्सिंग के खेत्र विच उन्हां दे शानदार योगदान लई प्रदान किए गए। यह अवार्ड रजिस्टर्ड नर्सा मिडवाइफ्स सहायक नर्स मिडवाइफ्स और औरत सेहत विजिटर्स नु प्रदान किए गए। हरेक अवार्ड विच एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रूपये का नकद इनाम और एक तमगा शामिल है। सेहत ते परिवार भलाई मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, सेहत राज मंत्री प्रताप राव यादव ते होर

0: ਪਤਵੰਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗਲ ਅਵਾਰਡ 1973 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਨੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦਾ ਥੰਮ ਦੱਸਿਆ ਏ। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने लखा रूपये के कथित रिश्वतखोरी के संबंध में बीती देर रात मोहाली स्थित पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर से छापा मारिया। यह छापा चंडीगढ़ स्थित सीबीआई टीम ने भ्रष्टाचार रोकथाम कानून नाल संबंधित एक मामले में मारिया है। इस संबंध में पंजाब के मुकतसर जिले के मलोट कस्बे में एक घर से भी छापा मारिया गया। हालांकि जांच एजेंसी ने अजे तक कोई अधिकारित बयान जारी नहीं किया है, पर हल्कियां मुताबिक सीबीआई ने कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जांच अजे भी जारी है। इस दौरान साडे जलंधर वाले पत्रकार ने अधिकारित हल्कियां दे हवाले नाल खबर दित्ती है कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पुष्टि कीती है कि सीबीआई ने एक व्यक्ति नूं फड़ लिया ते जांच जारी है। ब्यूरो ने कहा है कि जेकर ब्यूरो विचों किसी दा नां आंदा है तां असीं सीबीआई नाल पूरा सहयोग करांगे अते कानून नूं अपना काम करन देवांगे। महान जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर वल्लों अज दे दिन 1710 विच सरहंद फतेह करन दी याद विच सरहंद फतेह मार्च मोहाली दे पिंड छप्पड़चिड़ी तो रवाना होया। इस तों पहला छप्पड़चिड़ी स्थित गुरुद्वारा श्री फतेह रंग साहिब विच अखंड पाठ साहिब दे भोग पा के अरदास कीती गई। इस मौके ढाडी जत्थियां ने वारा गा के बाबा बंदा सिंह बहादुर दी फतेह गाथा सुनाई। इस दौरान श्री अकाल तख्त साहिब दे कार्यकारी जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़का, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध ते नुमाइंदे ते होर शख्सियता मौजूद सन। गृह मंत्री अमित शाह ने महान सिख योधे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दे सरहंद फतेह दिवस ते देशवासियों नूं शुभकामनावां दित्तियां ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने बेइंसाफी विरुद्ध संघर्ष की अगुवाई की, मुगलों को हराया, स्वयंमान हिम्मत ते धर्म की रक्षा का संदेश दिता। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी सरहंद फतेह दिवस से एक सोशल मीडिया पोस्ट राही महान सिख जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी और समूह शहीदों को नमन किया। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटन्स का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद नाल होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार शामी 7:30 बजे शुरू होगा। आखिर विच बुलेटिन दियां खास खास खबरां एक बार फिर। पेपर लीक होने के इल्जाम कारण नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के हुक्म दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरे कार्यकाल लिए इल्जाम के मुख्यमंत्री वजो सहु चुकी। अज अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवर नु साल 2026 लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड प्रदान किए। सीबीआई वालों लखा रूपये के कथित रिश्वतखोरी मामले में बीती देर रात पंजाब च मोहाली स्थित पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर से छापेमारी। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 ते होगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। जनाब हेमंत बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी मियाद के लिए आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ ले लिया है। नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान पेपर लीक हो जाने के इल्जाम के सबब मंसूख कर दिया गया है। सीबीआई से तहकीकात कराए जाने का हुक्म दिया गया है। सीबीआई ने मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के मुआविन चंद्रनाथ रथ के कत्ल की तहकीकात अपने हाथ में ले ली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सों को कौमी फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड से नवाजा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब खबरें तफसील से। बीजेपी के सीनियर रहनुमा हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार आसाम के वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। ये तकरीब गुवाहाटी के खानापाड़ा इलाके में वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िद हुई। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 अरकान असम्बली को भी काबीना वजीरों की हैसियत से हलफ दिलाया गया। इनमें बीजेपी के रामेश्वर तेली और अजंता नेओग, आसाम गण परिषद के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के चरण बोरो शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, बहुत से मरकज़ी उज़रा और एन

एक ही सरकार वाली रियासतों के उजराए आला ने इस तकरीब में शिरकत की। इसके साथ ही डॉक्टर शर्मा आसाम में ऐसे पहले गैर कांग्रेसी रहनुमा बन गए हैं जिन्होंने वजीर आला का ओहदा लगातार दूसरी बार संभाला है। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA इस रियासत में लगातार तीसरी बार इकतदार में आया है। उसने 126 रुकनीय आसाम कानून साज असेंबली में 102 सीटें हासिल की थीं। भारतीय जनता पार्टी 82 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि उसकी इत्तेहादी पार्टियों आसाम गण परिषद AGP और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट BPF को 10-10 सीटें हासिल हुई थीं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से 5 मुल्कों मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में वजीर आजम जुमे को मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से तवानाई से मुतालिक इश्तराक और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। वजीर आजम इसी रोज़ नीदरलैंड्स में शाह विलियम अलेक्जेंडर, मलिका मैक्सिमा और वजीर आजम रोब जेटेन से मुलाकात करेंगे। स्वीडन में जनाब मोदी वजीर आजम उल्फ क्रिस्टेरसोन के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला ओंडेर लेन के साथ सनत से मुतालिक यूरोपियन राउंड टेबल से खिताब करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी नॉर्वे के दौरे पर जाएंगे, जहां वो तीसरी भारत नॉर्डिक चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और वजीर आजम जोनास गेयर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। दौरे के आखिरी मरहले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली जाएंगे और सदर सर्जियो मेत्रेला और वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि वजीर आजम के आइंदा दौरे से हाल ही में किए गए भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती समझौते के तनाजुर में यूरोप के साथ मुख्तलिफ शोबों, खासतौर से तजारत और सरमायाकारी के शोबे में भारत की साझेदारी मजीद मजबूत होगी। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 का इम्तिहान मनसूख करने का फैसला किया है, जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में दाखिले के लिए इस महीने की 3 तारीख को कराया गया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने बताया कि ये फैसला तलबा के मफाद में और उस ट्रस्ट को तस्लीम करते हुए किया गया है जिस पर कौमी इम्तिहान का निज़ाम मुनहसिर है। एजेंसी ने यह भी कहा कि हुकूमत ने इस मामले को तफ्तीश के मरकजी ब्यूरो CBI को सौंपने का फैसला किया है, ताकि पेपर लीक के इल्ज़ामात की भरपूर तरीके से जाँच की जा सके। एजेंसी ने कहा कि वो CBI को अपना पूरा ताउन देगी और तफ्तीश के लिए तमाम तर मवाद, रिकॉर्ड्स और मदद फराहम करेगी। एजेंसी ने कहा कि NTA ने यह फैसला मरकजी एजेंसियों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की तरफ से फराहम की गई तफ्तीशी मालूमात की बुनियाद पर किया गया। NTA ने कहा कि ये इम्तिहान दोबारा कराया जाएगा, जिसके लिए अलग से तारीखों का ऐलान किया जाएगा। मई 2026 साइकिल के लिए रजिस्ट्रेशन की तफसीलात, उम्मीदवारों की मालूमात और इम्तिहान के लिए मुंतखब मराकज़ में कोई तब्दीली नहीं की गई और इन्हें दोबारा कराए जाने वाले इम्तिहान में इस्तेमाल किया जाएगा। एजेंसी ने बताया कि नए सिरे से किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी और न ही इम्तिहान की कोई इजाफी फीस ली जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI ने मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के जाती मुआविन चंद्रनाथ रथ के कत्ल की छानबीन अपने हाथ में ले ली है। रियासती पुलिस की सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए एजेंसी ने आज बाजाब्ता तौर पर तहकीकात का काम अपने हाथ में ले लिया है। एक बयान में CBI ने कहा है कि उसके कोलकाता जोन के ज्वाइंट डायरेक्टर की निगरानी में खसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी जाएगी। इस दौरान CBI की एक टीम के आज मध्यमग्राम थाने का दौरा करने और उस जगह का मुआयना करने का इम्कान है जहाँ पर कत्ल का ये वाकया पेश आया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के नव मुंतखब वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के जेर सदारत पहली काबीना मीटिंग के फैसलों की सताइश की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि मगरबी बंगाल के लोगों की फलाह बहबूद आला तरीन तरजीह है। जनाब मोदी ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि रियासत के लोगों को हिफजान सेहत से मुतालिक दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत तक का रसाई हासिल होगी, जो आला मेयार के काबिल रसाई हिफजान सेहत को यकीनी बनाती है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि डबल इंजन की सरकार इस बात को यकीनी बनाएगी कि अहम मरकजी स्कीमों के फायदे लोगों तक बिला रुकावट पहुंचें।
बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन इस माह की 18 तारीख को ओडिशा का एक रोजा दौरा करेंगे

वो आला सतह के तंजीमी जायजे के लिए ये दौरा करेंगे, जिसका मकसद पार्टी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना है। इस दौरे का मकसद ये भी है कि बीजेपी को पिछले साल असेंबली इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी मिलने के बाद समाज की निचली सतह पर बीजेपी को मजीद मकबूल बनाया जाए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में 15 नर्सिंग पेशावरों को कौमी फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड से नवाजा। ये अवार्ड नर्सिंग के मैदान में इनके गैर मामूली ताउन पर दिया गया है। ये अवार्ड मरकजी और रियासती हुकूमतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों और रज़ाकार तंजीमों से वाबस्ता रजिस्टर्ड नर्सेज, दवाइयों मददगार और नर्स मिडवाइफ्स और लेडी हेल्थ विजिटर को दिए जाते हैं। हर एक अवार्ड मेरिट के एक सर्टिफिकेट, 1 लाख रुपए नकद रकम और इन सेहत कारकुनों के ज़रिए फराहम की गई बेशबहा खिदमात के तहत कौमी के तशक्कुर का इजहार करने वाले एक मेडल पर मुश्तमिल है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर जगत प्रकाश नड्डा, सेहत के वज़राए ममलिकत प्रताप राव जाधव और सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। जदीद नर्सिंग की बानी फ्लोरेंस नाइटिंगल की उम्र पैदाइश पर आज नर्सों का बैनुल अक्वामी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है हमारी नर्सें हमारा मुस्तकबिल, बाइख्तियार नर्सें जिंदगी बचाती हैं। ये दिन मरीजों की देखभाल, कम्युनिटी हेल्थ और इकतसादी तरक्की में नर्सों के रोल को तस्लीम करता है। तमिलनाडु के वजीर आला सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, इबादतगाहों और बस स्टैंड के नज़दीक वाक़ शराब की 717 दुकानों को बंद करने का हुक्म दिया है। ये दुकानें तमिलनाडु रियासती मार्केटिंग कॉरपोरेशन के तहत चलाई जाती हैं। रियासती सरकार ने एक बयान में कहा कि इस कॉरपोरेशन के तहत शराब की 4,675 खुर्दा दुकानें चलाई जाती हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। खास खास खबरें एक बार फिर। जनाब हेमंत बिस्वा सरमा ने लगातार दूसरी मियाद के लिए आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ ले लिया है। नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान पेपर लीक हो जाने के इल्ज़ाम के सबब मनसूख कर दिया गया है। सीबीआई से तहकीकात कराए जाने का हुक्म दिया गया है। सीबीआई ने मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के मुआविन चंद्रनाथ रथ के कत्ल की तहकीकात अपने हाथ में ले ली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सों को कौमी फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड से नवाजा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: 967, while the Nifty shed 305 points to 23,511 when reports last came in. The broader market at the National Stock Exchange also declined. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heatwave conditions at isolated places over Gujarat, Madhya Maharashtra, Marathwada, Rajasthan and West Madhya Pradesh till tomorrow. The Met Department has issued an orange-coloured warning for heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya and also predicted heavy rainfall conditions over Arunachal Pradesh, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim tomorrow. Bihar and Uttarakhand are also likely to witness thundersquall with wind speed reaching up to 60 km per hour tomorrow. Meanwhile, warm night conditions are expected to prevail at isolated places over Rajasthan throughout this week. In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. NEET exam for admission to undergraduate medical education cancelled over paper leak allegations, CBI probe ordered. Hemanta Biswa Sarma takes oath as Chief Minister of Assam for second consecutive term. CBI takes over probe into murder of West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari's aide, Chandranath Rath. President Draupadi Murmu confers National Florence Nightingale Awards on 15 nursing professionals. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व सरमा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লও যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ. हिमंता बिस्व सरमा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री सरमा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने

0: में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमबी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबूधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई।

0: लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, शुरू करते हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार। जी हाँ, आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो देर ना करते हुए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और सबसे पहले सुनवाती हूँ आपको ये गीत, जिससे कि आपको भी पता चले कि आज हम किसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो लीजिए सुनते हैं ये गीत और उसके बाद बात करेंगे अपने इस कलाकार के बारे में।

दोस्तों, अभी आप समझ ही गए होंगे, और नहीं समझे तो हम बता देते हैं। आज हम बात करेंगे इकबाल कुरैशी की। जी हाँ साथियों, इकबाल कुरैशी का जन्म 12 मई 1930 को औरंगाबाद में हुआ था, और बाद में वे हैदराबाद चले गए थे। दोस्तों, बचपन में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए प्रदर्शन भी किया था, और फिल्म उद्योग में आने से पहले वे निजी समारोह में गीत भी गाया करते थे। और कवि मखदूम मोहिद्दीन और अभिनेता निर्देशक चंद्रशेखर के दोस्त भी थे वो। बाद में जब वे मुंबई पहुंच गए तो वे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के नाटकों में निर्देशन में शामिल हो गए थे।

दोस्तों, कुरैशी को कई फिल्मी संगीत रचनाओं का श्रेय दिया जाता है। इनमें मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और महेंद्र कपूर, मुबारक बेगम और तीन बहन मंगेशकर, लता, आशा और उषा द्वारा गाए गए गीतों का संगीत शामिल है।

दोस्तों, इकबाल कुरैशी ने शशि कपूर, मनोज कुमार और जॉय मुखर्जी, साधना सहित कई अभिनेताओं के साथ संगीत दिया है। उन्होंने 1958 की फिल्म पंचायत के 10 गानों के लिए संगीत तैयार किया, जिसमें उन्होंने लोक और शास्त्रीय संगीत का संयोजन किया और ताथैया करके आना गीत में बीन और कांच तरंग वाद्य यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा दिया। दोस्तों, 1960 में उन्होंने दो फिल्मों बिंदिया और लव इन शिमला के लिए संगीत तैयार किया, जिनके गीत राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखे गए थे और मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाए गए थे। साथियों, इन दो गीतों में मैं अपने आप से घबरा गया हूँ और यूं जिंदगी के रास्ते सवारते चले गए की धुनें दिखाती हैं कि रफ़ी उच्च स्वर तक कैसे पहुँच सकते थे। साथियों, लव इन शिमला में कुरैशी का गीत गाल गुलाबी किसके हैं, जिसे रफ़ी ने गाया था और जिसमें तत्कालीन नए अभिनेता जॉय मुखर्जी ने अभिनय किया था। अगले वर्ष उन्होंने फिल्म उमर कैद के लिए संगीत तैयार किया, जिसमें हसरत द्वारा लिखित और मुकेश द्वारा गाई गई दुखद गज़ल मुझे रात दिन ये ख्याल है वो नज़र से मुझको गिरा ना दें शामिल थी। दोस्तों, 1963 में कुरैशी ने फिल्म ये दिल किसको दूं के लिए मुबारक बेगम और आशा भोसले द्वारा गाए गए गीत हमें दम दे के का संगीत तैयार किया, जिसमें शशि कपूर ने पदार्पण किया।

दोस्तों, उन्होंने चंद्रशेखर की 1964 की फिल्म चा चा चा के लिए संगीत तैयार किया और निर्देशन किया, जिसमें हेलन ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी। साथियों, इस फिल्म में सुबह न आई शाम न आई गीत शामिल था, जिसे तत्कालीन नए गीतकार नीरज ने लिखा था और रफ़ी ने गाया था। साथियों, इसी फिल्म से वे मखदूम मोहद्दीन की कविता चारागर के लिए संगीत तैयार करने के लिए सबसे ज़्यादा जाने गए, जिसे एक चमेली के मांडवे तले गीत में दर्शाया गया था, जो दो प्रेमियों की कहानी कहता है जो कभी एक साथ नहीं हो सकते थे। भारतीय फिल्म संगीत इतिहासकार मानेक प्रेमचंद ने इस संगीत को कुरैशी का सर्वश्रेष्ठ प्रयास बताया था। साथियों, 1964 के बाद जिन फिल्मों में उन्होंने योगदान दिया वे उतनी सफल नहीं रही थी। उन्होंने आलमारा 1973 में संगीत तैयार किया, जो पहली भारतीय टॉकी फिल्म आलमारा 1931 का रीमेक थी। कुरैशी एक बहुत अच्छे संगीतकार थे साथियों।

दोस्तों, संगीत में उनकी रुचि बचपन से ही शुरू हो गई थी। जब वे किसी भी निजी समारोह में और ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाते थे और निजी समारोह में जाते थे, तो वहाँ भी उनका जो शौक़ था वो शुरू हो जाता था। बड़े होने पर मुंबई आने के बाद वे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़ गए और नाटकों के लिए संगीत देने लगे।

दोस्तों, इकबाल कुरैशी का निधन 21 मार्च 1958 में को मुंबई के विले पार्ले स्थित उनके घर पर हुआ। टेलीविज़न साक्षात्कार देने के लिए तैयार था और इसी दिन हमें एक सुपर स्टार हमारे साथ, जो कि इतना अच्छा, जिसने हमें संगीत दिया, वो हमसे बिछड़ गया।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त शिल्पा गोस्वामी को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब वक्त है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का। लीजिए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओं, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
1: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
1: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
1: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
1: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: जी,
1: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मतिभ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
1: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
1: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: क्या कहते हैं?
2: थर्मल लैग।
1: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
2: जी।
1: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
2: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
1: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय

0: में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, ये कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
1: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे, थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिए। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं।
0: जी।
1: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
0: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने।
1: जी,
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो।
1: जी,
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
1: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की जानकारी जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, आग बरसाती धूप।
1: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है। और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे हैं?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से धीरे से,
3: चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आओ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलू देखू। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया, यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं, मैं उठाता हूँ। हाँ ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ चलिए चलिए।
2: आ गया डॉक्टर साहब का घर, इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं।
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
3: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
3: ओहो अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
3: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
3: लाओ अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: हाँ जी जा।
3: ऐसे। लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
3: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
2: जी।
3: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
3: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है।
1: जी।
3: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
3: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
3: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
3: हाँ हाँ हामिद भाई,

0: आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
1: जी।
0: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
1: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
0: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
2: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
1: जी।
2: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
1: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
0: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
2: गर्म हवा से रहे हम दूर,
3: ठंडक में खेले भरपूर।
2: ठंडक
3: में खेले भरपूर।
0: आग बरसाती धूप।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
5: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
6: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला इन्हें हमारा सलाम। तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परम वीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। नमस्कार साथियों।
7: नमस्कार
6: साथियों। भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
7: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
6: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
7: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
6: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
7: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
6: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
7: उनके शौर्य को देख कर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
6: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
7: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा, पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगी।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही।

0: भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक अल्बर्ट इक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट इक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक अल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। अल्बर्ट इक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक अल्बर्ट इक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में अल्बर्ट इक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट इक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा
1: सलाम।
2: परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम उर्दू मजलिस क्या, लीजिए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: उर्दू मजलिस के सामईन की खिदमत में शाहनवाज हाशमी का पुरखलूस आदाब। अल्लामा इकबाल ने कहा था, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साज से है जिंदगी का सोजो दरूं। तो सामईन कराम, इसी के मद्देनज़र आज उर्दू मजलिस की मजलिस को ख्वातीन की बज़्म से हमने सजाई है और आपके ज़ौक के मुताबिक हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम बज़्म ख्वातीन। सामईन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको ख्वातीन के अफकार व ख़यालात से रोशनास कराते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो भी रंग है, बकौल अल्लामा इकबाल के, कि वजूद ज़न से ही है। तो अदब व सकाफत के साथ साथ अमली दुनिया में हमारी ख्वातीन क्या सोचती हैं और ज़माने को किस नज़र से देखती हैं और साथ ही अपने एहसासात को किस तरह बयान करती हैं, किस तरह पेश करती हैं, जिससे हमारा अदब और समाज असरअंदाज होता है। तो सामईन, इसी के मद्देनज़र आज हमने एक मुज़ाकरे का एहतमाम किया है जिसका मौजू है ख्वातीन की क़यादत और माशी खिदमात, नए भारत की पहचान। इस मुज़ाकरे की शुरका हैं डॉक्टर सैयद मुबीन ज़हरा, डॉक्टर वसीम राशिद, मोहतरमा कुलसुम महविश और निज़ामत के फ़रायज़ अंजाम दे रही हैं सबा पाशा। तो लीजिए सामईन, समाप्त कीजिए।
1: आदाब दोस्तों, मैं हूँ सबा पाशा, बज़्म ख़्वातीन में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सैयद मुबीन ज़हरा साहिबा, जो कि एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ हैं डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा, जो एक जर्नलिस्ट, टीचर और साथ में एक बहुत ही काबिल शायरा भी हैं। हमारे साथ हैं कुलसुम महविश साहिबा, जो कि एक लिंग्विस्ट हैं और साथ में ही NSUT में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आज का हमारा टॉपिक है ख्वातीन क़यादत और माशी खुदमुख्तारी, नए भारत की पहचान। डॉक्टर मुबीन ज़हरा साहिबा,
2: जी,
1: क्या आपके नज़दीक माशी खुदमुख्तारी सिर्फ अर्निंग तक महदूद है या डिसीज़न मेकिंग और ऑनरशिप भी उतनी ही अहमियत रखती है?
2: देखिए सबा, आपने बड़ा एक ऐसा सवाल किया है जिसके लिए हमें एकदम ऊपर ऊपर से इसका जवाब नहीं मिल सकता। हमें इसके लिए, क्योंकि मैं तारीख ना हूँ, तो मैं इस मौजू को तारीख के पस मंज़र में आपसे बात करना चाहूँगी। इस पे हमने देखा है कि जब अगर हम प्री हिस्ट्री एज में जाते हैं, जब हम केव्स में रहते थे, है ना, मैं अब एक हिस्ट्री के हिसाब से आपको समझाऊँगी इस बात को। तो हमने ये देखा है कि औरतें जो थीं वो घर में रहती थीं, मर्द जो थे वो शिकार करते थे, हंटर्स और गैदरर्स वाला जो एक कॉन्सेप्ट था, तो वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हमारे जहन में बसा हुआ है। औरतों ने कामयाबी हासिल कर ली और मैं आपको यहाँ थोड़ा

0: सा ये बताना चाहूंगी सबा कि अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की और हम अपने बरसगीर की बात करते हैं, हम अगर एशियन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, तो पहली औरत प्रेसिडेंट जो हुई वो श्रीलंका में हुई. जब वेस्ट में लोग औरतें अपनी वोटिंग राइट्स के लिए लड़ रही थी, वहाँ हमें ऑलरेडी वोटिंग राइट्स मिला था और हम हमारे यहाँ ऑलरेडी हम वुमेन लीडर्स थी, इंदिरा गांधी हो चुकी हैं. आज हमारी जो भारत की जो फर्स्ट सिटीजन है वो एक महिला है, सदर जो है वो महिला है. तो सवाल ये स्टैटिस्टिकल सवाल भी है, ये उसके साथ साथ ये एक सोशल पर्सपेक्टिव वाला सवाल है. क्यों हम देखते हैं कि औरत अगर काम कर रही है, अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो उसका सारा कंसंट्रेशन वो इंडिपेंडेंस को लेकर अपनी फैमिली पे रहता है कि भाई मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं, मेरी फैमिली और आगे प्रोग्रेस करे. उसको अपने अपने आप को लेकर लेकर उस खुद मुख्तारी में वो खुद अपने को नहीं प्लेस कर सकती है. तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में, हमारे जो एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो बनाया गया है, जो माशरे में जो एक सिस्टम बनाया गया है औरतों को लेकर, वो यही बनाया गया कि भाई औरत अगर कुछ करे तो उसका फायदा उसको नहीं होना चाहिए, बाकी सबको होना चाहिए. और मैं और आगे जाऊंगी, जो मुझे बहुत ट्रबलसम लगता है कि उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी सैक्रिफाइस को सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सेलिब्रेट किया जाता है. देखिए वो जो एक, क्योंकि मैं इस पे बहुत सवाल उठाती हूँ इस कॉन्सेप्ट पे अपनी रिसर्च में, अपने लेक्चर्स में, कि औरत अगर कोई सेक्रीफाइस करती है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसको माना जाता है कि उसने बहुत बड़ा काम. आई एम स्टिल वेटिंग टू लिसन, अभी भी मैं वेट कर रही हूँ कि कोई मर्द के बारे में ऐसी कहानी मैं सुनूं. कोई कोई मर्द के बीवी की का इंतकाल होते ही दूसरी शादी मर्द कर लेता है. किस लिए करता है? बच्चों को पालने के लिए करता है ना, ये कॉन्सेप्ट होता है. तो ये एक बहुत आसान सा मुद्दा नहीं है कि सिर्फ खुद मुख्तारी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इसके पीछे एक बहुत खतरनाक डिजाइन है जहां औरतों को पीछे रखने के लिए एक ऐसी समाज में डिजाइन बनाई गई है. ये सब बोलने के बाद मैं ये भी कहूंगी कि अब हम बहुत स्मार्ट हो गए हैं, औरतें स्मार्ट हो चुकी हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में पता है. और सबसे बड़ी बात, मैं अगर अपने भारत के उसमें परिवेश में या उसके आईने में कहूंगी, तो मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ ऐसे लॉज हैं और हमारे यहाँ ऐसा चेंज आ रहा है कि कहीं ना कहीं औरतें, औरतों की जो रोल है, औरतों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो रिकग्नाइज भी हो रहा है. और वो सिर्फ सोसाइटी नहीं, पॉलिटिकल रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है. और सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा जो बात रखती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट की, जो हम बात कहते हैं. डॉक्टर वसीम साहब, मेरी इस बात से ज़रूर यकीन रखेंगी कि, एंड महवश यू टू ऑल्सो, यू आर अ यंग पर्सन, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट है, अगर हमें वो मिल जाए, लीगल एम्पावरमेंट अगर हमें मिल जाए, तो हमें इधर उधर तो देखना ही नहीं है ना. तो ये बहुत ज़रूरी है
1: जी. मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा. मेरा सवाल ये है कि आज भी हम देखते हैं कि पढ़ी लिखी खातीन जो हैं प्रोफेशनल काम करती हैं, उसको वो छोड़ देती हैं. आपको क्या लगता है कि हम लोगों को किस तरह से, पढ़ी लिखी औरतों को किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और ये क्या हमारे साथ जो हो रहा है सही है या नहीं?
2: देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर मुबीन जहरा ने जिस तरीके से बातें कही हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. और कॉन्स्टिट्यूशनल वे में अगर हमको एम्पावरमेंट मिल जाती है तो फिर इसके बाद ये सवाल ही बेमानी हो जाता है. लेकिन मैं अक्सर एक शेर पढ़ती हूँ, जब भी ख़वातीन की बात आती है तो मैं कहती हूँ, ये फूल हमें कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटो भरा बिस्तर नहीं देखा. ये किसी भी मकाम पर, किसी भी क़यादत में, किसी भी ऊँचाई पर पहुँचने के लिए आपको एक कांटो भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है. हम वेमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आप हिंदुस्तान की ही क्यों बात करें, आप पूरी दुनिया में देखिए, अभी भी खवातीन का कयादत है, लेकिन वो बात नहीं है. मतलब हमें कुछ भी मिल जाता है तो हमें लगता है कि अरे हमारे भी मर्दों ने ऐसा बहुत कुछ मिल गया. तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, अब तो हमारी गांव देहात की जो ख्वातीन हैं वो भी अपने तरीके से आगे बढ़ रही हैं. कयादत का मतलब खाली आप घर की कयादत ही ना रखें, बहुत दूसरी जगह पर भी, ऑफिसेज में भी, आप मीडिया को ले लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता आप देखती हैं मीडिया में, आपने देखा होगा कि ज्यादातर अच्छी एंकर्स पूरी, मतलब मशहूर हैं, ज्यादातर फीमेल्स हैं. इसमें सबसे अहम चीज है एजुकेशन, क्योंकि आप कहते हैं ना कि एक औरत को तालीम याफ्ता बनाना, एक नस्ल को तालीम याफ्ता बनाना.

0: बात खूब बात खूब।
1: तो एक नस्ल को तालीम याफ्ता बनाने के लिए औरत को ही अपनी आगे आना पड़ता है। अगर कोई ये कहता है कि एजुकेशन ने, तालीम ने मर्दों का मिजाज जहन बदल दिया है, मैं उस बात को नहीं मानती। लेकिन फिर भी बहुत तब्दीली आई है, बहुत तब्दीली आई है। एक तालीम याफ्ता औरत अगर किसी लीडरशिप में आती है तो उसको कई फायदे होते हैं। जाहिर है फिनेंशियली वो स्ट्रांग होती है, और फिनेंशियली स्ट्रांग होना आप समझ लीजिए बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एक बिल्कुल पेड़ अकेला खड़ा है, तने तन्हा, लेकिन वो चारों तरफ फल दे रहा है।
2: बहुत अच्छी
1: आप ये समझ लीजिए। तो मेरा कहना यही है कि एक अच्छी कयादत अगर लीडरशिप औरत को मिलती है तो उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी,
2: बहुत इम्पोर्टेंट।
1: उससे उसके अंदर एतमाद आता है। जब आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं, 10 लोगों के बीच में बैठते हैं, तो उससे आपके अंदर एक एतमाद पैदा होता है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छे लीडर को, एक अच्छी क़यादत अगर औरत कर रही है, तो उसको सबसे पहले स्मार्ट, एजुकेटेड और पूरे सिनेरियो से वाकिफ होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई फील।
2: या एग्जैक्टली। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कुलसुम जी, क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक औरत के लिए सिर्फ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है या साइकोलॉजिकल लिबरेशन भी है?
3: औरत का सिर्फ कयादत करना बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी तरह की एजुकेशन के, हमारी सोसाइटी के लिए खतरनाक भी हो सकता है।
2: जी बिल्कुल,
3: और होता आया है ऐसा। सिर्फ औरत नहीं, इनफैक्ट अगर मर्द भी इस तरह से कयादत करते हैं तो एक पूरी सोसाइटी को बर्बाद होने में, तबाह होने में वक्त नहीं लगता है। खैर ये एक अलग बात है, लेकिन जहाँ तक माशी खुद मुख्तारी की बात है,
2: जी जी,
3: तो उसमें हमारी औरतें, और ये नहीं कि मैं उन औरतों की बात कर रही हूँ जिन्होंने जो पढ़ाई लिखाई में पीछे रह गई हैं, इनफैक्ट वो औरतें जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, वो औरतें जो कहीं जॉब कर रही हैं, वो औरतें जो जॉब के साथ अपना घर भी संभाल रही हैं, वो माशी खुदमुख्तारी के नाम पर बस अपनी सैलरी घर लेके आती हैं। अक्सर और बेशतर तो साइकोलॉजिकली तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि जब सैलरी घर आ जाती है तो वो या तो एक जॉइंट अकाउंट में आती है, या अगर उनका सैलरी अकाउंट अलग है तो आते ही अगर उनके पास हस्बैंड है एक अदद, पार्टनर है एक अदद, तो उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुला होता है, उसमें चली जाती है पूरी सैलरी, कई बार पूरी पूरी सैलरी चली जाती है, और वहां से फिर मर्द हजरात संभाल लेते हैं मामला, क्योंकि औरतों के हिसाब से उनको पैसों की बात समझ नहीं आती। घर का खर्च जो है, वो फिनांस जो है, वो औरत ही संभाल रही होती है। वहां मर्द
4: क्या महदूद हो गई है,
3: वहां मर्द ये कहता है कि घर के मामला मुझे समझ नहीं आते,
2: नहीं समझ आते,
3: राइट। तो ये बहुत ही अजीब सा एक कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है और सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। हिपोक्रेसी, एग्जैक्टली, यू हैव गिवन द परफेक्ट वर्ड, राइट वर्ड। तो हिपोक्रेसी ऐसी है कि हमें समझ भी नहीं आती, इतना इनबिल्ट है कि हम इसको अपना अपनी खुद की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ही समझ रहे हैं, जो कि नहीं है, ना मर्द की है ना औरत की है, राइट। हमें पता ही नहीं है, फिनांस वर्ड सुनते ही हम खो जाते हैं कहीं, कि हमसे खाना पकवा लो, हमसे पढ़वा लो, हमसे सब कुछ करवा लो, बट ये मत करवाओ।
1: लेकिन
3: ये एजुकेशन देना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हमारा ये मानना है कि औरतों के नाम से अगर प्रॉपर्टीज होंगी तो जो है उनकी खुद मुख्तारी, उनकी लीडरशिप इम्पॉर्टेंट होगी। हम देखते हैं कि सिर्फ 14% जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो औरतों के नाम है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, तो मैं, मेरी क्लास जो है वो एक मिनी इंडिया होती है, मिनी भारत है, वहाँ बच्चे हर जगह से आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मैं अक्सर बच्चों के साथ इस बात पे डिस्कशन होता है, तो मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि कुछ साल पहले जब हम डिस्कस करते थे तो लड़कियों का ये होता था कि ग्रेजुएशन हो जाएगा, जो वसीम साहिबा बात कह रही थी, और शादी हो जाएगी, एंड फाइंड अ नाइस बॉय एंड गेट मैरिड। लेकिन आज गाँव के एक छोटे कस्बे से आने वाली भी लड़की जो है वो UPSC की ड्रीम रखती है, वो IRS बनने की ड्रीम रखती है, वो ये मानती है कि मैं खुद मुख्तार हूँ, मैं जॉब लूँ और उसके बाद मैं अपना खुद, मेरा अपना खुद का घर हो। तो कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन जो आप साइकोलॉजिकल बात कर रही थी, साइकोलॉजी की बात कर रही थी, तो वो कहीं ना कहीं औरतों को ये बात रियलाइज़ करनी होगी कि उन्हें अपनी चीज़ें अपने हाथ में लेनी होगी।
4: हमारे साथ सबसे बड़ा हादसा समझ लीजिए यही हुआ है कि हमें अवेयर नहीं होने दिया जाता।
1: मैं आपको बताऊँ वो कैसे अपने आप को एम्पावर कर रही हैं, कैसे फिनेंशियली स्ट्रांग हो रही हैं। मैंने देखा कि बिल्कुल मतलब गांव के कच्चे मकान में, हाँ। बिल्कुल जगह पर एक जगह बैठी

0: ईंटों की उसके ऊपर दीवार पे और बैठी रील बना रही हैं। औरतें औरतें बिल्कुल वैसा, मतलब
1: किसी भी लेवल पे कर रही हैं, एटलीस्ट दे आर रिप्रेजेंटिंग,
0: लहंगा और चोली पहने हुए हैं, वो कर रही हैं बच्चों को। तो ये मेरे कहने का मकसद ये है कि वो इस तरीके से एम्पावर कर रही हैं अपने आप को, इस तरीके से अपने आप को लीडर्स बना रही हैं और रील्स बना बना के वो पैसा उससे कमा रही हैं
1: कहीं ना कहीं से। तो रिप्रेजेंटेशन
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: तो जरूरी है।
0: जी जी,
2: राशिद साहिबा ने बहुत अच्छी बात कही टेक्नोलॉजी की और उसका रोल जो औरतों की जिंदगी
1: पॉजिटिव आया,
2: पॉजिटिव रोल जो है। तो टेक्नोलॉजी की बात जब हम करते हैं तो वहाँ हम देखेंगे कि आजकल सारी पेमेंट्स एप्स के थ्रू हो रही हैं। और अगर आप जाकर गांव में, छोटे शहरों में अगर आप बात करेंगे लोगों से, तो वहाँ सेविंग्स का मतलब अभी भी घर में कैश होना है या अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में कुछ पैसे रखना है। इससे ज़्यादा सेविंग्स का मतलब कुछ बनता नहीं है, ख़ास तौर से औरतों के लिए। उनके लिए कोविड का टाइम अगर आपको याद हो तो कहाँ कहाँ से पैसे निकल रहे थे, और औरतों के पास से बहुत सारे पैसे, जिसके घर में
0: ज्यादातर औरतों के पास से निकले।
2: बिल्कुल, जिसके घर में ये सुनने जिसके घर में ये सुनने को मिल रहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है, अगले दिन उस घर का आदमी
0: चावल की लाइन में, चावल के डब्बे में से पैसे मिल
2: करने हैं, और कहाँ से मिले तो बीवी के पास से।
1: ये तो इनबिल्ट है औरत के अंदर फाइनेंशियल जो चीज संभालने की, जैसे औरतें जो है घर का जो मामला संभालती है वो इनबिल्ट है ना, तो वो जब इस लेवल पे संभाल सकती है तो उस लेवल पे भी
2: बिल्कुल संभाल सकती। बट पैसे का एक चीज है मेरे ख्याल से, और मैंने एक आज स्कॉलर्स को भी सुना मैं, तो मुझे ये लगा कि ये जो पैसे बचाने का ये तरीका है कि जो कैश है वो रख लिया घर में, ये इनफ नहीं है, ये पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है। इनफैक्ट पैसा अगर है
1: वैल्यू का
2: तो उस पैसे, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही है कि पैसे की वैल्यू वक्त के साथ
1: कम होती चली
2: कम भी होती जाती है या बढ़ती है तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है। और अगर आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर देंगे
1: तो वो
2: वैल्यू आपकी डबल फोल्ड हो सकती है तकरीबन 10-20 सालों में। और ये बहुत ज़रूरी है हर औरत के लिए, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर मुबीन ज़रा साहिबा ने पहले कहा कि एक औरत की फितरत में शामिल है कि जब वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, जब वो अपने आप पे डिपेंड करने लगती है, खुद मुख्तार हो जाती है, तो वो सिर्फ अपना नहीं सोचती है बल्कि कई बार अपना तो बिल्कुल नहीं सोचती है, वो अपने घर वालों का, बाल बच्चों का के बारे में ज़्यादा सोचती है। फितरत है। तो जब सोचें कि उस फितरत का कोई इंसान अगर मल्टीपल फोल्ड्स कमाने लगे, इन्वेस्ट करने लगे, तो वो क्या कर सकता है। जिस तरह वसीम राशिद साहिबा ने कहा कि एक औरत को पढ़ाना एक नस्ल को पढ़ाने के बराबर होता है, उसी तरह एक औरत की फिनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है, एक औरत का माशी तौर पर खुद मुख्तार होना और पैसे से पैसे बनाना, वो एक पूरी नस्ल क्या कई नस्लों को
3: ऐसा लग रहा है पैसा बनाना, पैसा बचाना, पैसा संजोना सारी जिम्मेदारी सिर्फ औरतों की है। यहाँ मैं मर्दों को भी लाना चाहूंगी कि मर्द ने हमेशा से ये सोचा है, और मैं उन मर्दों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ये बात क्या बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूंगी जो जिसकी तरफ डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा ने भी इशारा किया था कि बदलाव मर्दों की सोच में भी आ रहा है, और ये वॉर ऑफ रोजेज नहीं है कि भैया मर्द और औरत एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। हाँ, लेकिन ये बात भी जायज है कि पिछले 400, 500, 600, 1000 जितने साल आप गिन लीजिए, आप तारीख में जितना पीछे जाना चाहें आप चले जाइए, वहां देखिए कि वहां तब से औरतों का जो है विक्टिमाइजेशन हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, रिलीजियस लॉज ऐसे बनाए जा रहे हैं, समाज के लॉज ऐसे बनाए जा रहे हैं, अनसेड अनकोडेड लॉ तो कोडेड होता है ना, कोडिफाइड होता है, अनकोडेड लॉज ऐसे हैं जो औरतों को पीछे रखा जा रहा है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में ही सभा कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट तभी आएगा जब हमारे लिए, हमारे फेवर में, डाउरी के तो इतने बड़े लॉ बने हुए हैं, इट्स इलीगल। आप देखिए, आप किसी भी मजहब की शादी आप ले लीजिए, आप देख लीजिए कि इस वक्त औरतों के विक्टिमाइजेशन का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो डाउरी है।
1: ग्राउंड रियलिटी
3: पढ़े लिखे लोग
1: तो बहुत बुरा हाल
3: तो
1: है।
3: ये सब किताबी बातें हैं, असली बदलाव तभी आएगा जब हमारी सरकारें लॉ बनाएंगी। और मेरी बात कई लोगों को ये बुरी भी लग सकती है कि भाई हर चीज में लॉ, हर चीज में औरतों के एम्पावरमेंट की बात, नहीं भैया बिल्कुल होगी एम्पावरमेंट की बात, जरूरत है।
0: लेकिन कहीं ऐसा होता है कि अगर कोई खातून, कोई लड़की मान लीजिए किसी ऑफिस में जाती है, तो ज्यादातर मतलब अगर वो आपकी लीडर भी है और खूबसूरत भी है और
1: माशाल्लाह सबको, तो

0: प्रिविलेज्ड हो ऐसा है, मतलब मुझे पता नहीं क्यों दो शेर याद आ रहे हैं। अगर आप मुझे जा सकते, मैं शायरा हूँ तो मैं इससे पीछे नहीं जा सकती। अक्सर मैं एक बड़ी हमारी प्यारी शायरा उनके शेर पढ़ती हूँ कि आंखों में न जुल्फों में न रुखसार में देखें, आंखों में न जुल्फों में न रुखसार में देखें, मुझको मेरी दानिश मेरे अफकार में देखें, रखे हैं कदम मैंने भी आसमां की जमीन पर, पीछे हूँ कहाँ आपसे रफ्तार में देखें। तो वो रफ्तार में देखने वाली जो बात है कि वाकई में पीछे कहाँ है हम रफ्तार में देखिए।
1: डॉक्टर वसीम, मुझे ईश्वर नाई साहिबा की भी वो नज्म याद आ रही है, हम गुनाहगार
2: औरतें।
1: बहुत ऐसे मतलब
2: बहुत इल्जाम आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें। जैसे अगर आमतौर पे देखें ग्राउंड रियलिटी में कुछ लोगों से, जैसे आदमियों से, हम कलाम होती हूँ और जब मैं उनसे बात करती हूँ तो उनकी वही सोच है बहुत ज्यादा। ऐसा कभी कभी तो ऐसे डायरेक्ट बोल देते हैं कि औरत को तो रहनुमाई नहीं करनी चाहिए, औरत रहनुमा नहीं हो सकती। एंड दिस इज वेरी रियल थिंग, मैंने ये चीज लोगों के मुंह से सुनी है। मैं बैठ कर उनसे बहस करती हूँ बाज दफा, लेकिन मैंने सोचा वही एग्जैक्टली मैं बहस करती हूँ, फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रूट है ना यही खराब है। तो हम लोग जब किसी चीज की रूट चेंज करनी होती है ना, उस पर काम करना होता है उस रूट को चेंज करने के लिए, मैं एक इंसान से लड़कर या एक इंसान से बहस करके वो पूरा सिस्टम नहीं चेंज कर सकती। तो ये हमारे मर्दों की सोच है, और ये मर्दों की जो सोच है ना वो कहाँ से आ रही है।
0: लेकिन मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न दे। रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न दे।
1: अगर हम भारत के पस मंजर में देखें, हम अपने मुल्क के पस मंजर में देखें, तो मैं फिर आपको, क्योंकि मैं तारीख ना हूं तो मैं आपको तारीख में ले जाऊंगी। जब रजिया सुल्तान बनी थी, सुल्तान बनी थी, तब भी ये सवाल उठाए गए थे कि वो औरत हैं, और वो जबकि वो मिलिटरली ट्रेंड थी, मिलिट्री में ट्रेंड थी,
2: और शी वाज वेरी इंटेलिजेंट।
1: और उस वक्त मैं उस रजिया सुल्तान से ज्यादा उनके फादर, जिन्होंने उनको अपने बच्चों को, बेटे को ना चूज करके उन्होंने बेटी को सुल्तान बनाया, मैं उस चीज को बहुत अप्रिशिएट करूंगी। और उसी चीज से मैं फिर आज के जमाने में आऊंगी कि ये जो आप बात कर रही थी कि लीडरशिप में इशू है, तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि इस वक्त भारत में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा सीईओज औरतें हैं।
2: हाँ,
1: आप अगर पायलट्स देख लें, हवाई जहाज में आपकी जान तो पायलट के ऊपर ही है, पायलट पायलट पे निर्भर है। सबसे ज्यादा विमेन पायलट जो हैं हिंदुस्तान में, लेकिन वहीं एक ऐसा किस्सा भी होता है कि कोई आदमी को पता चलता है पैसेंजर को कि विमेन प्लेन उड़ा रही है, तो वो उतर जाता है कि नहीं। तो ये सोच का प्रॉब्लम है। और एक और चीज सभा, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो मुल्क है, अगर आप उसको डाटा वाइज आप कंपेयर करना चाहें, तो हमारे मुल्क ने पंचायती राज में वुमेन लीडरशिप इज डूइंग वेरी वेल, जिसमें राजस्थान का स्टेट है, जिसमें बिहार स्टेट है, और आप अगर नॉर्थ ईस्ट थोड़ा चले जाएं तो नॉर्थ ईस्ट में भी जो रूरल वुमेन है वहां आप जाइए देखिए, वहां ऑल वुमेन मार्केट है, ज्यादातर काम जो है वो औरतें करती हैं। मैं अभी कश्मीर कई बार गई हूँ, अभी रिसेंटली मैं गई थी कश्मीर एक लेक्चर देने, तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ मजहब रिलीजन रिप्रेजेंटेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो उनका एक रहने का तरीका है। लेकिन आप वहाँ इतनी काबिल औरतों को मैंने देखा जो जो स्किल डेवलपमेंट में काम कर रही हैं, जो छोटे छोटे कारोबार कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं मैं फिर उसी चीज़ पे आऊँगी, अगर आप डाटाबेस देखें हमारे मुल्क का, तो जो हमारी सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो वुमेन सेंट्रिक हैं, उसको अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रही हैं और उसका रिजल्ट आ रहा है।
2: महविश साहिबा, के हम लोग इसमें कैसे बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं एज एन एजुकेटेड वुमेन, आप इसका क्या चाहिए?
0: मेरे ख्याल में कुछ पॉलिसीज भी आप जरूर बताएं कि कुछ किस तरह की पॉलिसीज हैं।
3: बिल्कुल सबसे पहले तो एज एजुकेटेड वुमेन हम लोगों को अपने अपने इलाकों में जाकर और औरतों से बात करनी चाहिए, इनफैक्ट मर्दों से भी बात करनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी ना सिर्फ औरतों से बनी है ना मर्दों से बनी है। तो वहाँ जब तक हम लिटरेसी को पहुँचाएंगे नहीं, तब तक हमारे माशरे में ना ही कोई सोशल चेंज आ सकता है बहुत बड़ा, और ना ही फिनेंशियल चेंज, तो बाद की बात है। ठीक है, तो सोसाइटी जब तक बदलेगी नहीं, फिनेंशियल सिस्टम सुधरेगा नहीं। हालांकि हमारी सरकार ने इतनी सारी स्कीम्स लागू की हुई हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है, अगर हम लिस्ट बनाएं पूरी तो इट विल बी वेरी एग्जॉस्टिव। लेकिन मैं बस दो चार नाम लेना चाहूँगी जो कि औरतों के लिए ख़ास तौर से बनाई गई हैं स्कीम्स, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
2: जी,
3: जो कि गांव की औरतों के लिए खास तौर से बनाई गई स्कीम है, जिसमें छोटे बिजनेस के लिए गांव की औरत को 10 लाख तक के अमाउंट दी जाती है, जिससे वो अपना बिजनेस सेट कर सकती है। और डेफिनेटली जैसे बिजनेस बढ़ेगा, जब वो बिजनेस सेट कर लेगी और बढ़ेगा, तो
0: और भी माशी
3: खुद मुख्तारी की तो बात फिर पीछे रह जाती है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, लाइकवाइज और भी सारी योजनाएं हैं, मैं बस कुछ के नाम ले दूंगी, बाकी उन औरतों पे छोड़ती हूँ जिनको खुद मुख्तार होना है माशी तौर पर, वो इसके बारे में पता करें। और मोबाइल हर किसी के पास है, इंटरनेट हर किसी के पास है, एक गूगल पे आप टाइप कीजिएगा और बोल दीजिएगा तो आपके पास इनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे सही से। तो लखपति दीदी योजना है, ये भी गांव की औरतों के लिए है, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर उसमें माशी खुद मुख्तारी का काम करें। ठीक है, इसमें 1 लाख एनुअली
0: एक कन्या योजना भी है ना।
3: बताना चाहूंगी कि एक ऐसी स्कीम भी है सरकार की, हमारी जो सरकार है उसने बहुत अच्छी स्कीम लागू की हुई है, LIC बीमा सखी योजना, जिसमें कि औरतों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो LIC एजेंट्स बन सकें और इसके लिए उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है। तो वो खुद मुख्तारी की तरफ एक तरह से पहला कदम बढ़ाने के लिए सरकार उनको तैयार कर रही है।
0: बहुत अच्छी
3: और
0: बात
3: ये गांव-गांव तक ये पॉलिसी पहुंची हुई है, और जब वो ट्रेनर्स तैयार हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है वो अपनी नॉलेज खुद तक तो सिर्फ रखेंगी नहीं, आगे भी बढ़ाएंगी। इसलिए इस तरह की पॉलिसीज बेहतरीन पॉलिसीज मानती हूँ मैं इनको, और ये हमारी औरतों को माशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेप स्ट्रॉन्ग कदम कहा जा सकता है। इसी तरह से बचपन से जब एक लड़की पैदा होती है तब से उसको माशी खुद मुख्तारी देना ये सोसाइटी का फ़र्ज़ है, मेरे ख्याल से ये हर सोसाइटी का फ़र्ज़ है, और हमारे भारत में तो ये एक एक्स्ट्रा बहुत इम्पॉर्टेंट फ़र्ज है, और सरकार इसको बखूबी निभा रही है। उसने कई सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं जिसमें बेटियों को पढ़ाई से लेकर के उनकी शादी तक के लिए, इनफैक्ट उसके बाद भी काम करने के लिए माशी तौर पर मदद दी जा रही है सरकार की तरफ से, जिसमें कि एक है सुकन्या समृद्धि योजना, घर की बेटियों के लिए उनकी पढ़ाई और उनकी शादी तक के लिए पैसे दिए जाते हैं, उनके वालदेन को दिए जाते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल, और इससे उन घरों को इतनी मदद मिल जाती है जहाँ माशी तौर पर हालात कमज़ोर हैं, बहुत मदद मिल जाती है, और वो अपनी बच्चियों को पढ़ने लिखने के लिए भेज पाते हैं। और इसी तरह एक लाडली योजना है, ये भी बच्चियों के लिए है, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, और ट्रेनिंग के लिए भी लोगों को भेजा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग में। ये सबसे पहले तो स्कूल्स में लागू कर दिया गया है फिनांस की एजुकेशन, और क्लास 6 से क्लास 12 तक ये एजुकेशन दी जा रही है, और साथ साथ NGOs भी इस पे काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर मुबीन जहरा साहिबा ने बोला, और प्राइवेट कंपनीज भी कई सारी इस पे काम कर रही हैं, जैसे ज़िरोदा है, वो NGOs के साथ मिलकर गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं ये लोग, ताकि औरतों को फिनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड करा सके।
2: तो ये कोई फ़ायदा नहीं है कि औरत है तो इस मकाम तक पहुंच गई है, इसी तरह से मर्दों के लिए भी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर भी हक है, और औरतों के ऊपर भी। तो मैं यही कहूँगी, फाइनल मैसेज यही है कि अगर हम लोगों को इस दुनिया को बिल्कुल ठीक ठाक लेके चलना है तो एक सिरा ये नहीं कि एक चीज़ पे हम काम करें, हमें आदमियों के लिए भी और औरतों के लिए भी बराबर हक रखना चाहिए, और इक्वालिटी का मतलब यही होता है कि दोनों तरफ जो है वो चीज़ इक्वल रहे। तो जहरा साहिबा,
1: मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं वसीम राशिद साहिबा और महवर साहिबा और सबा आपके साथ बैठ के हमने इस बात पर बात की, और ऑल इंडिया रेडियो को का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने अच्छे मौजू पे ये डिस्कशन रखा। हैविंग सेड दैट, हमेशा की तरह मैं वही कहूँगी कि औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना पैसा रखें, वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदें।
0: बिल्कुल, मैं एक बस शेर के जरिए आपका आखिरी ये कहूँगी, चराग जुल्मते शब में जला के चलते हैं, चराग जुल्मते शब में जला के चलते हैं, हम अपने रास्ते खुद ही बना के चलते हैं, और ये रास्ते हमें खुद ही बनाने हैं, और खुद ही हमें आगे बढ़कर अपने लिए अपनी राहें तलाश करनी।
2: बहुत शुक्रिया, बात बहुत अच्छा शेर आपने पढ़ा, उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस आज के डिस्कशन से जरूर कुछ सीखेगी।
4: सामईन कराम, अभी आप समाप्त कर

रहे थे बज़्म ख्वातीन के तहत ये खूबसूरत सा मुज़ाकरा। मौजू था ख्वातीन की क़यादत और माशी खिदमात, नए भारत की पहचान। शुराका थीं डॉक्टर सैयद मुबीन ज़हरा, डॉक्टर वसीम राशिद, मोहतरमा कुलसुम महविश और नाज़िम थीं मोहतरमा सबा पाशा। और इस प्रोग्राम को तरतीब दिया था इंतज़ार सैफ़ी ने। तो सामईन, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और प्रोग्रामों के साथ, कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक के लिए आप अपने मेज़बान शाहनवाज़ हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट UG 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
2: NTA ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में NTA द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। श्री प्रधान ने ये बात भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर की। उन्होंने कहा कि ये संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: मैं श्री हेमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण कर।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने इंडिया पोस्ट की अगली पीढ़ी के डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी APT के दूसरे चरण की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी किस प्रकार शाखा कार्यालयों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर रही है। इससे ये कार्यालय स्थानीय मांग का विश्लेषण करने, प्रदर्शन की निगरानी करने और जमीनी स्तर पर त्वरित डेटा आधारित निर्णय लेने में सक्षम हो रहे हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि सरकार का डिजिटल प्रयास एक मजबूत सुरक्षित संरचना सुनिश्चित कर रहा है, साइबर सुरक्षा को मजबूत कर रहा है और विश्वसनीय, लचीली तथा भविष्य के लिए तैयार डिजिटल सार्वजनिक सेवा वितरण को सक्षम बना रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस

0: नाइट एंगल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री मोदी का स्वीडन और चौथे चरण में नॉर्वे जाने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The National Testing Agency, NTA, has decided to cancel the NEET UG 2026 examination conducted on the 3rd of this month for admission to undergraduate medical education. In a social media post, NTA informed that this decision has been taken in the interest of students and in recognition of the trust on which the national examination system rests. The agency also stated that the government has decided to refer the matter to the Central Bureau of Investigation for a comprehensive inquiry into the allegations of paper leak. The agency said it will extend full cooperation to the Bureau and provide all materials, records and assistance required for the investigation. It said the decision was taken following the inputs examined by the NTA in coordination with central agencies and investigative findings shared by law enforcement agencies. The NTA said the examination will be reconducted on dates to be notified separately. Registration details, candidature information and examination centres selected for the May 2026 cycle will remain unchanged and be carried forward to the reconducted examination. The agency informed that no fresh registration will be required and no additional examination fee will be levied. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma has taken oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered him the oath of office and secrecy at a ceremony held at the Veterinary College ground in Kanapara, Guwahati.
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: Along with Dr. Sarma, 4 MLAs was also sworn in as cabinet ministers. They include Rameshwar Teli and Ajanta Niyog from the BJP, Atul Bora from Aham Gan Parishad, and Charan Boro from Bodoland People's Front. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers from NDA-ruled states attended the ceremony. With this, Dr. Sharma has become the first non-Congress leader in Assam to serve consecutive terms as Chief Minister. The National Democratic Alliance, or NDA, returned to power for a third consecutive term in the state, securing 102 seats in the 126-member Assam Legislative Assembly. Chief Justice of India Suryakant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice Arvind Kumar to prepare a blueprint for the modernization of courts across the country and secure a government allocation of 40 to 50,000 crore rupees for the purpose. The Judicial Infrastructure Advisory Committee will address infrastructural deficiencies in courts through substantial financial support from the government. Apart from Justice Kumar, the committee will comprise Justices Debangshu Basak, Ashwini Kumar Mishra, Somashekhar Sudarshan of the High Courts of Calcutta, Punjab and Haryana and Bombay. The Director General of the Central Public Works Department and the Secretary General of the Supreme Court will also be members of the panel. The committee has been tasked with submitting its detailed findings and funding requirements to Sanjeev Sanyal, a member of the Prime Minister's Economic Advisory Council, by 31st of August this year. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said that through the National Education Policy 2020, the government is continuously promoting research and innovation based on the mother tongue, Indian knowledge traditions and AI-driven education. He added that due to this reason, the Global South looks towards India with trust, solutions and expectations of leadership. The minister said this while addressing the 58th Foundation Day of Indian Council of Social Science Research. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today met Minister of Foreign Affairs of the Republic of Chile, Francisco Perez Mackenna, along with members of the Chilean delegation. In a social media post, he said that during the meeting, both the leaders reviewed the progress of the Indian-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement negotiations. Benchmark domestic equity indices slumped for the fourth consecutive session today amid weak global cues. The Sensex plunged 1,456 points or 1.92% to close at 74,559. The Nifty shed 436 points to settle at 23,380. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय हुआ है गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाओं का। थाना बिलासपुर, कमिश्नरेट हरियाणा, खोए हुए व्यक्ति का नाम नरेंद्र, उम्र 36 वर्ष पुरुष, कद 6 फुट 2 इंच, रंग सांवला, अंतिम बार 23 फरवरी 2025 को गांव ठाणी क्रुम्भावास जिला गुरुग्राम में देखे गए। घर से अपनी मर्जी से चले गए। जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त होगी उनके लिए पुरस्कार राशि 1,000 घोषित की गई है। थाना बिलासपुर, गुरुग्राम, कमिश्नरेट हरियाणा। अगले खोए हुए व्यक्ति की जानकारी प्राप्त हुई थाना बिलासपुर, गुरुग्राम, कमिश्नरेट हरियाणा। खोए हुए व्यक्ति का नाम सुनीता, पुत्री रविंद्र देव, आयु 20 वर्ष महिला, कद 5 फुट 5 इंच, शरीर की बनावट पतला, चेहरे का रंग गोरा। अपनी मर्जी से चली गई। अंतिम बार उन्हें 16 अक्टूबर 2025 को देखा गया था। थाना बिलासपुर, कमिश्नरेट हरियाणा। थाना भंगेल, फेज 2, कमिश्नरेट नोएडा। खोए हुए व्यक्ति का नाम शैली कुशवाहा। अंतिम बार बेबी पब्लिक स्कूल के पास देखी गई। आयु 19 वर्ष महिला। शरीर की बनावट औसत। कद 5 फुट 3 इंच। बिना बताए घर से चली गई। जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 8595902620। थाना फेज 2, कमिश्नरेट नोएडा।

0: நந்தநகரி, கமிஷனரேட், தில்லி. अगली सूचना प्राप्त हुई है थाना सूरजपुर, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर. खोए हुए व्यक्ति का नाम अंबुज अग्निहोत्री, पुत्र अशोक कुमार अग्निहोत्री. अंतिम बार वो 27 नवंबर 2025 को दिखाई दिए थे. उम्र 27 वर्ष पुरुष, कद 5 फुट 5 इंच. जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो, कृपया संपर्क करें थाना सूरजपुर, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर. अगली सूचना प्राप्त हुई है थाना फेज 2, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर. खोए हुए व्यक्ति का नाम खिल्लो देवी, पत्नी अतर सिंह, आयु 58 वर्ष महिला, रंग गेहुआ, कद 5 फुट. घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं और वापस नहीं लौटी. जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो, कृपया संपर्क करें थाना फेज 2, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर. अगली सूचना प्राप्त हुई है थाना छजलैट मुरादाबाद. खोए हुए व्यक्ति का नाम अपहर्ता अमरीन, पुत्री श्री हारून निवासी, ग्राम भिकनपुर, थाना छजलैट जनपद यानी कि कमिश्नरेट मुरादाबाद. उम्र 18 वर्ष महिला, लंबाई 5 फुट 2 इंच, रंग गोरा, काला जम्फर और काला दुपट्टा पहने हुए थी. जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो, कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 8057 05 0011. एक और नंबर है 6397 68 92. नंबर दोबारा बता देते हैं 6397 68 90 92. और अंतिम जो सूचना प्राप्त हुई वो है थाना फेज 2, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर. खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम विष्णु कुमार, पुत्र श्री महेश, आयु 24 वर्ष पुरुष, 5 फुट 2 इंच इनका कद है. घर से कंपनी में काम करने जाना है बोलकर गए और वापस नहीं आए. जिस किसी को भी इनकी जानकारी प्राप्त हो, कृपया संपर्क करें थाना फेज 2, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर. ये थी अब तक के गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाओं का. ये ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर.
1: मैं हूं आपका जलदाता ग्रैंड वाटर. कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती. हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है. इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूँ मैं. क्या लिखूँ अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदें ही बची हैं. अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए.

0: The maximum age limit for both posts is 45 years. Interested candidates can check the detailed eligibility on the website. And the website is www.ncrtc.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इन सभी पदों के लिए एक एक पद की रिक्ति उपलब्ध है। पद हैं रीडर वाक रोग विशेषज्ञ समूह ए, पुनर्वास अधिकारी समूह ए, व्याख्याता शिक्षा समूह ए, व्याख्याता श्रवण वाक रोग विज्ञान समूह ए, व्यावसायिक परामर्शदाता समूह बी और समाज कल्याण अधिकारी समूह बी, लेखाकार समूह बी, विस्तार सेवा सहायक समूह बी, विस्तार सेवा सहायक समाज कार्य समूह बी, कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रुप बी, तकनीकी सहायक ऑडियो विजुअल समूह बी, मनोवैज्ञानिक समूह बी, कार्यालय अधीक्षक सह लेखाकार समूह बी और डेटा एंट्री ऑपरेटर समूह बी। इनमें व्यावसायिक परामर्शदाता समूह बी और समाज कल्याण अधिकारी समूह बी के दो दो पद उपलब्ध हैं। अहमदाबाद और छतरपुर स्थित सीआरसी में जिन पदों के लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं वे हैं निदेशक सलाहकार एक पद, सहायक प्रोफेसर दो पद, विशेष शिक्षा में व्याख्याता दो पद। इन पदों के लिए पात्रता संबंधी विवरण जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य आवश्यकताएं इस वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। वेबसाइट का पता है www.ayjinishd.nic.in। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उपनिदेशक कृषि एक पद, उपनिदेशक सिविल मैकेनिकल एक पद, प्रधान निजी सचिव दो पद, लेखाधिकारी एक पद, उच्च श्रेणी लिपिक एक पद तथा अवर श्रेणी लिपिक एक पद। पात्रता शर्तों आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए जल शक्ति मंत्रालय की वेबसाइट jalshakti.dowr.gov.in तथा केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर भी ये तमाम जानकारी विस्तार से उपलब्ध है जिसका पता है www.cwc.gov.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर में इन पदों की कुल 83 उपलब्धियां मौजूद हैं और इनके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। रिक्तियां विभाग के अनुसार तय की जाएंगी। विभागों के नाम हैं एनेस्थीसिया, बायोकेमिस्ट्री, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, डर्मेटोलॉजी, ईएनटी, फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूरोनेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, फिजियोलॉजी, साइकेट्री, पल्मोनरी मेडिसिन, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और ब्लड बैंक, ट्रॉमा एवं सर्जरी मेडिसिन तथा यूरोलॉजी। आवेदन पत्र, विभागवार सीटों की संख्या, आरक्षण नियमों और शर्तों आदि के विस्तृत विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.aimsgorakhpur.edu.in। इन भर्तियों के बारे में कोई भी नई सूचना इसी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। आप एक बार फिर वेबसाइट का पता नोट कर सकते हैं www.aimsgorakhpur.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर

0: मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: अभी आप रोजगार से संबंधित कार्यक्रम एम्प्लॉयमेंट न्यूज सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय हुआ है हमारे अगले कार्यक्रम परिक्रमा।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।

0: नमस्कार। कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देंगे आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल की देंगे आपको जानकारी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। और आज डेटलाइन सेगमेंट में बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण पेशे की जो मानवीय संवेदना के बहुत ही क्रूसियल जिसे कहें पहलू से जुड़ा हुआ है। आज इंटरनेशनल नर्सेज डे है, इस पर हम बात करेंगे। और आज हम जिन्हें याद कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है कवियों के कवि, कवि शमशेर सिंह बहादुर को। तो शुरुआत में उनकी जो कविता है, जो सत्य को अभिव्यक्त होने के लिए किसी बाहरी सहारे या गवाह की आवश्यकता नहीं होती है ऐसा कहती है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो सत्य है वो स्वयं प्रकट होता है। वो बोलते हैं अपनी कविता बात बोलेगी में, हम नहीं भेद खोलेगी बात ही, सत्य का मुख झूठ ही आंखें क्या देखें, सत्य का रुख समय का रुख है, अभय जनता को सत्य ही सुख है, सत्य ही सुख है। उनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे आज के इस अंक में। मैं हूँ जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: Namaskar and a very good afternoon, Jagriti. Jagriti, you must have heard, we all have heard about the honest appeal by our Prime Minister since last 2 days. Yes, our Prime Minister has earnestly appealed for national discipline and nation-first initiatives, calling on Indians to adopt responsible, self-reliant habits to strengthen our country against global economic disruptions. The 7-point appeal calls for reducing fuel consumption, increasing use of public transport, and curbing non-essential gold purchases and foreign travel. The appeal highlights that a significant portion of India's foreign exchange is spent on imports like crude oil, gold, edible oil, and fertilizers. And these restraints will foster a culture of collective responsibility rather than panic. So we shouldn't be panicking on these appeals. And of course, it's urging, he has been urging all the individuals to contribute to national resilience, similar to the efforts seen during the pandemic. Well, we must all take it seriously and try to follow it as economic patriotism rather than anything else. And shall we begin with our headlines now, Jagriti?
0: Bilkul, shuruaat karte hain. परीक्षा पत्र लीक के आरोपों के कारण मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश।
1: हेमंत बिस्वा सरमा टेक्स ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ असम फॉर सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म।
0: सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की।
1: President Draupadi Murmu confers National Florence Nightingale Awards on 15th Nursing Professionals.
0: IPL cricket mein aaj sham Gujarat Titans ka muqabla Sunrisers Hyderabad se.
1: And as always, Jagriti, it's now time for a segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about, as you mentioned in the beginning, International Nurses Day.
0: Ji.
1: Today we are celebrating one of the most compassionate and dedicated professions in the world, that is nursing. Today, the 12th of May, world observes International Nurses Day, commemorating the birth anniversary of Florence Nightingale, the pioneer of modern nursing, whose service and vision changed healthcare forever. And this year's theme is Our Nurses, Our Future, Empowered Nurses Save Lives. The theme highlights the urgent need to support nurses with better safety, respect, training and resources because empowered nurses create healthier societies.
0: दोस्तों, हर अस्पताल में आधुनिक मशीनें होती हैं, हर डॉक्टर के पास मेडिकल का ज्ञान होता है, लेकिन अस्पतालों में जो चीज़ सचमुच मरीजों को ठीक करती है वो होती है मानवीय देखभाल, और ये देखभाल अक्सर करती हैं नर्सेज। मुश्किल पलों में मरीज का हाथ थामने से लेकर लंबी रातों तक बिना थके काम करने तक नर्सें दुनिया भर की स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों की धड़कन हैं। वो कमजोरों को दिलासा देती हैं, परिवारों का सहारा बनती हैं, डॉक्टर्स की मदद करती हैं, और इमरजेंसी में तुरंत कार्रवाई करती हैं और संकट के समय मजबूती से खड़ी रहती हैं। आज के कार्यक्रम का ये हिस्सा उन खामोश नायकों को समर्पित है जिन्होंने दूसरों की देखभाल के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है।
1: International Nurses Day is celebrated on the birth anniversary of Florence Nightingale, lovingly remembered as the lady with the lamp. Born in 1820, Florence Nightingale transformed nursing into a respected profession. During the Crimean War, she cared for wounded soldiers under extremely difficult conditions. At night, she would walk through hospital corridors carrying a lamp, checking on injured soldiers and comforting them.
0: फ्लोरेंस नाइटिंगेल के समर्पण ने दुनिया भर में आधुनिक नर्सिंग आंदोलन को प्रेरित किया। उनका मानना था कि करुणा, स्वच्छता, अनुशासन और मरीजों की देखभाल से उनकी जानें बचाई जा सकती हैं। उनके विचार आज भी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को दिशा दिखाते हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि केवल एक व्यक्ति की दयालुता और दृढ़ संकल्प भी दुनिया को बदल सकता है।
1: Yes, Jagriti, just imagine a hospital without nurses. Who would monitor patients day and night? Who would provide emotional support to frightened families? Who would administer medicines, assist in surgeries, and respond instantly during emergencies? These are the nurses who ensure that healthcare functions smoothly every single minute, isn't it?
0: बिल्कुल, और ये अनुभव हम सब ने, आपने, मैंने या जो भी श्रोता सुन रहे हैं उन्होंने ज़रूर किया होगा कि जब हम अस्पताल में होते हैं इंसान वैसे ही टूटा हुआ होता है तो तमाम जो मेडिकल प्रोसेस होती हैं उनमें जो समय जाता है, जो तकलीफ होती है उनमें वाकई दिलासा देती हैं। जो नर्सेज होती हैं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको तो देखती हैं, उसके अलावा कंसोल भी करती हैं, और ये बड़ी चीज़ हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नर्सों की सराहना करते हुए उन्हें देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की रीढ़ और आशा का स्तंभ बताया। और सचमुच उनका योगदान अस्पतालों की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है।
1: And President Draupadi Murmu also today conferred the National Florence Nightingale Awards 2026 to 15 nursing professionals at a function which was held in Rashtrapati Bhavan. The award has been given for their outstanding contribution in the field of nursing. And these prestigious awards are presented to registered nurses, midwives, auxiliary nurse midwives and lady health visitors serving across central and state governments, union territories and voluntary organizations. Each award includes a certificate of merit, a cash prize of 1 lakh rupees, and a medal symbolizing the nation's gratitude for the invaluable service rendered by these health warriors.
0: जी, और अपने संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ये अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के अमूल्य योगदान के प्रति एक उचित श्रद्धांजलि है जो करुणा और अटूट समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि नर्सिंग कर्मी सेवा के उच्चतम मानकों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए और अक्सर सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति ने सभी पुरस्कार विजेताओं की कर्तव्य के प्रति उनकी प्रेरणादायक निष्ठा और रोगियों की देखभाल के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए उनके अथक प्रयासों की सराहना भी की।
1: Rightly so, Jagriti. In regard to their profession, now let us take a moment to see what all services nurses extend. These are rural health centers. They also serve us in urban hospitals, in schools and colleges, ambulance services, military healthcare units, in community outreach programs, in old age homes, and also in disaster relief camps. They work in every corner of society where care is needed.
0: बिल्कुल, और कभी कभी जो ज़रूरत होती है एक इंसान को वो दवाओं से पूरी नहीं होती है, दवाओं से वो उतनी जल्दी ठीक नहीं होता है जितना कि किसी का जो व्यवहार उसके प्रति

0: है उससे वो ठीक हो जाता है। और जो नर्सेज हैं वो अक्सर यही करती हैं, वो परेशान मरीजों के लिए हिम्मत का सहारा बनती हैं, चिंतित परिवारों की बात सुनने वाली बनती हैं और ठीक होने के सफ़र में एक मार्गदर्शक बनती हैं, और कभी कभी अकेले जो पल हैं उनमें एक दोस्त भी बन जाती हैं।
1: And many patients remember the smile of a nurse long after they recover. A reassuring voice saying, "You'll be all right," can give strength to someone battling illness. Nursing is not only a profession, it is a commitment to humanity. Friends, the COVID-19 pandemic showed the world the extraordinary courage of healthcare workers. While cities fell silent and people stayed indoors, nurses stepped forward fearlessly. They worked long hours in protective equipment, stayed away from families and risked their own health to save others. It's not an easy job.
0: बिल्कुल, और कई नर्सों ने उन मरीजों को सांत्वना दी है जो अपने प्रियजनों से मिल नहीं पा रहे थे। वो हजारों लोगों के लिए देखभाल करने वाले भावनात्मक संबल और जीवन रेखा बन गईं। उनके समर्पण ने दुनिया को ये याद दिलाया कि नायक हमेशा कैप नहीं पहनते, कभी कभी वो मास्क, दस्ताने और यूनिफॉर्म भी पहनते हैं।
1: And if we talk about this year's theme, it focuses on empowerment. But what does empowering nurses really mean? It means providing safe working conditions, ensuring fair salaries to them, offering mental health support, providing advanced medical training, respecting their expertise, and of course, reducing workplace stress and burnout as well.
0: बिल्कुल, और जब नर्सों को सहयोग मिलता है तो मरीजों को बेहतर देखभाल मिलती है, समुदाय और भी स्वस्थ बनते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रणालियां और कहीं मजबूत होती हैं। कई देशों में नर्सें इन विषयों पर जागरूकता अभियान का नेतृत्व भी करती हैं, जिनमें शामिल हैं टीकाकरण, पोषण, मातृ देखभाल, बाल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, रोगों की रोकथाम। और उनकी भूमिका न केवल उपचार में बल्कि स्वस्थ समाज के निर्माण में भी बेहद महत्वपूर्ण है।
1: And we can say every nurse carries countless stories in their hearts. Stories of newborn babies taking their first breath, stories of patients recovering after difficult surgeries, stories of elderly people receiving comfort and dignity, stories of hope returning where fear once existed. Many nurses work night shifts while their own families wait at home. Many skip meals during emergencies. Many continue smiling despite exhaustion because they know someone depends on them. Their service often goes unnoticed, but its impact is immeasurable.
0: बिल्कुल, और आज हमारे साथ जुड़ने वाले युवा श्रोताओं के लिए खासकर ये बताएं कि नर्सिंग दुनिया के सबसे नेक पेशों में से एक है। ये विज्ञान को करुणा के साथ, ज्ञान को सेवा के साथ और कौशल को मानवता के साथ जोड़ता है। एक नर्स केवल बीमारी का इलाज ही नहीं करती बल्कि वो लोगों में उम्मीद भी जगाती है। यदि आप लोगों के जीवन में बदलाव लाने का सपना देखते हैं तो नर्सिंग आपको पूरे मान सम्मान और गर्व के साथ समाज की सेवा करने का अवसर प्रदान करता है।
1: So today on World Nurses Day, let us express our gratitude to every nurse working in crowded hospitals, serving in remote villages, caring for patients in emergencies, supporting mothers and children, helping the elderly and saving lives every day.
0: बिल्कुल, आपकी करुणा शक्ति प्रदान करती है, आपका समर्पण विश्वास जगाता है, आपकी सेवा मानवता की रक्षा करती है, आप स्वास्थ्य के रक्षक और आशा के सच्चे स्तंभ हैं। जब हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मना रहे हैं तो आइए ये याद रखें कि स्वास्थ्य सेवा तब सबसे अधिक सशक्त होती है जब नर्सों का सम्मान किया जाता है, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है और उन्हें सशक्त बनाया जाता है।
1: So let us value the hands that heal, the hearts that care, and the voices that comfort. Because truly, our nurses are our future. Empowered nurses save lives. To all nurses listening today, we thank you from the bottom of our hearts for your selfless service and unwavering dedication. With this heartfelt tribute, we conclude our special program on International Nurses Day. Stay healthy, stay compassionate, and continue appreciating the heroes among us.
0: और अब चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं कि कुछ क्या खास है उनके पास।
1: एंड लेट्स गो टू कोड़ीकोड़। आकाशवाणी सेलिब्रेटिंग इट्स 90th एनिवर्सरी ऑन द 8th ऑफ जून दिस ईयर। in this connection with their nationwide celebrations, Akashvani Kozhikode, which is completing 75 glorious years of service on 14th of May 2026, has organized a mini literary festival titled Legacy 2026.
2: The three-day literary fest began at the station studio with the participation of eminent personalities from the fields of literature, poetry, cinema and music. Well-known writer, poet and orator Professor Kalpetta Narayanan inaugurated the festival. Speaking on the occasion, he said that the bliss of human life lies in the age of audibility and listening. He described radio as the greatest medium of the human voice and communication. Professor Kalpetta Narayanan fondly remembered the immense contributions made by legendary literary personalities who were associated with Akashvani Kozhikode. He recalled that Jnanpith award-winning poet Akitham Achyuthan Nambudiri had served as a broadcaster at the station and enriched listeners through his powerful literature. He also remembered the contributions of renowned poet N.N. Kakkad, celebrated writer and drama producer Thikodian, noted novelist Urub and famous drama artist Khan Kavil. Their voices and creative works, he said, had left a lasting influence on generations of listeners across Kerala. The inaugural session was attended by writers, artists, radio professionals and listeners. Speakers highlighted the unique role played by Akashvani in promoting literature, culture and social awareness through decades of meaningful broadcasting. They also noted that radio continues to remain close to the hearts of people despite the growth of modern digital media platforms. The three-day festival will conclude on Thursday. Special sessions on literature and cinema, poetry and music are being organized tomorrow with the participation of eminent personalities from the respective. Literary Fest is being viewed as a tribute to their rich heritage of Akashvani Kozhikode and its enduring contribution to Malayalam language, literature and culture over the past 75 years. Suresh VK for Parikrama, Akashvani News, Kozhikode.
0: Aur ab chalte hain Mumbai ki aur. जैसा कि आज पूरा विश्व प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है और जब हम प्रदूषण की बात करते हैं और उससे होने वाले परिणामों की बात करते हैं तो अक्सर ये जो चर्चाएं हैं वो जलवायु प्रदूषण तक ही सीमित रहती हैं या फिर वायु प्रदूषण की हम बात करते हैं, लेकिन पुराने फटे हुए कपड़े जिन्हें हम बड़ी ही आसानी से फेंक देते हैं वे भी ज़मीन के प्रदूषण का बड़ा कारण बनते हैं और अगर ये कपड़े जलाए जाएं तो वायु प्रदूषण में भी बढ़ोतरी होती है। इसी समस्या का छोटा सा समाधान ढूंढा है नवी मुंबई के वस्त्र पुनर्प्रक्रिया सुविधा केंद्र यानी TRF ने। आइए जानते हैं कि किस तरह से ये सेंटर काम कर रहा है हमारी संवाददाता की इस रिपोर्ट में।
3: नवी मुंबई नगर निकाय के माध्यम से नवी मुंबई के बेलापुर में चल रहा वस्त्र पुनर्प्रक्रिया सुविधा केंद्र देश में इस तरह की पहली पहल है। पुराने कपड़ों की पुनर्प्रक्रिया से स्थानीय लोगों को रोजगार देने की इस पूरी चक्राकार अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण इस केंद्र ने प्रस्तुत किया है। कपड़ों के एकत्रीकरण से लेकर उनसे अपसाइकल्ड वस्तुएं बनाने की पूरी प्रक्रिया हमें बता रही है नवी मुंबई नगर निकाय के उद्यान विभाग की उपायुक्त स्मिता काळे।
4: इसके लिए दो सिस्टम्स अवेलेबल है। फर्स्ट स्टेज में 250 गृह निर्माण संस्थाओं का चयन किया गया जहां पे एक बिन रखा गया जो सिर्फ पोस्ट कंज्यूमर टेक्सटाइल वेस्ट को कलेक्ट करता है और दूसरा है RRR सेंटर्स। यहां पे जिसको भी जो कपड़ा नहीं चाहिए वो वहां पे रख सकते हैं। तो ये दोनों सोर्स से महापालिका का जो विशेष कलेक्शन व्हीकल ये सब पोस्ट कंज्यूमर टेक्सटाइल वेस्ट को उठाता है और फिर TRF सेंटर में जमा कर देता है। वहां पे उसको तोला जाता है और उस कपड़े को हम 5 श्रेणी में विभाजित करते हैं। पुनर्वापर योग्य, अपसाइकलिंग, डाउनसाइकलिंग, रीसाइकलिंग या फिर अनुपयोगी योग्य। इस वर्गीकरण के उपरांत उसका सैनिटाइजेशन किया जाता है। वो जो कपड़ा है उस कपड़े के धागे अलग किए जाते हैं, उसको यान भी बोलते हैं। तो ये जो यान निकलते हैं इस यान से जो भी वस्तुएं हम यूज में ला सकते हैं ऐसी वस्तुएं बनाते हैं जैसे बैग्स है, मैट्स है, कुछ एसेसरीज है, होम डेकोर आइटम्स है। इस TRF सेंटर में लास्ट ईयर 41.5 मेट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर टेक्सटाइल वेस्ट का संकलन किया गया है और उससे 41,000 से अधिक वस्तुओं का निर्माण किया गया है।
3: ये केंद्र पर्यावरण में जाने वाले वस्त्र कचरे को कम करने के साथ ही स्थानीय महिलाओं की आमदनी बढ़ाने का काम भी कर रहा है। एक केंद्र से शुरू हुई इस पहल के लिए भविष्य की संभावनाएं अगणित।

0: उन्होंने 64 से अधिक फीचर फिल्मों का निर्माण किया। मुंबई के अंधेरी में प्रकाश स्टूडियो की उन्होंने स्थापना की। विजय भट्ट ने हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं की फिल्मों में अपना योगदान दिया है।
1: We also pay tribute to Anant Vitthal Kher, known as Dhananjay Kher, who was an Indian biographer who profiled certain politicians and political activists. Considering his prolific write-ups on freedom fighters that showcased he was bestowed with Padma Bhushan by the Indian government, he was also rewarded with the Vidyarthi Award by Navanalanda Mahavir Foundation in 1977 for his acclaimed contribution to the field.
0: कथक नृत्यांगना अलकनंदा देवी ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा। वे प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी की बड़ी बहन थी। अलकनंदा देवी का ताल्लुक वाराणसी से था, हालांकि उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अलकनंदा जी ने फिल्मों में भी काम किया। सोहराब मोदी की फिल्म हुमायूं में उन्होंने नृत्य किया।
1: And today we also pay tribute to Ghanshyam Nayak, who was an Indian drama, film and television actor. He first achieved fame as a child artist in the 1960s movie Masoom and the song Nani Teri Morni Ko Mor Le Gaye. Who doesn't know this song? His last memorable role was of Natwarlal Prabhashankar Udhaiwala or Nattu Kaka in Tarak Mehta Ka Ulta Chashma.
0: जी, और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर की आज जयंती है। उन्होंने ये उपलब्धि 1956 में हासिल की। भारत के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया।

0: नंदू नाटेकर ये पुरस्कार हासिल करने वाले भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी रहे। उन्होंने अपने करियर में 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते हैं। और चलते चलते आपको बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेटर और वायुसेना की पूर्व अधिकारी शिखा पांडे आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। और इसके साथ ही इजाजत दीजिए जागृति और अनुजा को,
1: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
3: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। एजेंसी ने कहा कि यह फैसला केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्क्रियों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवारों की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि ये संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
4: ICCR समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये ICSSR के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
2: संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमा सानी ने इंडिया पोस्ट की अगली पीढ़ी के डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी के दूसरे चरण की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि यह टेक्नोलॉजी किस प्रकार शाखा कार्यालयों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर रही है। डॉ. चंद्रशेखर पेमा सानी ने कहा कि AI का एकीकरण इंडिया पोस्ट को बड़ी मात्रा में परिचालन डेटा संसाधित करने, परिणामों की भविष्यवाणी करने, नियमित कार्यों को स्वचालित करने और डाक नेटवर्क में सेवा वितरण को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में मदद कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति न्यायालय में अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा के रामेश्वर तेली, अजंता नियोग, असम गढ़ परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा सहित चारों मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार। लोक संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम लोक रंजनी लेकर हम हाजिर हैं
1: और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं कुसुम और मेरे साथ है
0: शीतल।
1: तो बहुत प्यारे प्यारे हम लोकगीत लेकर आए हैं। तो शीतल बहन, कई बार होता है ना, जैसे कि जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हमें हर चीज अच्छी लगती है।
0: ये बात तो है। और हम जब थोड़े से भी दुखी होते हैं तो कितना भी अच्छा माहौल हो, कितना भी अच्छा पकवान हो, हमारा मन ही नहीं करता। या हमारे मन की कई बार होता है ना, हमारे मन का कुछ नहीं हुआ तो हम उदास हो जाते हैं। पर ये बात चल रही है थोड़ा स्वास्थ्य की, क्योंकि मौसम बदल रहा है, इसलिए कुछ मन अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि आज हमारी कुसुम बहन की भी तबीयत थोड़ी सी खराब है, बट ठीक है, फिर भी वो कर रही है।
1: हाँ, तो मैं ये कहती थी, जैसे उस टाइम पे अगर कोई शीतल बहन अगर बुरा भी कह देना तो हमें अच्छा, मतलब बुरा नहीं मानते, हम उसको लाइटली ले लेते हैं क्योंकि हमारा मन बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा ही कुछ लोकगीत में भी आप सुनेंगे, रेणु बर्मन कुछ ऐसी ही बात कह रही है शीतल बहन।
0: तो आइए
1: सुनवाते हैं।

आई है घर में खुशियाँ, मैं तो घर को सजाऊंगी रे। ये हम सुन रहे थे रेनू बर्मन की आवाज़ में प्यारा सा लोकगीत। और अगले लोकगीत की तरफ बढ़ते हैं और सुनवाते हैं वीना ढिल्लोर और सखियों की आवाज़ में ये लोकगीत।

तो श्रोता सुन रहे थे राजेंद्र माफ़ कीजिएगा वीला ढिंढोर और सखियों से ये लोकगीत, और अगला लोकगीत हम सुनेंगे राजेंद्र जाटक की आवाज़ में।

अभी हम राजेंद्र जाटव की आवाज़ में प्यारा सा लोकगीत सुन रहे थे। और शीतल बहन, लोकगीतों में बहुत ही ख़ास बात होती है कि जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें होती है दैनिक जीवन में जो बातें होती हैं वो भी हम लोकगीतों के माध्यम से बखूबी बयां कर जाते हैं, और तीज त्योहारों पर तो होती हैं बातें। तो आइए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं बबीता चौधरी क्या कहना चाह रही हैं।

तो श्रोता सुन रहे थे बबीता चौधरी की आवाज़ में ये लोकगीत, और आज का हमारा लोकरंजनी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे नरेश पारा सर और संयोजक थे शिवनंदन लाल। माफ कीजिएगा, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारा सर।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियो वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, और अब कार्यक्रम है दैनिक कार्यक्रम खेल
1: नमस्कार।
0: खिलाड़ी।
1: आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी
2: नमस्कार, मैं हूं विजेता चतुर्वेदी।
1: और विजेता, ढेर सारी एशियन चैंपियनशिप्स हो रही हैं, फुटबॉल की, वेटलिफ्टिंग की, बॉक्सिंग की, बहुत सारे खेलों में इस समय एशिया में सारे खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियन।
2: महिला एशियन कप 2026 से AFC अंडर 17 क्वार्टर फाइनल में भारत की यंग ट्राइकलर्स का सफर थम तो गया है, लेकिन उन्होंने लाखों भारतीयों का दिल जरूर जीत लिया है। 11 मई को चीन के सुझाऊ स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में मेजबान चीन ने भारत को 3-0 से हरा दिया, लेकिन इस हार के बावजूद इस टीम ने इतिहास रच दिया।
1: अगर हम बात करें अभी तक के इनके सफर की, तो बहुत ही शानदार और जानदार ये सफर था, क्योंकि भारत में जिस तरह से फुटबॉल आगे बढ़ रही है और अंडर 17 गर्ल्स ने जिस तरह से अपनी फुटबॉल खेली है और क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे हैं, वो अपने आप में निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि बहुत तैयारी की थी इन्होंने। और ये रिजल्ट जो 3-0 है, ये बहुत कोई खराब रिजल्ट नहीं है। हालांकि भारतीय टीम सक्षम थी चीन को हराने के लिए, लेकिन कई बार दिन अच्छा होता है किसी दूसरी टीम का, और वही हुआ। चीन का थोड़ा दिन भी अच्छा था और भारतीय खिलाड़ी ने हालांकि दमखम खूब लगाया, खूब जोर
2: बिल्कुल
1: लगाया।
2: बिल्कुल। और भारत पहली बार इस टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज में पहुंचा था, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रुप स्टेज में लेबनान को 4-0 से हराकर भारत ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी, और दूसरी तरफ चीन था, घरेलू मैदान पर खेल रहा था, दर्शकों का पूरा समर्थन उनके साथ था। मैच की शुरुआत से ही चीन ने आक्रामक रवैया अपनाया, लेकिन मैच के आखिरी मिनट में चीन ने तीसरा गोल भी दाग दिया। भारत का सफर खत्म यहीं हो गया था। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2026 मोरक्को का सपना अधूरा रह गया। लेकिन दोस्तों, ये टीम हार कर भी जीती है। पहली बार क्वार्टर फाइनल तक का सफर दुनिया के सबसे मजबूत यूथ टूर्नामेंट में मेजबान चीन से लोहा लेना, ये कोई छोटी बात तो नहीं है।
1: और जो कुल मिलाकर 4 क्वार्टर फाइनल्स हुए थे, और उसमें जो पहला क्वार्टर फाइनल था उसमें DPR कोरिया ने 6-0 से हराया था थाईलैंड को। दूसरे क्वार्टर फाइनल में चीन और भारत की टीमें आमने सामने थी और भारतीय टीम अच्छा खेलने के बाद भी चीन से 3-0 से हार गई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में जापान और कोरिया के बीच मुकाबला था, जहां पर जापान की टीम ने बहुत ही कड़े मुकाबले में 1-0 से जीत दर्ज की। और वहीं वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो चौथा क्वार्टर फाइनल खेला गया, उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वियतनाम को 2 गोलों से हराया, 2-0 से हराया। तो ये दिखाता है कि बहुत कड़ा ये टूर्नामेंट है, बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा है, लगातार जो अच्छा खेलेगा वही यहाँ पे जीतेगा। और भारतीय टीम ने भी यहाँ तक क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया, तो दिखाता है कि अब फुटबॉल में लगातार भारतीय महिलाएं भी किसी से कम नहीं है।
2: बिल्कुल। और चलिए अब लिए चलते हैं अपने श्रोताओं को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, जहां पर हो रहा है एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026, जहां भारतीय बेटियां इतिहास रच रही हैं। गर्ल्स अंडर 17 वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। कुल 8 भारतीय बॉक्सर्स ने अपने अपने सेमीफाइनल जीत कर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इन 8 बॉक्सर्स के लिए अब स्वर्ण या रजत पदक की राह भी खुल गई है और पूरे देश की नजरें इन पर टिकी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर 4 भारतीय बॉक्सर्स को सेमीफाइनल में हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा कर दिया है। इस प्रकार कुल मिलाकर भारत के पास इस टूर्नामेंट में अब तक कम से कम 4 पदक तो पक्के हो चुके हैं।
1: और ये दिखाता है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ, यानी कि जो एक बात चलती है कि खेलों का कल्चर कैसा है, किस तरह से जो दूसरे खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, लगातार जो खिलाड़ियों की एक एक एज के बाद अगली एज में खेलने के लिए जो खिलाड़ी तैयार किए जाते हैं, या ये कहें कि खिलाड़ियों की नर्सरी किस तरह से तैयार हो रही है, वो ये दिखाता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ है विजेता, वो ये है खेलो इंडिया गेम्स। खेलो इंडिया गेम्स ने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे खिलाड़ियों को प्रदान किया है, और ख़ासतौर से ओलंपिक्स गेम जितने भी हैं वहाँ पर खेलो इंडिया ने बहुत अधिक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है, क्योंकि ये एक ऐसी स्कीम है भारत सरकार की जिसमें ना केवल खिलाड़ी को प्रोत्साहित किया जाता है, उसको अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी डाइट और पढ़ाई लिखाई का भी पूरा ख्याल रखा जाता है।
2: ये भी बहुत जरूरी है। और

0: श्रोताओं को बता दें कि भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम पिछले कई वर्षों से एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाती रही है। इस बार के ये परिणाम साफ बताते हैं कि जूनियर स्तर पर भी भारत की भविष्य की पीढ़ी बेहद मजबूत है। फाइनल मुकाबलों का इंतजार है और हम उम्मीद करते हैं कि ये भारतीय बेटियां तिरंगे को और ऊंचा लहराएंगी। भारतीय अंडर 17 खिलाड़ियों की बात करें लड़कियों की, तो 12 पदक पक्के हैं। राखी 46 किलोग्राम की कैटेगरी में, खुशी 48 और ममता 52 किलोग्राम सहित 8 फाइनलिस्ट शानदार जीत दर्ज कर चुके हैं।
1: आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि हमारे 12 पदक तो पक्के हो ही चुके हैं और कई पदक ऐसे होंगे जिनका कलर बदलेगा, कोई स्वर्ण पदक आएगा, किसी में रजत पदक आएगा, किसी में कांस्य पदक आएगा, लेकिन जो पदक जीतना है वो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि आप उन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शामिल हो जाते हैं पदक जीतकर जिन्होंने इस पूरी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। और ये पूरा जो एक लगातार बॉक्सिंग के क्षेत्र में गए या रेसलिंग के क्षेत्र में गए या किसी भी क्षेत्र में आज की हम बात करें तो महिलाओं में जो खेलों के प्रति एक रुझान बढ़ा है, बल्कि मैं यहाँ पर विजेता एक बात और कहना चाहूँगा कि न केवल अभी जो जूनियर या बहुत यंग गर्ल्स हैं उनके अंदर, बल्कि एक सर्टेन एज में, जैसे अक्सर हम लोग आपको लगातार संडे ऑन साइकिल की बात करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों को लेके आई होती हैं साइकिल चलाने, यानी कि फिटनेस के प्रति, खेलों के प्रति जो एक जागृति आई है, साथ ही एक क्रांति हुई है, वो अपने आप में दर्शाता है कि अब भारत किसी से कम नहीं है।
0: हाँ, और ये जो मेडल है ये मतलब गिनती नहीं है, ये भारतीय खेल के भविष्य की एक झलक है। जो खिलाड़ी आज 15 या 17 साल की उम्र में एशिया स्तर पर चैंपियनशिप जीत रहे हैं वही कल ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अपना तिरंगा लहराएंगे। भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन और कोचिंग स्टाफ की मेहनत साफ दिखाई देती है। इन युवाओं की सही ट्रेनिंग, सही मार्गदर्शन और सही मंच यहीं से मिल रहा है और नतीजे सामने हैं। और ये वही रास्ता है जहां पर एक समय मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह और अमित पंघाल जैसे लोगों ने भारत का नाम रोशन किया था।
1: और पिछले कुछ समय में लगातार बॉक्सिंग में जिस तरह से हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं और महिलाएं भी उसमें पीछे नहीं हैं, निखत जरीन, स्वीटी बूरा, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया है बॉक्सिंग के क्षेत्र में आने के लिए। और विजेता अक्सर ये लोग कहते हैं कि बॉक्सिंग में चेहरे पे घूंसे पड़ेंगे तो कहीं चेहरा खराब तो नहीं हो जाएगा, लड़की की शादी भी करनी है, लेकिन इन सब चीज़ों से दरकिनार करते हुए और लगातार अपने खेल को और निखारते हुए आज भारतीय बेटियाँ बहुत नाम रोशन कर रही हैं पूरे देश में।

0: और अब गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का, जैसे कि आपको पता ही है कि आगाज हो चुका है, 44 साल बाद एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियंस की भारत जो है मेजबानी कर रहा है। और ये प्रतियोगिता गांधीनगर गुजरात में शुरू हो चुकी है 11 मई से और 17 मई तक चलने वाली है। 28 देशों के करीब 180 एथलीट इसमें हिस्सा ले रहे हैं।
1: और विजेता, जैसे आपने बताया कि 180 एथलीट यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं और इसमें से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो ओलंपिक पदक विजेता है, ओलंपियन है, ओलंपिक में जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है। और अगर हम बात करें वेट लिफ्टिंग की, तो वेट लिफ्टिंग एक ऐसा खेल है जिसमें एशिया का जो स्तर है, पूरे एशिया में जो हमारे खिलाड़ी हैं वेट लिफ्टिंग में, वो बहुत ही शानदार है। बल्कि हम जो वेट लिफ्टिंग से जुड़े हुए लोग हैं वो अक्सर इस बात को कहते हैं कि बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं, क्योंकि ये जितने भी हमारे ऐसे खेल होते हैं जिनको हम आयरन गेम्स कहते हैं, इसमें वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, इस तरह के जो खेल होते हैं, इनमें हम एक शब्द यूज़ करते हैं कि तगड़े खिलाड़ी हैं। तगड़े खिलाड़ी होने का मतलब ये है कि आपकी टेक्निक भी अच्छी है, आप मानसिक रूप से भी बहुत स्ट्रांग हैं, शारीरिक रूप से तो आपको स्ट्रांग होना ही है। तो कुल मिलाकर भारतीय खिलाड़ी बहुत मेहनत करके इस बार इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं और वो मेहनत नजर भी आ रही है, क्योंकि पहले दिन ही हमने पदक भी जीत लिया है।
0: और उत्तर कोरिया के पैंग उन चोल ने इस वर्ग में पूरे मैदान पर अपना दबदबा कायम किया। उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 174 किलोग्राम का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा और कुल 304 किलोग्राम के टोटल के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं रजत पदक गया मलेशिया के मोहम्मद अनीक कसदान को। उन्होंने स्नैच में 122 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 155 किलोग्राम उठाते हुए कुल 277 किलोग्राम का करियर बेस्ट प्रदर्शन किया।

0: 2022 में आए बहरीन में चौथे और 2023 में दक्षिण कोरिया में छठे स्थान पर रहे अनीक ने के लिए ये एक ऐतिहासिक सफलता थी। और कांस्य पदक वियतनाम के जिया तान लाई के खाते में गया, जिन्होंने 276 किलोग्राम 267 किलोग्राम का टोटल लिफ्ट दिया। हालांकि बाद में क्लीन एंड जर्क के दूसरे प्रयास में असफल रहे और अपना दूसरा प्रयास वो नहीं कर पाए।
1: और यहां मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि वेटलिफ्टिंग में दो इवेंट होते हैं, एक इवेंट होता है स्नैच और एक होता है क्लीन एंड जर्क। स्नैच इवेंट माना जाता है कि दुनिया का फास्टेस्ट स्पोर्ट्स है, यानी कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आप वेट को अपने सिर के ऊपर लाते हैं और अगर वो उठ जाता है तो ठीक है, नहीं उठता तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में वेट गिर भी जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि वेट लिफ्टर एक सेकंड के अंदर ही अपनी लिफ्ट पूरी कर जाता है, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट गेम माना जाता है दुनिया में स्नैच। एक ही झटके में वेट लिफ्टर जमीन से वेट को अपने सिर के ऊपर लाता है। वहीं दूसरा इवेंट होता है क्लीन एंड जर्क। क्लीन एंड जर्क के अंदर पहले क्लीन की जाती है, यानी कि जमीन से वेट को अपने कंधे तक उठाया जाता है, उसके बाद खड़े होने के बाद में फिर उसको कंधे से अपने सिर के ऊपर उठाया जाता है, जिसको जर्क कहा जाता है। तो क्लीन एंड जर्क में अधिक आमतौर पर अधिक वेट उठता है और स्नैच में नॉर्मली जो 20 से 25 किलो का मार्जिन रहता है। स्नैच का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा इस तरह सा है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए उसमें थोड़ा कम वेट उठता है। लेकिन जिस तरह से अब खिलाड़ी वेट उठा रहे हैं, 303 किलोग्राम का जो टोटल कोरिया के खिलाड़ी ने दिया है, तो ये दर्शाता है कि अब वेट लिफ्टिंग का स्टैंडर्ड खासतौर से एशियाई स्तर पे तो बहुत हाई हो गया। एक ज़माना था जब रशिया या बल्कि उस ज़माने में यूएसएसआर हुआ करता था और साथ ही यूरोपियन खिलाड़ी बहुत आगे थे। हालांकि वेट लिफ्टिंग में अमेरिका का दबदबा बहुत अधिक नहीं रहा है, यूरोप का दबदबा हमेशा रहा है, लेकिन अब एशिया के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने दिखा दिया है कि वेट लिफ्टिंग में अब वो पीछे नहीं रहेंगे। और भारतीय खिलाड़ियों में भी बड़ी एक गजब की बात मैं आपको बताता हूँ। अक्सर वेट लिफ्टिंग की बात आते ही हम देखते हैं कि एक मजबूत कद काठी का मजबूत व्यक्ति खड़ा है और वो पुरुष होता है, लेकिन पहला पदक जीता महिला ने ओलंपिक में, जब पदक जीता तो वो थी कन्ना मल्लेश्वरी, सिडनी ओलंपिक 2000, जहां पर इस अबला नारी जिसको अबला समझा जाता था उसने सभी सबल लोगों को अलग करते हुए वेट लिफ्टिंग में पदक जीता। और उसके बाद से लगातार वेट लिफ्टिंग भारत में आगे बढ़ती रही, बहुत बड़े बड़े नाम हैं और अब तो हम ओलंपिक कई बार पदक जीत चुके हैं। कन्ना मल्लेश्वरी के बाद उसकी जिस तरह से अब चानू के पदक आ रहे हैं और अब जिस तरह से कोमल, नाम ही कोमल है लेकिन काम बहुत मजबूत किया उन्होंने
0: जी। और भारत की बात करें तो भारत के ऋषिकांत सिंह चनामदन ने केवल स्नैच का पहला प्रयास 115 किलोग्राम में किया और उसके बाद उन्हें प्रतियोगिता से हटना पड़ा। घरेलू दर्शकों के सामने ये थोड़ा सा निराशाजनक रहा, लेकिन आगे के वर्ग में भारतीय खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रखते हैं, जैसा कि अभी बात कोमल की हो रही है।
1: और जिस तरह से कोमल ने जो टोटल किया है वो अपने आप में दिखाता है कि जो कोमल ने वजन उठाया है वो दिखाता है कि नाम ही सिर्फ उनका कोमल है। हालांकि बहुत लाइट वेट कैटेगरी में वो खेलती हैं और जिस तरह से चानू इस में नहीं थी इस चैम्पियनशिप में, तो एक अलग से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि भाई एक सीनियर खिलाड़ी नहीं है तो अब हमें पदक जीतना है। तो कोमल कौर ने जिस तरह से अपनी वेट लिफ्टिंग की तो दिखाता है कि हमारे वेट लिफ्टर बहुत स्ट्रांग है। और गांधीनगर में हमारे प्रसार भारती संवाददाता संजीव दत्ता वहाँ पर उपस्थित हैं और हमने उनसे पूछा कि किस तरह का माहौल है इस समय गांधीनगर में, किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं और भारतीय वेटलिफ्टिंग दल कितना मजबूत है इस समय पदक जीतने के लिए, इस प्रतियोगिता में वो कितने पदक जीत सकते हैं। ढेर सारे सवाल हमने अपने प्रसार भारती संवाददाता संजीव दत्ता से किए, उन्होंने क्या कहा आइए सुनते हैं।
2: बहुत ही बढ़िया माहौल है गांधीनगर का, यहाँ पर अपने अपने देश से राष्ट्र से आए हुए उत्कृष्ट खिलाड़ी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। 28 देश हैं जो इस खेल कौशल में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुषों में भी बहुत अच्छे बढ़ चढ़कर प्रतिनिधित्व आया है। जो ओलंपियन प्लेयर्स हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। अगर हम कल के 48 किलो भार वर्ग की बात करें तो उसमें महिलाओं में भी और पुरुषों में भी दोनों में ही डीपीआर कोरिया के पुरुष भार वर्गों में ओलंपियन थे। और वहीं अगर हम बात करें महिलाओं की तो महिलाओं में चाइनीज ताइपाइन की जो स्वर्ण पदक विजेता रही हैं, स्वर्ण पदक विजेता और रजत पदक विजेता दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता बनी।
1: एशियन चैंपियनशिप यहाँ पे हो रही है और किस तरह का माहौल है, किस तरह का जोश है वहाँ पे लोगों में?
2: देखिए ये प्रतियोगिता दूसरी बार भारत को मेजबानी करने का मौका मिला है तो स्वाभाविक है कि भारत इस आयोजन से

0: तरह से परिपक्व था और बहुत ही जिस तरीके का ये आयोजन होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो उससे भी ऊपर अगर इसकी रैंकिंग की अगर हम बात करें तो बहुत ही उत्कृष्ट खेल कौशल को प्रस्तुत करने वाले खिलाड़ी भी हैं और ये आयोजन बहुत ही अच्छे तरीके से आयोजित किया गया है पूरा क्रमबद्ध तरीके से। आज की अगर हम ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा और इसमें गणमान्य अतिथिगणों की अगर हम बात करें तो गणमान्य अतिथिगणों में यहाँ पर श्री हर्ष सांधी जी की उपस्थिति रहेगी मुख्य अतिथि के तौर पर और डॉक्टर जयराम जी हैं जो राज्य मंत्री वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन जनजातीय विकास खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं तो वो भी यहाँ पर रहेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आयोजन एक अपने आप में नींव का पत्थर साबित होगा क्योंकि इसी आयोजन से आने वाली एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों का भी चयन किया जाएगा।
1: आपने तो बहुत सारे इवेंट कवर किए हैं, इस बार जो भारतीय दल है वो कितनी तैयारी के साथ आया है और क्या लगता है कि कितने पदक हम जीत सकते हैं?
0: देखिए भारतीय दल की अगर हम बात करें तो भारतीय दल इससे पहले भी अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलकर आए खिलाड़ी, अगर कोमलप्रीत की ही अगर हम बात करें तो कोमलप्रीत इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलकर आई है और वहां पर उसने रजत पदक जीता था, उसके साथ ही यहां पर आकर उसने अपनी परफॉर्म किया और कांस्य पदक जीता क्योंकि हालांकि समय अवधि उसके पास बहुत कम रही। उससे साक्षात्कार में हमने बात भी करी थी तो उसने बताया कि एकदम कॉम्पैक्ट टूर्नामेंट था, लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से जिस तरीके से टूर्नामेंट चल रहा था तो उसको इतना अच्छा अधिक समय नहीं मिल पाया जिस तरीके से वो परफॉर्म कर सकती, मगर फिर भी उसने बहुत अच्छा पोडियम फिनिश किया तो अपने आप में ये काबिले तारीफ है और स्वाभाविक है कि भारतीय जो एथलीट्स हैं इसमें बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन करेंगे।
1: कल जो हमारे खिलाड़ी उतरेंगे उनसे कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं?
0: देखिए अगर हम बात करें भारतीय बार्तलोन की तो अब तक का जो सफर रहा है भारतीय वेटलिफ्टर्स का वो अपने आप में काबिले तारीफ है, तो लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से अगर आप सारी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स को देखें तो जिस भी टूर्नामेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व रह रहा है तो वहां पर हम खाली हाथ नहीं आते, जिस तरीके से खिलाड़ी अपना खेल कौशल प्रदर्शित कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर हमें पदक तालिका में हर एक वेट कैटेगरी में भारतीय प्रदर्शन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा।
1: ये थे गांधीनगर से प्रसार भारती संवाददाता संजीव दत्ता जो बता रहे थे कि एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी सभी वर्गों में जिसमें भी भारतीय खिलाड़ी अपनी जो चुनौती है वो पेश करेंगे तो वहाँ सभी वर्गों में भारतीय खिलाड़ी पदक के मजबूत दावेदार हैं। और जिस तरह से अभी पहले दिन का टूर्नामेंट का जो पहला दिन था उसके इवेंट हो चुके हैं, आज ओपनिंग सेरेमनी और कल कई भारतीय खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपना दमखम दिखाएंगे और अपनी वेटलिफ्टिंग करेंगे। और विजेता जिस तरह से कल की अगर हम बात करें, कल जो खिलाड़ी होने वाले कल जो खिलाड़ी होने हमारे खिलाड़ी खेलेंगे उनसे बहुत उम्मीदें हैं पदक की।
2: बिल्कुल, और 53 किलोग्राम की स्पर्धा में महिलाओं वाली में ये शायद इस चैंपियनशिप का सबसे रोमांचक वर्ग होगा। उत्तर कोरिया के कैंग ह्योन ग्योंग पिछले 2 सालों में विश्व चैंपियन रह चुकी हैं और वो यहाँ भी प्रबल दावेदार हैं। भारत की तरफ से होंगी ज्ञानेश्वरी यादव मैदान में, घरेलू मैदान पर ये उनके करियर का बड़ा मौका है और ये वर्ग कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स की क्वालिफिकेशन के लिहाज से भी बेहद अहम हो जाता है। वहीं अगर बात करें पुरुषों की 65 किलोग्राम की स्पर्धा में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। उत्तर कोरिया के पैक म्योंग जिंग इस वर्ग में उतरेंगे जो एशिया के बेहतरीन लिफ्टर्स में से एक हैं। भारत की तरफ से होंगे राजा मुथुपेंदी इस वर्ग में चुनौती पेश करेंगे और 60 किलोग्राम में उत्तर कोरिया के शानदार प्रदर्शन के बाद देखना होगा कि क्या 65 किलोग्राम में भी वो अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं। और तीसरी स्पर्धा होगी महिलाओं की 58 किलोग्राम की जिसमें भारत की बिंदिया रानी देवी मैदान में उतरेंगी और पूरे भारतीय दल की सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं ये, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट हैं चीनी ताइपे की चेन ग्वान लिंग जो 2023 की विश्व चैंपियन हैं इसी वर्ग में उतरेंगी। साथ ही उत्तर कोरिया के किम ग्योंग भी इस श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करेंगे। बिंदिया रानी के लिए ये घरेलू धरती पर इतिहास रचने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है और ये कल देखना होगा कि 13 मई को गांधीनगर के इस ग्राउंड में क्या कुछ हमें देखने को मिलता है।
1: सही बात है, और क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम ने तैयारी की है और अभी लगातार कॉम्पिटिशन होते जा रहे हैं, ये भी एक थोड़ा सा कई खिलाड़ियों की इस तरह की बात आई है कि वो लगातार कंपटीशन की वजह से हो सकता है कि कई खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ना भी कर पाए।
2: बिल्कुल, अब चलिए अब लिए चलते हैं अपने श्रोताओं को बैंकॉक में जहां पर आयोजित हो रहा है

0: थाईलैंड ओपन बैडमिंटन 2026 जो कि 12 से 17 मई के बीच हो रहा है। भारत की ओर से 27 सदस्यीय दल इस टूर्नामेंट में उतरा है। टीम की अगुवाई कर रहे हैं रिंग के बादशाह सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, दो बार के ओलंपिक चैंपियन पीवी सिंधु और भारत की नंबर वन पुरुष खिलाड़ी लक्ष्य सेन। तो क्या कुछ वहां हो रहा है आइए जानते हैं।
1: और ये हम अपने श्रोताओं को बता दें कि शुरुआत तो हो चुकी है लेकिन जो पहला रिजल्ट है वो भारत के हक में नहीं है क्योंकि मिक्स्ड डबल्स में जहां पर मोहित जगलान और लक्षिता जगलान की जोड़ी खेली थी चाइनीज ताइपे के खिलाड़ियों के खिलाफ वो अपना मुकाबला हार गए हैं। 11-21 और 18-21 से भारतीय जोड़ी अपना मुकाबला हार गई है और कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि थोड़ा आगे तक वो जाएंगे लेकिन वो आगे नहीं जा पाए और अपने मुकाबले को वो हार गए। वहीं अगला मुकाबला जो है वो अगर हम बात करें वुमेन्स डबल की तो वो भारतीय टीम वहाँ पर उनका मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 6:15 पर आरंभ होगा और उम्मीद है कि यहाँ से भारतीय जोड़ी आगे बढ़ जाएगी। और वहीं मेंस डबल की हम बात करें तो जैसे आपने बताया ठीक उसी के तरह भारतीय जोड़ी ने अपना प्रदर्शन भी किया। साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जिस तरह से अपने मुकाबले को जीता, पहला सेट उन्होंने 21-19 से जीता, दूसरे में 21-23 तक ये मुकाबला चला, कड़ा मुकाबला चला। लेकिन हालांकि कई बार ऐसा होता है कि ड्रॉ इस तरह का आ जाता है, हालांकि राउंड ऑफ 32 ये वो जगह नहीं है जहां पर इस तरह के कड़े मुकाबले हों, लेकिन कई बार ड्रॉ इस तरह का आ जाता है कि आपको कुछ बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ जाता है। तो वहीं इंडोनेशिया की टीम के साथ भारतीय टीम का ये मुकाबला था और तीसरे सेट में भारतीय टीम ने ये मुकाबला जीता 21-10 से। तो यानी कि पहला सेट 21-19, दूसरा 21-23 कड़ा मुकाबला था, लेकिन तीसरे सेट में भारतीय टीम ने पूरी तरह से अपना डोमिनेंस स्थापित किया और 21-10 से ये मुकाबला जीत लिया। तो ये दर्शाता है कि जिस तरह से आपने बताया रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी शानदार फॉर्म में है, वो निश्चित तौर पर वो अच्छी फॉर्म में है। वहीं दूसरी ओर एक अगले क्वालिफिकेशन मुकाबले में भारत की अनुष्का अपना मुकाबला हार गई और 5-21 और 7-21 से वो सीधे सेटों में अपने मुकाबले को हार गई, तो उनका आज फॉर्म अच्छा नहीं था। वहीं मानव चौधरी मलेशिया के खिलाड़ी के साथ उन्होंने अपना मुकाबला खेला और 19-21 और 18-21 से वो भी अपना मुकाबला आज हार गए। तो कुल मिलाकर कई खिलाड़ी ऐसे थे जो युवा हैं और अभी काफ़ी उनको अनुभव की आवश्यकता है, उन्होंने हालांकि कोशिश अच्छी की लेकिन वो अपने मुकाबले को हार गए और उसके बाद जो अनुभवी जोड़ी भारत की खेली उन्होंने अपना मुकाबला जीता। तो थोड़ी खुशी थोड़ा गम दोनों चीज़ें आज हमें थाईलैंड ओपन में देखने को मिली है।
0: बिल्कुल, और अब चलते हैं आईपीएल की दुनिया में। कल हुआ 55वां मैच, क्या कुछ रहा उस मैच का हाल इसको जानते हैं।
2: आईपीएल 2026 का 55वां मुकाबला पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। ये मुकाबला धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में हुआ। इस मैदान पर ये मौजूदा सीजन का पहला मुकाबला भी था। पंजाब के लिए ये सीजन का 11वां मैच था जबकि दिल्ली की टीम अपना 12वां मुकाबला खेलने उतरी थी। मैच का टॉस जीता था दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने और पहले गेंदबाजी का फैसला उन्होंने लिया। उसके बाद पहले खेलते हुए पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 210 रनों का शानदार टोटल बनाया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत डगमगा गई और 34 रन पर ही 3 विकेट गिर गए। क्रिस्पन स्टब्स ने भी निराश किया और 17 गेंद पर 12 रन बनाकर रन आउट हो गए। 74 रन पर 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। फिर एक बार टीम के संकट मोचक बने डेविड मिलर और कप्तान अक्षर पटेल, इन्होंने जमकर धूम मचाई। अपनी इस जीत और शानदार जोड़ी पर क्या कहते हैं डेविड मिलर?
3: Obviously a good feeling to do it against them. Obviously disappointed to get out when I did, but I think Akshar played so well and we've obviously struggled to get a couple of wins here and there and it's nice to get another win on the belt and play for some pride and get back on winning ways. Suppose experience comes in, when you sort of a tough moment, you always look back on past experiences that you've achieved and and accomplished. So it gives you confidence to in that situation. And I've obviously I played here quite a lot, so I had a couple of good knocks every now and again, and it was nice to fall back on that. So yeah, it was a good win. I suppose experience comes in, you know, when you sort of a tough moment, you always look back on past experiences that you've achieved and accomplished. So it gives you confidence to in that situation. And I've obviously I played here quite a lot, so I had a couple of good knocks every now and again, and it was nice to fall back on that. So yeah, it was a good win.
0: असली फिनिशिंग टच युवा माधव तिवारी और आशुतोष शर्मा ने दिया। माधव ने न केवल गेंद से दो विकेट लिए बल्कि दबाव के क्षणों में बेखौफ बल्लेबाजी कर टीम को 19 ओवर में ही लक्ष्य तक पहुंचा दिया और वो इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच बन गए।
4: अब मुझे मतलब जैसे मेरा दूसरा साल है आईपीएल में और एनवायरनमेंट से काफ़ी अब यूज टू हो गया हूँ ऐसा लग रहा है, और मैनेजमेंट और जितने भी सीनियर्स हैं वो सुपर सपोर्टिव हैं, और वो आपका मतलब आप कभी भी जा सकते हैं उनके पास, कुछ भी पूछना है, कुछ भी करना है। बट बस ये है कि अब यूज टू हो गया, तो फिर बस नर्व्स कंट्रोल में करनी थी और बैट और बॉल का ही गेम है, मैं बस अपने बेसिक्स पे फोकस कर रहा था और अच्छा मतलब थिंग्स टर्न्ड आउट वे, दैट्स फॉर्चुनेट। हमारी तो मतलब क्लियर बात हो रही थी कि क्या रिक्वायर्ड है, और गेम जिस तरीके से चल रहा था दोनों के बैट पे बॉल लग रहा था, तो हम बहुत कंफर्टेबल थे, साथ में खेले भी हैं, साथ में जानते हैं, एक ही जगह से रहते हैं। तो बस यही था कि माहौल काफ़ी चिल था, और आईपीएल के पहले हम लोग साथ में भी काफ़ी प्रैक्टिस किए हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग वैसे भी हो ही गया है।
0: पंजाब किंग्स की आईपीएल 2026 में ये लगातार चौथी हार थी। कल हुए इस मुकाबले में पंजाब किंग्स के कैप्टन श्रेय

0: अंडरस्टैंडिंग वैसे भी हुई है।
1: पंजाब किंग्स की आईपीएल 2026 में ये लगातार चौथी हार थी। कल हुए इस मुकाबले में पंजाब किंग्स के कैप्टन श्रेयस अय्यर क्या कहते हैं?
2: There was absolutely a thought in my mind, but the way ball was seaming and the way it was helping seamers, I think if we would have executed our line and length precisely, we could have been able to extract wickets, but unfortunately again we didn't. I always say that hard length, short of hard length is the best ball, especially when a new batsman is coming and it's not easy to hit. Because if you keep repeating those balls, at least one, there's one ball, there's a chance of, you know, mishitting and you can get a wicket. So, you know, we fell short of planning.
1: इस हार के बाद पंजाब के लिए आगे की राह थोड़ी मुश्किल हो गई है। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल इतिहास में अपना दूसरा सबसे सफल रन चेस भी किया।
3: दिल्ली ने तो अपना रन चेस पूरा कर लिया, लेकिन अब जो

0: टीमें हैं, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद, दोनों ही टीमें इस समय अगर हम टेबल की दृष्टि से बात करें तो टेबल में तीसरे पायदान पर इस समय पॉइंट टेबल में गुजरात की टीम है, जिसने 11 मुकाबलों में 7 जीत और 4 हार के बाद कुल 14 अंक हैं, और वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की के भी 11 मुकाबलों में 7 जीत और 4 हार के बाद 14 अंक हैं। तो कुल मिलाकर ये दोनों जो टीमें हैं वो बिल्कुल टेबल के टॉप पर हैं, और सबसे ऊपर नंबर वन पायदान पर है आरसीबी की टीम, जिनके 11 मुकाबलों में 7 जीत और 4 हार के बाद 14 अंक है। यानी कि पहले तीन पायदान पर जो टीमें हैं उनके 11 मुकाबलों में 7 जीत और 4 हार के बाद 14-14 अंक हैं। सिर्फ रन रेट का फ़र्क है, इसलिए पायदान ऊपर नीचे है। वहीं पंजाब की टीम के 11 मुकाबलों में 6 जीत और 4 हार के बाद 13 अंक हैं। चेन्नई सुपर किंग्स भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और उनके 11 मुकाबलों में 6 जीत 5 हार के बाद 12 अंक हैं। राजस्थान रॉयल्स शुरुआत में अच्छा खेले लेकिन अब थोड़ी गाड़ी उनकी पटरी से उतरी हुई है, अब जल्दी ही उनको वापस आना पड़ेगा क्योंकि उनके 11 मुकाबलों में 6 जीत 5 हार के बाद 12 अंक हैं। दिल्ली कैपिटल के 12 मुकाबलों में 5 जीत और 7 हार के बाद 10 हैं। केकेआर के 10 मुकाबलों में 4 जीत 5 हार के बाद 9 अंक हैं, और मुंबई इंडियंस और लखनऊ की टीम इस समय बाहर हो चुकी हैं आईपीएल से। और वहीं आईपीएल के साथ जो दिल्ली का क्रिकेट स्टेडियम है उसके साथ ही अम्बेडकर स्टेडियम में खेला जा रहा है डीपीएल, और डीपीएल में इस समय मुकाबला चल रहा है दिल्ली फुटबॉल क्लब का रॉयल रेंजर्स के बीच में, ये मुकाबला चल रहा है और रॉयल रेंजर्स 1 गोल से इस समय आगे हैं दिल्ली प्रीमियर लीग में, और इस तरह से बहुत ही शानदार फुटबॉल अम्बेडकर स्टेडियम में खेली जा रही है। दोस्तों ढेर सारी खबरें, लेकिन अब स्टूडियो घड़ियां बता रही है हमें आपसे विदा लेनी होगी। मैं अजय तोमर, मेरे सहयोगी विजेता चतुर्वेदी और कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ आपसे विदा लेता हूं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी, जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं, तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब
1: संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी

परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी, जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोड की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, अब आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका वंदना कश्यपः। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रीय परीक्षा संस्थया अस्मिन् मासस्य तृतीये दिनांके आयोजिता नीट परीक्षा निरस्ता भविष्य

0: इति निर्णयः गृहीतः। भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठनेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा अनवरतम द्वितीयवारं असम राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। अस्मिन् मासे 14-15 दिनांकयोः ब्रिक्स विदेश मंत्रिणा सम्मेलनस्य आतिथ्यं भारतं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपति भवने आयोजिते कार्यक्रमे 15 परिचर्या वृत्तिकर्तृभ्यः राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कारान् प्रदत्तवती। अपि च इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य सायंकाले अहमदाबाद नगरे गुजरात टाइटन्स अथ च सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रीय परीक्षा संस्थया अस्मिन् मासस्य तृतीये दिनांके आयोजिता नीट परीक्षा निरस्ता भविष्यतीति निर्णयः गृहीतः। सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते सन्देशे संस्थया सूचितं यत् छात्रहितं राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाल्याः विश्वसनीयता च रक्षितं एषः निर्णयः स्वीकृतः। संस्थया स्पष्टीकृतं यत् प्रश्नपत्र सम्बद्धानां आक्षेपाणां विस्तृत अन्वेषणार्थम् एषः विषयः केन्द्रीय अन्वेषण अभिकरणाय प्रेषितः। एतदर्थं संस्था पूर्ण सहयोगं प्रदास्यति तथा अन्वेषणाय आवश्यकानि साहित्यानि अभिलेखानि साहाय्यं च उपलब्धं करिष्यति। केन्द्रीय संस्थाभिः आरक्षक बलैः च सह समन्वयनान्तरं प्राप्त सूचनानां आधारेण एषः निर्णयः कृतः। भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठनेता डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा अनवरतं द्वितीयवारं असम राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। गुवाहाटी नगरस्य खानापाड़ा स्थिते पशु चिकित्सा महाविद्यालयस्य प्रांगणे आयोजिते समारोहे राज्यपालः लक्ष्मण प्रसाद आचार्यः तस्मै पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रादापयत्।
1: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: ডক্টৰ শর্মা মহোদয়েন সহ অন্যে চত্বৰহ অপি মন্ত্ৰীমণ্ডলহ মন্ত্ৰিত্বেন শপথম স্বীকৃতৱন্তহ। তেষু ভাজপা দলস্য পক্ষতঃ রামেশ্বর তেলী, अजंता नेयोग च असम गण परिषदः पक्षतः अतुल बोरा तथा बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट पक्षतः चरण बोरो च सम्मिलिताः सन्ति। अस्मिन् समारोहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहः, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहः, अनेके केंद्रीय मंत्रिणः तथा एनडीए शासित राज्यानां मुख्यमंत्रिणः अपि उपस्थिता आसन्। अनेन सह डॉक्टर शर्मा असम राज्यस्य प्रथमः कांग्रेस रहितः नेता अभवत् यः अनवरतं द्वितीयवारं मुख्यमंत्री पदं अलंकृतवान्। अस्मिन् मासे 14-15 दिनांकयोः ब्रिक्स विदेश मंत्रिणां सम्मेलनस्य आतिथ्यं भारतं करिष्यति। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकरः अस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। अद्य नवदिल्ल्यां प्रसार माध्यमान् संबोधयन् विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् अस्मिन् सम्मेलने ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां सहभागी राष्ट्राणां च विदेश मंत्रिणः प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखाः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। सः अपि उक्तवान् यत् ते प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह अपि मेलनं करिष्यति। श्री जायसवालः अवदत् यत् अस्मिन् सम्मेलने ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां विदेशमन्त्रिणः परस्पर हितस्य वैश्विक क्षेत्रीय विषयेषु स्वविचाराणां आदान प्रदानं करिष्यन्ति।
2: 14 और 15 तारीख को ब्रिक्स विदेश मंत्री की बैठक हो रही है जिसकी अध्यक्षता हम लोग कर रहे हैं। जहां तक देशों का आपने जिक्र किया, उनकी तरफ से कौन आएगा ये तो खैर उनको तय करना है, लेकिन जैसे जैसे लोग आएंगे आपको पता चल जाए कौन उनके नेतृत्व कर रहे हैं, कौन लोग उसमें भाग ले रहे हैं।
0: अद्य अन्ताराष्ट्रिय परिचारिका दिवसः आचर्यते। अयं दिवसः आधुनिक परिचारिका व्यवस्थायाः संस्थापिकायाः फ्लोरेंस नाइटिंगल इत्यस्याः जन्मवार्षिक्याः उपलक्ष्ये प्रतिवर्षम् आचर्यते। रोगी परिचर्यायां सामुदायिक स्वास्थ्ये आर्थिक विकासे च परिचारिकाणां महत्वपूर्णां भूमिकां स्वीकृत्य अयं

0: ग्राम संसार सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को हमारी राम राम। शीतल बहन, इस कार्यक्रम में हम बहुत सारी बातें करेंगे, चर्चा भी होगी, योजना के बारे में भी जानकारी देंगे
1: जी,
0: और मनोरंजन तो होगा ही। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं दिनांक 11 मई 2026 को पूसा नई दिल्ली में आयोजित ICAR और ICMR द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए राष्ट्रीय मिशन सेहत के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।
2: दिनांक 11 मई 2026 को पूसा नई दिल्ली के सी सुब्रमण्यम सभागार में ICAR और ICMR द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय मिशन सेहत का शुभारंभ किया गया, जिसका मुख्य विषय था कृषि परिवर्तन के माध्यम से स्वास्थ्य हेतु वैज्ञानिक उत्कृष्टता। इसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और ICAR और ICMR के महानिदेशक, वैज्ञानिक और किसान भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के उप महानिदेशक फसल विज्ञान डॉक्टर डी के यादव ने सभी का अभिवादन करते हुए कहा,
3: सभी को नमस्कार। आज के हमारे परम आदरणीय मेहमान माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन उर्वरक मंत्री आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे माननीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी जी, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम के लिए समय देने और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ हमारे जो स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव तथा ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल जी, हमारे कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव तथा महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर ML जाट साहब, तथा कार्यक्रम में उपस्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयों के सभी अधिकारीगण, ICAR ICMR के सभी भूतपूर्व और वर्तमान वैज्ञानिकगण, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, सचिव ICAR तथा एडिशनल सेक्रेटरी डेयर, DHR एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर ICAR तथा सभी संस्थानों से आए हुए सभी वैज्ञानिकगण, किसान भाइयों, छात्रों, प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं तथा उपस्थित सभी मेहमान का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज का ये ऐतिहासिक दिन जिसके कि हम सभी साक्षी बनेंगे, उसके लिए आप सभी की उपस्थिति इतनी बड़ी संख्या में यह दर्शाता है कि ये एक कार्यक्रम की महत्ता के बारे में तथा इस कार्यक्रम का जो दूरगामी परिणाम आएंगे, निश्चित रूप से उससे हमारा किसान, हमारा आमजन, हमारे कृषि में काम करने वाले सभी कामगार वो लाभान्वित तो होंगे। एक बार मैं फिर आप सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार।
2: इस अवसर पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा,
4: ज्यादातर एग्रीकल्चर और हेल्थ दोनों अलग अलग तरह से अपना अपना काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च और हेल्थ रिसर्च। इस मिशन के जरिए हम इन दोनों को बिल्कुल एक साथ चल के, कदम से कदम मिला के आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सो इनोवेटिव एग्रीकल्चर सिस्टम्स जो हैं वो हमारे डाइट और न्यूट्रिशन दोनों को इफेक्ट करेंगे और उनको इम्प्रूव करेंगे, और सही तरह की न्यूट्रिशन हम लेंगे तो उससे पॉपुलेशन हेल्थ इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ फार्मर्स का लाइवलीहुड बेहतर होगा। इन चीज़ों को देखते हुए द विजन ऑफ दिस मिशन इज टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर टू सिंपली ए फूड प्रोडक्शन सिस्टम इनटू ए पावरफुल ड्राइवर ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलबींग फॉर इंडिया। और ये कैसे करेंगे, इसमें एग्रीकल्चर से जो इनोवेशंस आएंगी, इनोवेटिव क्रॉप्स आएंगे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स आएंगे, उससे डाइट की क्वालिटी इम्प्रूव होगी और उसके बाद हम उसकी हेल्थ आउटकम्स इन सब इनोवेशंस की साथ के साथ मेजर करें, कि जिससे कि हमें ये प्रमाण मिले कि अगर कोई फार्मर इनोवेटिव चीज़ को वो उगाता है तो वह उसे मार्केट में भी वो खरीदी जाएगी और उसका अच्छा दाम उसे मिलेगा। बिटवीन ICAR एंड ICMR दोनों ही बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और अलग अलग तरह की दोनों में ताकत है और हम इन दोनों की ताकत को मिलाना चाहते हैं। सो इस मिशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हैं कि हम मिलके ऐसा डिज़ाइन करेंगे वैसी एग्रीकल्चरल इनोवेशंस जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट दोनों डेफिशिएंसीज को पूरा करेंगी और उसका हम हेल्थ पे असर भी दिखा पाएंगे। इसी के साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एग्रीकल्चर वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी के लिए भी इस मिशन के तहत बहुत सारी रिसर्च की जाएगी कि किस प्रकार से हमारे जो फार्मर हैं, किसान हैं, काम करने वाले लोग हैं खेतों में, उन लोगों के लिए कि उनको किस तरह से उनकी हेल्थ को बेहतर किया जा सके और उनको किसी भी प्रकार के ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स ना हो।
2: ICAR के महानिदेशक एवं डेयर सचिव डॉक्टर मांगीलाल जाट ने अपने वक्तव्य में कहा,
1: आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। उस ऐतिहासिक दिन के पीछे पहला तो है कि आज ये सेहत का प्रोग्राम नेशनल टेक्नोलॉजी डे के दिन लॉन्च हो रहा है। दूसरा, हम कहते हैं कि फूड इज मेडिसिन, और मुझे लगता है उसके कॉन्टेक्स्ट में आज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट, यदि चार मंत्रालयों को इकट्ठा करते हैं तो छूटता कुछ भी नहीं। हेल्थ और एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में, रूरल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं और सारे के सारे हेल्थ और वेलबींग को इम्पैक्ट करते हैं। मुझे लगता है कि उस दिशा में एक नई पहल है। ग्लोबली यदि हम देखते हैं, हेल्थ का खाने का डायरेक्ट इम्पैक्ट है, और जिस तरीके से हम आगे जा रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में यदि हमने हमारा फाउंडेशन ठीक नहीं रखा, खाना ठीक नहीं रखा, तो मुझे लगता है प्रॉब्लम है। और खाना ठीक रखने के लिए मुझे लगता है सॉइल हेल्थ से शुरुआत होती है और सॉइल से प्लांट, एनिमल, ह्यूमन एनवायरनमेंट पे जाता है। ICAR ने काफ़ी पहले से कम 203 बायोफोर्टिफाइड क्रॉप वेराइटीज़, जिसमें सीरियल्स भी हैं, लेग्यूम्स भी हैं, ऑयल सीड्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, रिलीज किए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 बार। और उनका यदि इफेक्ट देखते हैं तो वो जा तो रही है, बढ़ भी रहा है एरिया, लेकिन हमारे पास में क्लिनिकल ट्रायल्स के एविडेंस नहीं है। और मुझे लगता है एक नेचुरल कनेक्ट है ICAR और ICMR का, कि दोनों का काम कॉम्प्लीमेंटिंग है। उसके कॉन्टेक्स्ट में सेहत मिशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, सर आप डेली बेसिस पे उस पर फोकस करते हैं, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, हम छोटे किसान, मीडियम किसान, उनकी बात करते हैं उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए, रेजिलियंस के लिए, लेकिन लगता है कि वो उसके आगे है। उसके अलावा जो वन हेल्थ का प्रोग्राम, वन हेल्थ में हम जूनोटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ सोयल, प्लांट, ये छूटा हुआ है, तो इसके साथ मिलके उसकी कनेक्टिविटी पे भी काफ़ी फोकस किया जाएगा। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आई थिंक धीरे धीरे हम लोकल फूड सिस्टम को भूल गए, और लोकल फूड सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं जिनको हम आजकल फॉरगॉटन क्रॉप कहने लगे हैं, उनको वापस लाने की ज़रूरत है। और यदि उनको लाने के लिए, यदि उनके हेल्थ बेनिफिट को ठीक से मॉनिटर कर पाएंगे तो उनको मेन स्ट्रीम किया जाता है, क्योंकि किसान को इनकम भी चाहिए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो आज का मिशन है, ये काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग है, और मुझे लगता है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलके ये एक नई शुरुआत, और वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हाई लेवल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है।
2: इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी को संबोधित करते हुए कहा,
5: आज का दिन निश्चित रूप से ऐतिहासिक भी है और अभूतपूर्व भी है। और हम देखते हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए अन्न चाहिए, फल चाहिए, सब्जियां चाहिए, लेकिन कैसी चाहिए। हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा है, भोजन कैसा करो, हितभुख, मितभुख, ऋतुभुख। हितभुख मतलब जो शरीर के लिए हितकारी है वही खाओ, मितभुख है मतलब जितनी भूख लगी उससे थोड़ा कम खाओ, और ऋतुभुख का मतलब है ऋतु

0: में जो फल होते हैं, जो चीजें होती है, जो अनाज होता है, वो सदैव शरीर के लिए ज्यादा उपयोगी होता है। हर क्षेत्र में हमारे ऋषियों ने कई तरह के रिसर्च किए, शोध किए, उनके अनुभव थे, उसके आधार पर कई चीजें बनाई गई। उनमें से फास्ट भी एक है, व्रत रखो। लेकिन हम अगर अपने उन प्राचीन सिद्धांतों को भी ध्यान में रखें तो शरीर निश्चित तौर पर स्वस्थ रह सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम क्या खाएं, और पहले भी जरूरी है कि क्या उगाएं। और इसलिए आज का दिन मैं इसलिए ऐतिहासिक और अद्भुत कह रहा हूं, ICAR और ICMR इन दोनों ने हाथ मिलाए हैं और संकल्प लिया कि कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ चलेंगे। ICAR ने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस के मानेंगे ही नहीं कि इसमें जिंक है कि आयरन है। इसलिए अगर हम साइंटिफिक रूप से ये सिद्ध करते हैं कि सचमुच में ये ऐसी वैरायटी है, उसका फायदा ये है, तो निश्चित तौर पर उसका बहुत लाभ होगा, एक बात। और दूसरी बात, जो पुरानी परंपरागत फसलें, कोदो, कुटकी, ज्वार, रागी, बाजरा, प्रधानमंत्री जी ने जो पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया और उस दिशा में ले गए मिलेट मिशन करके, अलग वर्ष भी बनाया गया, ICAR उस पर काफी काम भी कर रहा है। अब हमारी परंपरागत वैरायटी जरूरी है, ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम क्या खाएं और जो खाएं वही उगाएं, उसके लिए ये सेहत मिशन निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगा। और इसमें जो पांचों स्तंभ बताए गए, बायोफोर्टिफाइड उत्पाद, दूसरा है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मैं बहुत जोर देता रहा हूं, तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे किसान का स्वास्थ्य, हमारे मजदूर का स्वास्थ्य, और फिर एक है ऐसे रोग, डायबिटीज है तो क्या खाओ। अगर हम ये एजुकेट कर पाए कि कौन सी बीमारी है, तो बीमारी हो ही नहीं, और हो भी गई तो क्या खाएं और क्या ना खाएं, उससे नियंत्रित किया जा सकता है, और वन हेल्थ, उसकी निगरानी और तैयारी, ये इसका पांच स्तंभ है। और इसलिए रिसर्च में हमको इन सब पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा और एक निश्चित समय सीमा में परिणाम आए, नंबर एक, और वो हम ढंग से किसानों और जनता तक पहुंचा भी पाए। और हमारा कृषि मंत्रालय, विशेषकर ICAR, दोनों ने ये संकल्प लिया है, दुनिया के भी और विशेषकर भारत के, हमारी जनता के सेहत को ठीक करना है, स्वास्थ्य को ठीक करना है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने अपने संबोधन में कहा,
2: मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि नीति निर्धारकों के माध्यम से किस तरीके से परिवर्तन आ सकता है या आता है, उस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये नीतियों के परिवर्तन के कारण से हम इस परिस्थिति में आ सके हैं, और सेहत मैं मानता हूं कि एक तरीके से इस सोच का परिणाम है कि हम रिएक्ट नहीं करते, हम प्रोएक्टिव होकर के सोचते हैं और सोच करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आइसोलेशन में, साइलोज में बहुत लंबे समय से ICAR भी काम कर रहा था, और आइसोलेशन में ही बहुत लंबे समय तक ICMR भी सोच रहा होगा, लेकिन दोनों का मिलन, एक दूसरे को सबल बनाना और साइंटिफिक एविडेंस के साथ आगे बढ़ना, यह इसमें हो सका है। इसके लिए मैं विशेष करके ICMR और ICAR को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी सोच में पिछले 10 वर्षों में कॉन्फिडेंस भी काफ़ी डेवलप हुआ है। पहले हम इम्पोर्टेड सॉल्यूशंस के तरफ बहुत ध्यान रखते थे, यानी कुछ विदेश में हुआ तो उसको हम अपने यहाँ कॉपी कर लें, लेकिन अब हमारे यहाँ इनोवेशंस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, और होम मेड इनोवेशंस, होम बॉर्न इनोवेशंस, हमारे इस धरती पर किए गए प्रमाणों के साथ जो उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, यह भी बहुत अच्छी पहल है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो सिस्टम्स थे वो भी फ्रैगमेंटेड थे, जैसा मैंने कहा कि हर कोई अकेले अकेले में सोचता था, आज वो इंटीग्रेटेड है, और इंटीग्रेटेड होने के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन, और टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन के माध्यम से वो उनको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे परिणाम आने वाले हैं, इसको हमको समझने की ज़रूरत है। हम लोगों ने

0: ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफ़ी स्ट्रेंथन किया है, उस सिस्टम्स को भी आगे बढ़ाया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ केयर को, अफोर्डेबल भी हो और हाई क्वालिटी का भी हो। और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिनम ऑफ केयर पर। यानी सबसे पहली बात है कि हम प्रिवेंट करें, प्रिवेंशन के साथ साथ अर्ली डिटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, और कॉन्टिनम ऑफ केयर उसके लिए एक आवश्यक पहलू है जिसको हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये जो हमारी हेल्थ रिसर्च की ICMR जो काम कर रहा है वह निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ ICMR का एक बहुत बड़ा वाइटल रोल भी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है कि वो नर्चरिंग करे इनोवेशन के इकोसिस्टम को, उसको नर्चर करने की ज़रूरत है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ICMR बखूबी इस काम को कर रहा है। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे क्रिटिकल हेल्थ चैलेंजेस क्या हैं, और उसके लिए ICMR फंडिंग के लिए भी तैयार है। मैंने ICMR को भी कहा है कि फंड इज़ नॉट द प्रॉब्लम, फाइनेंस इज़ नॉट द प्रॉब्लम। ये कई बार गलतफहमी लोगों को पैदा हो जाती है कि फंड और फाइनेंस इज़ द प्रॉब्लम। नो, फंड एंड फाइनेंस इज़ नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज़ दैट वी हैव टू शो द आउटकम्स, एंड आउटकम रिलेटेड फंडिंग इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसके लिए मैं आप सबसे कहूँगा कि हम फंडिंग के लिए भी तैयार हैं और वैलिडेटिंग करने के लिए भी ICMR तैयार है। और हमें जो बनाना है वो लो कॉस्ट हो, हाई क्वालिटी हो, इंडिजिनस हो, डायग्नोस्टिक में भी, थेरोपेटिक्स में भी और वैक्सीन्स में भी। तो इस तरीके से हम इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।
1: और इसी के साथ ICAR और ICMR के संयुक्त राष्ट्रीय मिशन सेहत पर आधारित यह रेडियो रिपोर्ट अब सम्पन्न होती है। प्रस्तुति सहयोग दिनेश और विशाल, प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिवनंदन लाल।
2: तो श्रोता सुन रहे थे दिनांक 11 मई 2026 को पूसा नई दिल्ली में आयोजित ICAR और ICMR द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए राष्ट्रीय मिशन सेहत के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम पर ये आधारित रेडियो रिपोर्ट।
3: बिल्कुल शीतल बहन, ये भारत सरकार के कृषि और स्वास्थ्य को जोड़ने के लिए सेहत यानी साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन की शुरुआत थी कि ये ICAR और ICMR की एक संयुक्त पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य पौष्टिक फसलों को बढ़ावा देना और खेती से सीधे मानव स्वास्थ्य और जो पोषण होता है ना, जो पोषण में सुधार कैसे होता है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है।
2: जी बिल्कुल श्रोताओं, जैसे कि इसमें बात की गई है कि पौष्टिक सुधार, फसलों के जो सेहत के बारे में उसकी सुधार की बात हो रही है कि जहाँ भी फसलें होंगी, खेती की जाएगी, उसमें सुधार होगा, उसमें पोषक तत्व होंगे, क्योंकि उसी को यकीनन मार्केट में जाके हम लोग खाएंगे। तो जब वो स्वस्थ होंगी तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, अगर वो ही स्वस्थ नहीं होंगी तो हम भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे।
3: बिल्कुल शीतल बहन, बहुत अच्छी जानकारी थी। और इसका लक्ष्य केवल खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि ऐसी पौष्टिक फसलों को बढ़ावा देना है जो छिपी हुई भूख यानी हिडन हंगर और कुपोषण जैसी समस्याओं को दूर कर सके।
2: हाँ, क्योंकि कुसुम बहन क्या हो रहा है आज की डेट में, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हर घर की समस्या है कि खाना नहीं खाते, उनको भूख नहीं लगती है। हर माँ की ये शिकायत रहती है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, खाना नहीं खाता, उसे भूख नहीं लगती, डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ लेती हैं कि इसे भूख लगने की दवाई दे दो, पर कारण यही है कि जो खा रहे हैं उन्हें सही नहीं मिल रहा है और जो मिल रहा है वो भी स्वस्थ नहीं है।
3: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी थी शीतल बहन। अब थोड़ा सा हम मनोरंजन करवा देते हैं और सुनवाते हैं राजेंद्र जाटव से ये रागनी।

0: तो श्रोता सुन रहे थे राजेंद्र जाटव की आवाज में ये रागिनी।
1: तो शीतल बहन, हम समय समय पर हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनको योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। जो भी सरकार योजनाएं लेकर आती है उनमें से ही एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। भारत सरकार द्वारा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और बिना गारंटी के सस्ता लोन प्रदान करने के लिए चलाई जा रही एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है।
0: जी बिल्कुल, सरकार का उद्देश्य ही है कि जो हमारे युवा हैं देश में, जो लोग हैं कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ हुनर पाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो सरकार की तरफ से कुछ क्लासेस चलाई जाती हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। महिलाओं के लिए अलग होती है, लड़कियों के लिए अलग होती है, जो घर में थोड़े से बुजुर्ग हैं उनके लिए भी, जो काम घर में रह के कर सकते हैं उसके लिए भी सरकार कुछ ऐसी ट्रेनिंग देती है कि वो घर में रह के इतना कमा सके कि वो अपनी खर्चा उठा सकें और किसी के ऊपर वो निर्भर ना रहें। तो बहुत सारी है, जैसे महिलाओं के लिए अचार बनाना हो गया, घर में साज सजावट का सामान हो गया, लकड़ी से कुछ बनाना है, या फिर महिलाएं पार्लर का कोर्स करती हैं, बुनाई का है, कढ़ाई का है, जो युवक है वो मोबाइल का करना चाहते हैं, या एसी जैसे आप देख रहे हैं, टेक्निकल भी बहुत सारी चीज़ों में आप जा सकते हैं। फिर इसके बाद सरकार आपको 3 महीने 5 महीने जो भी इसकी ट्रेनिंग होती है वो दे के आपसे एक एग्ज़ाम, जो परीक्षा ली जाती है कि आपने कितना सीखा, उसके बाद आपको एक सस्ते लोन पे आपको बिजनेस करने के लिए, रोजगार करने के लिए आपको सरकार लोन भी देती है और पैसा देती है।
1: बिल्कुल शीतल बहन, जो भी हमारे में हुनर है, जो भी कौशल है उसको बढ़ावा देते हैं, वजीफा देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और ऋण इत्यादि देकर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं।
0: यही है आत्मनिर्भर भारत की पहल, क्योंकि जब इंसान आत्मनिर्भर बनेगा तो हमारा भारत भी आत्मनिर्भर बनेगा।
1: जी, तो आइए एक और हम रागनी सुनवाते हैं राजेंद्र जाटव की आवाज में, सुनते हैं।

0: इसी के साथ आज का ग्राम संसार यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को हमारी राम राम।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक थे शिव नंदन लाल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के

0: प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं को जिम्मेदार राष्ट्र बताने वाले देशों को इस बात पर विचार करना होगा कि आतंकवादी ढांचे की रक्षा के प्रयासों का समर्थन उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि ये संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान संधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को हमारी राम राम, राम।
1: तो श्रोताओं, खेती की बात चल रही है, कृषि की बात चल रही है, तो आपके लिए एक बातचीत हम सुनवाएंगे खरीफ फसलों के लिए मिट्टी की जांच का सही समय। अब जैसे कि खरीफ फसलें हुई, जैसे धान, मक्का, कपास, इनकी जो मिट्टी की जांच का सही समय है वो यही है, मई जून। तो वो कैसे की जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए, क्या सावधानियां बरती जाएं, इन सब से संबंधित एक बातचीत आपको सुनवाते हैं खरीफ फसलों के लिए मिट्टी की जांच का सही समय। और इसमें हिस्सा ले रहे हैं विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वेद प्रकाश, आप मृदा वैज्ञानिक हैं मुजफ्फरनगर से।
2: किसान भाई नमस्कार। जिस तरीके से आप अपने स्वास्थ्य की समय समय पर जांच कराते रहते हैं, उसी तरीके से हमें चाहिए कि हम अपनी मिट्टी, अपने खेत का भी परीक्षण समय समय पर कराते रहें, क्योंकि उसके स्वास्थ्य की जांच कराएंगे तभी आप अपने खेत से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और जब हम बात करते हैं कि मिट्टी जांच की, तो उसका सही समय क्या है, उसका क्या तरीका है, किस तरीके से उसका सैंपल लेना है और कहाँ जांच करानी है, इस पर विस्तार से जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर वेद प्रकाश जी को, जो कि वैज्ञानिक हैं गन्ना अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरनगर में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो मिट्टी की जांच कराते हैं उसका क्या महत्व है, किस लिए करानी चाहिए?
3: किसान भाइयों, मिट्टी की जांच के लिए जो महत्व है, इसमें हमें अपने खेत में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और हमारे खेत में किस अवस्था में वो हैं और कितनी हम मात्रा में डालें जिससे हमारी लागत कम हो और उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, तो इसलिए मिट्टी की जाँच कराते हैं। मिट्टी की जाँच का जो सही समय है वो अप्रैल से लेके और जून तक, यानी जब हमारी गेहूं की फसल कट जाए उसके बाद कराना चाहिए।
2: यानी अप्रैल से जून तक, यानी ये समय जो चल रहा है मिट्टी की जांच का, सही, बिल्कुल उपयुक्त समय है। तो जो हमारे किसान भाई मिट्टी की जांच करना चाहते हैं, तो सैंपल कैसे लें, क्या तरीका है सैंपल लेने का?
3: किसान भाई, अगर अपने खेत की मिट्टी की जाँच कराना है तो सैंपल लेने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, जैसे अगर एक बीघे का खेत है या एक एकड़ का खेत है, तो कम से कम 8 या 10 स्थानों से वी आकार का एक गड्ढा खोद लेंगे और उसकी सारी मिट्टी बाहर निकाल लीजिए और एक साइड से 2 इंच मोटी परत लेके और एक गड्ढे से, जैसे 200 ग्राम मिट्टी होगी, जब हमने 10 जगह से मिट्टी ली है तो 2 किलो मिट्टी होगी। अब 2 किलो मिट्टी को उसको 4 बराबर भागों में बांट लीजिए, आमने सामने के भाग को हटा दीजिए, फिर 1 किलो मिट्टी होगी, फिर उसके बाद पुनः फिर प्रक्रिया करेंगे, अब तो विपरीत साइज की मिट्टी को फेंक देंगे, सिर्फ आपको 500 ग्राम मिट्टी कपड़े की थैली में भरकर अपने नजदीक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भिजवाते हैं।
2: डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया है कि उसमें जो गड्ढा किया और गड्ढा वी आकार का करना है,
3: जी जी,
2: तो उससे जो मिट्टी निकालते हैं, तो गड्ढा क्या एक जगह से ही सैंपल लेना है?
3: नहीं, एक जगह से नहीं, 8-10 जगह से लेना है और उसमें खास जगह होती है, जैसे अगर कोई पेड़ खड़ा है तो उस पेड़ के नीचे का नमूना नहीं लेंगे, अगर खेत कहीं ऊसर का है तो ऊसर के पैच के अलग नमूना इकट्ठा करेंगे और बाकी खेत का एक जगह नमूना इकट्ठा करेंगे, तो ये विशेष सावधानी भी रखनी है।
2: मान लीजिए जब अलग अलग से नमूना लिया, सबको एक में मिलाना है, मिलाने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा करके, जब नमूना कितना होना चाहिए?
3: 500 ग्राम।
2: 500 ग्राम
3: जी।
2: तो उसको पैक कौन सी थैली में?
3: ये जैसे कपड़े की थैली अगर सिली हो, अगर कपड़े की थैली नहीं तो एक पॉलीथीन आती है, तो पॉलीथीन का, जैसे जो टिश्यू कल्चर का पौधा नहीं होता है जिसमें हमारी 500 ग्राम मिट्टी आ जाए, तो उसमें आप रख लीजिए और रखने के बाद फिर उसमें देख लीजिए, जैसे खेत का नाम, खसरा संख्या, कौन सी फसल बोई थी और कौन सी फसल बोने जा रहे हैं, तो ये 3-4 सावधानियां देना है, उस पर आधार कार्ड संख्या भी लिख देनी है।
2: तो ये सारा लिखने के बाद आप जो भी आपके पास में नज़दीक कोई भी कृषि अनुसंधान संस्थान हो या कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ से कितने दिन में रिपोर्ट आ जाती है?
3: ये लगभग 1 सप्ताह में, जैसे आपके नज़दीक कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, तो वहाँ के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ भी करा सकते हैं, हमारे पूसा इंस्टीट्यूट है तो वहाँ से भी मिट्टी की जांच हो जाती है, हमारी भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ है तो वहाँ भी मिट्टी की जांच होती है, तो वहाँ भी किसान अपना सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा लें और कम से कम 1 सप्ताह लगता है।

0: जो मुख्य पोषक तत्व की जिसकी जांच करते हैं तो उसकी, अगर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व की जांच करते हैं तो उसमें कम से कम 10 दिन लग जाते हैं।
1: अच्छा, जैसे आपने कहा है कि मुख्य पोषक तत्वों की जांच करानी है, अगर दोनों की जांच करानी हो तो डॉक्टर साहब, बहुत से जब हमारे किसान भाई सैंपल लेते हैं तो उसमें खुरपा है, फावड़े है, उसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या सावधानी रखें, वो फावड़ा साफ हो, कहीं अगर कोई आयरन की जांच करवा रहा है, और क्योंकि फावड़ा भी लोहे का होता है, जब उससे खुदाई करते हैं खुरपे से, तो क्या उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता?
0: नहीं, उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा कहना मतलब खुरपा हो बिल्कुल साफ हो, ठीक है कि नहीं, ये नहीं कि उसमें मिट्टी लगा हुआ रात में रखा हुआ तो उसपे आयरन की वो आ जाता है, तो हमारा कहना उसको पहले या तो धुल दो, धुलने के बाद उसको साफ पोंछ दो कपड़े से, उसके बाद फिर मिट्टी से लो, या जैसे फावड़ा है फावड़े को भी साफ कर लीजिए, क्योंकि फावड़ा किसी दूसरे खेत में चलाया गया तो वहां की मिट्टी का अंश आ गया और दूसरी मिट्टी में जब कलेक्ट किया तो दोनों का कंट्रोवर्सी हो जाती है, इसलिए हमेशा साफ सुथरा उपकरण होना चाहिए, चाहे खुरपी से ले लो, चाहे फावड़े से ले लो, या सबसे बढ़िया अपने घर में लोहे की पाइप फुकनी जिसे कहते हैं चूल्हा जलाने वाली, वो तो साफ ही होती है। आप अगर खेत में जा रहे हैं, खेत आपकी जुताई हो चुकी है, तो एक फुकनी ले लीजिए, एक छोटी हथौड़ी ले लीजिए टाइप की, तो आप कम से कम 10-12 जगह से फुकनी को भी ठोंक दीजिए, और फुकनी पे उसमें निशान बांध दीजिए कि 6 इंच का निशान लगा दीजिए, और उसको भी बहुत अच्छे से तरीका लिया जा सकता है, उसमें ऊपर से नीचे तक की जितनी हॉरिजेंटल होती है ABCD सबका आ जाता है, तो चाहे आप फुकनी से ले लीजिए या खुरपी से ले लीजिए, ये लेने का समझो तरीका है।
1: अच्छा, जब जो सूक्ष्म पोषक तत्व उनकी जांच कराते हैं और या मुख्य पोषक सबकी इकट्ठी जांच कराते हैं, तो क्या उस पे सैंपल पे लिखना होता है कि ये चीजों की जांच कराएं?
0: हाँ, सैंपल लिखना, क्योंकि उसका शुल्क जैसे कहीं कहीं तो निःशुल्क होता है, जैसे भारत सरकार है तो वहाँ निःशुल्क भी करा लेती है, कुछ राज्य स्टेट जो हैं वहाँ कुछ शुल्क ले लेते हैं, आपके पते की पर्ची पे लिखेंगे कि हमें मुख्य पोषक तत्व की जांच कराना आया है, मुझे दोनों जांच करवानी है, तो दोनों जांच करानी होगी भी दोनों का सोल हेल्थ कार्ड बन जाएगा, आप जब तक अंकित नहीं करेंगे तब तक मेजर ही जहां जांच होती तो मेजर की जांच कर देंगे।
1: तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसमें जो सूचना लिखी जाती है उसमें ये भी लिखी जाती है कि आपने उससे पहले कौन सी फसल ली और आप कौन सी फसल लेना चाहते हैं,
0: जी जी,
1: तो उसके अनुसार पोषक तत्वों की भी जांच की जाती
0: जी
1: है।
0: जी जी,
1: तो डॉक्टर साहब जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है तो इसकी क्या भूमिका रहती है इसमें?
0: मृदा स्वास्थ्य कार्ड की ये भूमिका रहती है, जैसे हमारा आपका आधार कार्ड है
1: जी,
0: तो आधार कार्ड जैसे कहीं खाता खुलवाते उसमें लगा देते हैं, अब हमारी जो सरकारें हैं वो सोयल हेल्थ कार्ड इसलिए मस्ट कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने फार्म रजिस्ट्री करा दी किसानों की, तो फार्म रजिस्ट्री का एक रजिस्ट्रेशन हो गया, एक सोयल हेल्थ कार्ड हो गया, तो सोयल हेल्थ कार्ड के आधार पे हमें उर्वरक को निर्धारित करेंगे कि इतनी मात्रा हमें यूरिया की देनी है, इतनी हमें DAP की देनी है, इतनी हमें सिंगल सुपर फास्फेट देनी है, या हमें पोटास की मात्रा देनी। पहले अंधाधुंध किसान ले लेते थे, लेकिन अब सरकार ने सोयल हेल्थ कार्ड में आपकी जमीन में कौन सी तत्व की कमी है तो वही खाद आपको मिलेगी।
1: अच्छा, सोयल हेल्थ कार्ड जैसे कुछ लोगों के पहले बने उनमें तो केवल आवश्यक पोषक तत्वों का छुए थे, अब क्या उनको अपडेट किया गया है?
0: हाँ, उनको अपडेट करा, जैसे पहले आप आधार कार्ड में किसी की जन्मतिथि की टूटी पाई गई, किसी की डेट तो अपडेट हो जाता है, उसी तरीके से आप दोबारा सैंपल लेंगे, और सैंपल लेने के बाद जो अपना पुराना जो सोयल हेल्थ कार्ड है वो वहाँ उस इंस्टीट्यूशन में ले जाके, तो अब दोबारा जब नया बनेगा उसमें मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व तो दोनों का सोयल हेल्थ कार्ड बन जाते हैं।
1: जैसे सोयल हेल्थ कार्ड तो बना दिया गया और एक किसान को दे दिया गया, मान लीजिए वो किसान अनपढ़ है, तो वो कैसे समझेगा कि हमारे खेत में किस पोषक तत्व की कमी है और कितना हमें डालना है?
0: उसमें जब सोयल हेल्थ कार्ड बना होगा उसमें 2 पेज का होगा, एक तरफ तो वो किसानों का जो मिट्टी की जांच का क्या है, जैसे नाइट्रोजन कितने निम्न में है या मीडियम में या हाई में है, दूसरी तरफ उसकी वैज्ञानिक संस्तुति कि अगर निम्न है तो हमें इतना नाइट्रोजन देना है, मध्यम है तो हमें इतना नाइट्रोजन देना, उच्च है तो हमें ये तरीके देना, तो उसकी सिफारिश वैज्ञानिक संस्तुति उसी सोयल हेल्थ कार्ड में भी दी जाती है, एक तरफ उसका रिजल्ट एक तरफ उसका सुझाव
1: तो दिया गया। हाँ, लेकिन मेन चीज ये है कि किसान फसल क्या लगा रहा है उसके अनुसार सुझाव कैसे निर्धारित किया?
0: तो उसमें जब आप पते की पर्ची पे लिख देंगे, जैसे मैंने गेहूं की फसल काटी है, अब मुझे धान की रुपाई करनी है, तो गेहूं के लिए रिकमेंडेशन NPK का और इधर आपके धान का रिकमेंडेशन NPK, तो यानी सबका अलग अलग फसल आपको दे, सिर्फ आपको शुल्क एक ही देना पड़ेगा, तो क्योंकि सबकी मात्रा अलग अलग होती है, जैसे अभी धान की बात करते हैं तो धान में हमें 120 kg नाइट्रोजन जरूरत पड़ती है, 60 kg फास्फोरस जरूरत पड़ती है, 40 kg पोटास चलती है 1 हेक्टेयर में, तो हमारा कहना सबका अलग है, अगर सिंगल सुपर फास्फेट है तो उसकी अलग मात्रा जरूरत पड़ती है।
1: अगर डॉक्टर साहब किसी किसान ने अपने खेत

0: है मूंग,
1: उड़द है मूंग है, तो इनकी जो मात्रा है वो आप माइनस करके बाकी आपको रिकमेंडेशन दी जाएगी। क्योंकि सारी ब्यौरा जब तक देखो डॉक्टर के पास अगर पेशेंट जाता है वो सारी चीज बताएगा तभी वो खुल के दवा लिखेगा, नहीं तो नॉर्मल वो दवा लिख देगा। तो ये सारी किसान को देनी पड़ेगी अपनी सूचना कि हमारे खेत में ये चीज है।
0: अच्छा, स्वास्थ्य मृदा की जांच के लिए और जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो उस कितने दिन तक वैलिड रहता है?
1: ये 3 साल तक वैलिड रहता है, यानी 3 साल बाद आपका सोल टेक्चर बदलता है, 3 साल बाद पुनः आपको जांच की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो मुख्य पोषक तत्व की जांच कराएं चाहे सूक्ष्म पोषक तत्व की जाँच, 3 साल के बाद तुरंत आप चेंज कर लेंगे।
0: कि जब कोई भी किसान फसल चक्र अपनाता है तो उसमें क्या है कि मान लीजिए पहले उसने उथली जड़ वाली कोई फसल लगाई तो उसमें ऊपर की मृदा से पोषक तत्व लिए गए, अगर वो अगली फसल लेता है और वो गहरी जड़ वाली लेता है तो नीचे से पोषक तत्व ले लेता है तो इस फसल के उत्पादन पे फर्क नहीं पड़ता है, और लेकिन पोषक तत्व नीचे से भी लिए गए ऊपर से भी लिए, कर्षण क्रियाएं एक में केवल ऊपर से हुई दूसरे में गहरी हो गई। तो उसी तरीके से अगर किसी किसान ने मान लीजिए अदलहनी फसलों का प्रयोग किया इसको उसने लगा लिया और दोबारा अगर वो लगाता है उसमें कोई दलहनी फसल लगा ले जिससे उसकी मृदा की जो उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहती
1: है, बनी रहे, ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन भी रहे।
0: जी ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन रहता है क्योंकि जो दलहनी फसलें होती हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को इकट्ठा करती हैं, तो इसके लिए जरूरी रहता है कि आप फसल चक्र अपनाएं।
1: इसके लिए भी रहता है, लेकिन मेन ये चीज है कि जो गहरी जुताई की बात करें, जब किसान 4 जुताई करता है उसमें 1 जरूरी जुताई करता है जिससे मिट्टी नीचे की ऊपर हो जाती, ऊपर की नीचे हो जाती, हमेशा वो कल्टीवेटर नहीं चलाएगा, अगर 2 हैरो भी मारे हैं फिर उसके बाद 2 कल्टीवेटर भी मारेगा तब फसल की बुवाई करेगा।
0: तो डॉक्टर साहब, हमारे काफी किसानों से हमने डिस्कस किया तो किसान भाई कहते हैं कि हमें मिट्टी को पलटना नहीं चाहिए, ज्यादा गहरी मिट्टी को, उसका क्या कारण है?
1: उसका ये कारण आपने देखा है कि जब से हमारा रोटावेटर आया
0: जी,
1: रोटावेटर 4 इंच तो जमीन ऊपर से हो गई भुरभुरी, नीचे जब आप 7 इंच खोदो तो एक कठोर लेयर होगी कि नहीं? जब हम प्लाउ से उसकी जुताई करवाएंगे तभी तो वो उसकी टूटेगी परत, जब टूटेगी क्योंकि हमारी जड़ें तो नीचे 7 इंच तक जाती हैं
0: जी,
1: तो इसलिए कहा गया है कि प्लाउ से भी एक बार जुताई जरूर कर दी जाए जिससे हमारा पोषक तत्व कम से कम हो जाए। जब से मिट्टी का सेहत किस लिए खराब हुई, जब से हमारा रोटावेटर आया, और रोटावेटर क्या हुआ, आज कोई फसल कटी है सवेरे रोटावेटर चला ऊपर 4 इंच से वो भुरभुरी कर दी, लेकिन नीचे वही रह गया सारा,
0: नीचे और ठोस हो गया,
1: वो नीचे और ठोस हो गया, ऐसे ही वो साली बंजर पूरी होती चली जा रही है जमीन। तो इसीलिए हमारी उत्पादकता पे बहुत असर पड़ा है, चाहे आप गन्ने का भी अभी देख लो, हमेशा समझो 25% हमारा उत्पादन कम हुआ है, गेहूं पे भी हमारा 12-16% समझो उत्पादन कम हुआ। तो हमारा उत्पादन घटने का तो यही तो कारण है, कर्षण क्रियाएं सही समय पे नहीं हो पानी।
0: तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं उनके लिए मृदा जांच के बारे में थोड़ा सा आप कुछ संदेश देना चाहेंगे?
1: मृदा जांच के लिए किसान को मैं संदेश ये दूंगा कि कोई भी फसल बोएं उसके 1 महीने पूर्व ही अपनी मिट्टी की जांच करा लें, वो कहीं से भी आप जांच करा लें, किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र से, किसी सरकारी संस्था से, और जांच के आधार पर फर्टिलाइजर डालें, निश्चित रूप से हमारी लागत कम आएगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। 3 साल में ही जांच करानी होती किसान भाई, जैसे हम अपनी सेहत का भी ध्यान रखते हैं उसे धरती माँ का भी ध्यान रखना हमें पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल, अगर आप खेतों से अपना अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो धरती माँ का ध्यान रखना आपका कर्तव्य बनता है, मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और निश्चित तौर पे हमारे किसान भाई कोई भी फसल लगाएंगे तो पहले मिट्टी की जांच करा के उसके अनुसार ही उसमें पोषक तत्वों का प्रयोग करेंगे जिससे उनकी लागत में कमी आएगी और उत्पादन में वृद्धि होगी। आपका पुनः धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे खरीफ फसलों के लिए मिट्टी की जांच का सही समय, विशेषज्ञ थे डॉक्टर वेद प्रकाश और बातचीत कर रहे थे शिव नंदन लाल। तो शीतल बहन, बहुत ही अच्छी जानकारी थी कि खेती की तैयारी करने के लिए सही समय यही है मिट्टी की जांच करने का, और इससे आवश्यक उर्वरकों और पोषक तत्वों की मात्रा का सटीक अनुमान हमें मिल जाता है।
3: जी बिल्कुल, और जिन जिन सावधानियों की बात की है कि कहाँ से मिट्टी लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, और किस जो घर के सिला हुआ जो वो होती है पॉकेट की तरह होती है उसमें रखनी चाहिए, इन खास बातों का जरूर ध्यान रखें।
2: तो अब हम मनोरंजन कराते हैं और सुनवाते हैं विकल गुजर को
3: रागनी।
4: और मेरा दम ले

0: अभी आप सुन रहे थे विकल गुजर से ये रागनी। और शीतल बहन, जैसे कि हम बात कर रहे थे योजनाओं की, तो एक एक और योजना है स्टार्टअप इंडिया योजना। भारत सरकार की एक बहुत ही प्रमुख योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में नए व्यवसायों, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है, ताकि आर्थिक विकास को गति मिले और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। इस योजना के तहत योग्य व्यवसायों को सरकार द्वारा कई प्रकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, और प्रमुख लाभ बहुत सारे हैं, जैसे कर में छूट, इजी फंडिंग मतलब आसान वित्त पोषण आदि की व्यवस्था होती है।
1: और इसके लिए पात्रता वही 10 वर्ष से अधिक पुराना ना हो किसी भी कंपनी का, मतलब जो कंपनी बनी हो कम से कम 10 साल पुरानी हो, ऐसा ना हो कि नई नई बनी हो और आप उस पर उसका लाभ लेना चाहें, ऐसे नहीं मिलेगा। और जो साल का उसका टर्नओवर हो, मतलब जो उसकी कमाई हो साल की, वो निर्धारित जो सीमा है स्टार्टअप इंडिया के, इसके भीतर हो।
0: और तो यानी इन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। इस योजना के तहत पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता जरूरी है।
1: हाँ, इससे बेरोजगारी कम होती है, क्योंकि सरकार ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कमाएंगे तो बेरोजगारी कम होगी, और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहर के लोग इसका लाभ ले सकते हैं, गांव में भी आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। और आजकल आप देख भी रहे हैं कि छोटे छोटे काम करके, पढ़े लिखे लोग छोटा छोटा काम करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और दूसरों को भी पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं।
0: बिल्कुल, तो इस तरह से आप स्टार्टअप कोई भी योजना शुरू कर सकते हैं। ऋण की व्यवस्था बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है, और ये जो तमाम जो योजनाएं होती हैं, इन पर आपको विस्तार से जानकारी हम इसलिए देते रहते हैं ताकि आप समय समय पर इन जानकारियों से लाभ उठा सकें। जी, और हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि आपको हमारे जो ये कार्यक्रम है कैसे लग रहे हैं। अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश, केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। तो हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम कृषि जगत यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।
0: सभी किसान भाई बहनों को हमारी राम राम।
1: और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर, और कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, गज़लों की इस महफिल में आपका स्वागत है और आज के कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं हम पंकज उधास साहब की इस गज़ल के संग।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। पेपर लीक के आरोपों के कारण नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। दिल्ली सरकार ने नर्सिंग इंटर्न्स के स्टाइपेंड में 27 गुना बढ़ोतरी की। स्टाइपेंड अब बढ़कर 500 से 13,500 रुपए हुआ। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली में पहले मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल पुलिस थाने की घोषणा की और सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3

0: मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। एजेंसी ने कहा है कि ये फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नई दिल्ली में नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। श्री अभिषेक सिंह ने कहा कि यदि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जरा भी संदेह हो तो ऐसी स्थिति में परीक्षा रद्द करना ही उचित निर्णय है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ आज भारत की ओर देख रहे हैं। श्री प्रधान ने ये बात भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर कही। ICSSR की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ये संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
2: ICSR समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये ICSR के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली को आवश्यक बताते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक मजबूत ऋण प्रणाली विकसित करने पर बल दिया। नई दिल्ली में आज भारतीय उद्योग परिसंघ CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि छात्रों को अधिक सहायता और अवसर प्रदान करने के लिए इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप को भी ऋण ढांचे में शामिल किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने भारत की शिक्षा प्रणाली को विश्व की सबसे मजबूत शिक्षा प्रणाली बताया। उन्होंने कहा कि देश में 10 लाख सरकारी स्कूलों सहित लगभग 15 लाख स्कूल हैं। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर शिक्षा पर देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4% खर्च कर रही हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि NCERT और CBSE ने मिलकर कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है और इसे लागू भी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान प्रशिक्षण दिया जाएगा और अवकाश समाप्त होने के बाद स्कूल खुलने पर इन विषयों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि NCERT कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पाठ्य पुस्तकें भी तैयार कर रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें, हमारा भविष्य। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने नर्सिंग स्टाफ से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके सेवा भाव की सराहना भी की।
3: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि नर्सें केवल मरीजों की देखभाल नहीं

0: करती बल्कि उन्हें नया जीवन देने का भी काम करती हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की सफलता के पीछे देश के कोने कोने से आए स्वास्थ्य कर्मियों का योगदान है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने 27 साल बाद नर्सिंग इंटर्न्स के स्टाइपेंड में 27 गुना बढ़ोतरी की है। इस निर्णय के बाद स्टाइपेंड को 500 रुपए से बढ़ाकर 13,150 रुपए कर दिया गया है। इसी क्रम में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 1,388 नर्सिंग अधिकारियों और 41 पैरामेडिकल कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार स्वास्थ्य कर्मियों के बेहतर कार्य वातावरण और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज गुवाहाटी में असम की नई भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुईं। श्रीमती गुप्ता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा को बधाई दी। उन्होंने इसे सुशासन, विकास और जनसेवा की राजनीति की जीत बताया।
2: जनता का विश्वास और माँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद ही असम में हैट्रिक जो लगी है, जो ये इतनी बड़ी जीत हुई है, उसका आधार है। आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व और हेमंता दा की मेहनत असम राज्य को और तरक्की के मुकाम पर लेके जाएगी, जहाँ हर व्यक्ति के लिए सुख सुविधा संपन्नता होगी और विकसित भारत के साथ विकसित असम और अधिक तरक्की करेगा।
1: असम प्रवास के दौरान श्रीमती गुप्ता ने कामाख्या मंदिर, मां बगलामुखी और उमानंद मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु आज दिल्ली पुलिस के 9वें विशाल मादक पदार्थ निस्तारण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान लगभग 1700 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए गए, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 72 करोड़ रुपए है। मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई को सशक्त करने की दिशा में उपराज्यपाल ने दिल्ली के पहले समर्पित मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल ANTF पुलिस थाने की भी घोषणा की। इस दौरान श्री संधू ने वर्ष 2027 तक नशा मुक्त दिल्ली के लक्ष्य को फिर से दोहराया। उपराज्यपाल और दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के अध्यक्ष तरणजीत सिंह संधू ने राजधानी के द्वारका उपनगरी को अंतर्राष्ट्रीय निवेश और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने पर बल दिया है। एक बैठक में उन्होंने DDA के अधिकारियों को द्वारका के लिए व्यापक विकास योजना तैयार करने के निर्देश दिए। श्री संधू ने कहा कि द्वारका में यशोभूमि निर्माणाधीन राजनयिक क्षेत्र, अर्बन एक्सटेंशन रोड और हवाई अड्डा जैसी सुविधाएं हैं, जो इसे निवेश के लिए युक्त बनाती हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि इस तर्ज पर रोहिणी और नरेला को भी विकसित किया जाएगा। श्री संधू ने DDA को सभी हितधारकों के साथ मिलकर जल्द ही ठोस और समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा आज चौखंडी क्षेत्र में जनसुनवाई कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों की समस्याएं सुनी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने बताया कि कई मामलों का मौके पर ही अधिकारियों से बात कर समाधान किया गया, वहीं अन्य शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के विकास को लेकर लोगों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार दफ्तरों से नहीं, जनता के बीच रहकर काम करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज पूर्वी दिल्ली के जोन 1 और जोन 2 के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान श्री सूद ने शिक्षा व्यवस्था, स्कूल का बुनियादी ढांचा, सुरक्षा और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल स्तर पर आने वाली चुनौतियों को समझना तथा शिक्षकों और स्कूल प्रशासन के सुझाव प्राप्त करना है। इस संबंध में श्री सूद ने कक्षाओं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल सुविधाओं, स्वच्छ पेयजल, शौचालयों तथा डिजिटल शिक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ये संवाद कार्यक्रम आगामी 11 दिनों तक लगातार आयोजित किया जाएगा। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज नजफगढ़ क्षेत्र में निर्माणाधीन कोयला बायोगैस संयंत्र का निरीक्षण किया और साथ ही अधिकारियों को परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र जुलाई तक तैयार हो जाएगा। श्री वाही ने कहा कि इस संयंत्र के तैयार हो जाने से क्षेत्र में लोगों को प्रदूषण से राहत मिलेगी और यमुना नदी में गंदगी जाने पर रोक लगेगी। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज मॉनसून से पहले जलभराव रोकने की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने भारती नगर, गोल्फ लिंक, तुगलक

0: लेन और पंडारा रोड समेत कई क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। श्री चहल के अनुसार परिषद ने पहले चरण में 31 मार्च तक शत प्रतिशत डीसिल्टिंग कार्य पूरा कर लिया है। दूसरा चरण अगले महीने की 15 तारीख तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति न्यायालयों में अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करेगी। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स वर्ष 1956 से देश के चिकित्सा नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एम्स के 51वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा को किफायती बनाया है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख ओपीडी के साथ संस्थान ने अद्वितीय गुणवत्ता के साथ रोगी देखभाल का मानक स्थापित किया है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि एम्स नई दिल्ली एक संस्थान के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र स्थापित ब्रांड भी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिशत से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए ये कहा। उन्होंने कहा कि कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
1: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: राजधानी में आज दिन भर मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल बादल छाए रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेपर लीक के आरोपों के कारण नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। दिल्ली सरकार ने नर्सिंग इंटर्न्स के स्टाइपेंड में 27 गुना बढ़ोतरी की, अब 500 से बढ़कर 13,500 रुपए स्टाइपेंड हुआ। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली में पहले मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल पुलिस थाने की घोषणा की और सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

हेलो, सलाम, नमस्ते। फिल्म संगीत से सजी गीत मालिका की रोलर कोस्टर राइड लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ मैं, योर्स वेरी ओन दीप्ति। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ कुछ बातें और कुछ कुछ खास नगमे। तो क्या कहते हैं, करें अपनी रोलर कोस्टर राइड को किक स्टार्ट विद अ सिंपल कप ऑफ कॉफ़ी।

पीने की हो तो वही कॉफी बन जाती है एकदम खास। और फिर दिल धीरे से कह उठता है कि कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। दो एहसास, दो गाने, लेकिन फीलिंग एक ही, प्यार की वो पहली हल्की सी आहट जो बिना बताए दिल में जगह बना ले। कुछ बातें, कुछ मुस्कुराहटें और कुछ अनकहे एहसास जो प्यार को बिना बोले भी महसूस करा दें। तो करें महसूस।

भाई कुछ तो हुआ है, वरना ये दिल जो है ये यूं बेवजह किसी की बातों पर हंसना नहीं सीखता। और हाल ये है कि थोड़ी सी शरारत, थोड़ा सा पागलपन और इन दोनों के बीच में चल रही है मोहब्बत की बहुत खूबसूरत सी सेटिंग। कभी नजरें चुराना, कभी जानबूझकर तंग करना और फिर दिल का धीरे से वही नाम गुनगुनाना। लगता है इश्क ऑन एयर हो चुका है।

और तेरी बातों का असर कुछ ऐसा है कि अब दिल हर दुआ में बस तेरा ही नाम मांगता है। और फिर चुपके चुपके से ये सवाल भी आ ही जाता है कि तेरे काबिल हूँ भी या नहीं। लेकिन सच कहे ना तो तेरा साथ होने का ख्याल ही दिल को बड़ा खूबसूरत सा नशा दे जाता है।

0: अभिषेक सिंह ने बताया कि एनटीए तलबा के लिए दोबारा इम्तिहान मुनाकिद करेगी और ये मुनसिफाना तरीके से मुनाकिद किया जाएगा और दोबारा इम्तिहान के लिए कोई इजाफी फीस नहीं ली जाएगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। हमने एनटीए के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए यह भी निर्णय लिया कि हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे और हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे।
0: इससे कबल आज दिन में एनटीए ने इस माह की 3 तारीख को मुनाकिद किए गए नीट यूजी 2026 इम्तिहान को मंसूख करने का फैसला किया था। इस मामले में राजस्थान पुलिस की खसूसी कार्रवाइयों से मुतालिक ग्रुप एसओजी ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। एसओजी ने कल एक मुबैना सरगना को जयपुर से हिरासत में लिया था, जिसका नाम मनीष बताया जाता है। इससे कबल जराये के मुताबिक राजस्थान पुलिस एसओजी ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें मुबैना साजिश रचने वाला सिकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार शामिल है। इसके अगले दिन नीट का इम्तिहान देने वाले 4 तालिबे इल्मों को भी गिरफ्तार किया गया था। नासिक पुलिस ने भी नीट पेपर लीक मामले में मुलविस एक शख्स को हिरासत में लिया था। बीजेपी के सीनियर लीडर हेमंत बिस्वा सरमा ने मुसलसल दूसरी मुद्दते कार के लिए आसाम के वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया है। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा में वेटरिनरी कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किदा एक तकरीब में उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया।
2: मैं श्री हेमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लौं जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
0: डॉक्टर शर्मा के हमरा कानून साज असेंबली के 4 अरकान ने भी काबीनी वुजरा की हैसियत से हलफ लिया। इनमें बीजेपी के रामेश्वर तेली और अजनता नियोग, असम गण परिषद के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरो शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, मुख्तलिफ मरकजी वुजरा और एनडीए की हुक्मरानी वाली रियासतों के वुजरा आला ने इस तकरीब में शिरकत की। तमिलनाडु में जोसेफ विजय की क्यादत में 9 मुंतखब शुदा टीवी के हुकूमत के लिए कल अक्सरियत की आजमाइश से कबल सियासी सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीलियां रूनमा हुई हैं। एआईए डीएमके हुकूमत को हिमायत फराहम करने के मामले में 2 ग्रुपों में बच गई है। साबिक वजीर आला और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडापड़ी के पलानास्वामी की क्यादत वाले ग्रुप ने पार्टी के मेंबरान असेंबली को हिदायत दी है कि वो टीवी के हुकूमत की हिमायत न करें। सीनियर लीडर अग्री कृष्णामूर्ति ने खबरदार किया है कि किसी एमएलए ने पार्टी व्हिप की खिलाफ वर्जी की तो उसे पार्टी से बरतरफी का सामना करना पड़ेगा। इधर 30 मेंबरान असेंबली की हिमायत का दावा करने वाले एक और ग्रुप ने एसपी वेलोमनी को एआईए डीएमके की कानून साज पार्टी के लीडर के तौर पर चुन लिया है। ग्रुप के लीडरों ने साबिक वजीर सीवी शनमुगम की रिहायशगाह पर एक मीटिंग के बाद आज मीडिया से मुलाकात की। शनमुगम ने ऐलान किया कि यह ग्रुप अक्सरियती वोट के दौरान टीवी के हुकूमत की हिमायत करेगा। हुकूमत को अम्मा मक्कल मोनित्र कसगम के वाहिद एमएलए एस कामराज की हिमायत भी हासिल है, जिन्हें आज उनकी पार्टी ने बरतरफ कर दिया था। वजीर आला विजय कल से हिमायत करने वाली पार्टियों के लीडरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं ताकि अक्सरियत साबित करने की आजमाइश से कबल अपनी हिमायत को मजबूत कर सकें। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मुल्क भर की अदालतों की जदीदकारी और इसकी खातिर 40 से 50 हजार करोड़ रुपए की हुकूमती मदद हासिल करने के लिए एक खाका तैयार करने की गरज से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार की सरबराही में एक आला सतही कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। अदालतों के बुनियादी ढांचों से मुतालिक यह मुशावरती कमेटी हुकूमत की जानिब से मुसलसल माली मदद के जरिए अदालतों में बुनियादी ढांचे के हवाले से कमियों का इजाला करेगी। अवामी कामकाज से मुतालिक मरकजी महकमे के डायरेक्टर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल भी पैनल के मेंबरान होंगे। कमेटी को इस साल 31 अगस्त तक वजीर आजम की इक्तसादी मुशावरती कौंसिल के रुकन संजीव सानियाल को अपनी तफसीली मालूमात और रकम की जरूरियात दाखिल करने का काम दिया गया है। साइबर क्राइम से मुतालिक भारतीय तालमेल मरकज ने आज

0: रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं ताकि साइबर नौइयत की इक्तिसादी जालसाजियों से निपटा जा सके और बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट के पूरे मौशी निज़ाम में मूल खातों में कमी की जा सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत एक साइबर सिक्योर भारत की तश्कील की जानिब मुस्तकिल काम कर रही है। ताहम उन्होंने इस बात को उजागर किया कि साइबर जराइम को ख़त्म करने के सिलसिले में मूल खाते भी अब एक बड़ा चैलेंज हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत इस माह की 14 और 15 तारीख को ब्रिक्स वज़राए खारजा मीटिंग की मेज़बानी करेगा। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस मीटिंग की सदारत करेंगे। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वज़ारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मेंबर ममालिक के वज़राए खारजा बाहमी दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई मामलात पर नजरियात का तबादला करेंगे।
1: 14 और 15 तारीख को ब्रिक्स विदेश मंत्री की बैठक हो रही है जिसकी अध्यक्षता हम लोग कर रहे हैं। जहां तक देशों का आपने जिक्र किया, उनकी तरफ से कौन आएगा ये तो खैर उनको तय करना है, लेकिन जैसे जैसे लोग आएंगे आपको पास ले जाए कौन उनके नेतृत्व कर रहा है, कौन लोग उसमें भाग ले रहे हैं।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी के UAE के दौरे के बारे में बात करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि उनके दौरे के दौरान तवानाई की यकीनी फरहमी पर बातचीत होगी। जनाब जायसवाल ने वजीर आजम के नॉर्वे, स्वीडन, इटली और नीदरलैंड्स के दौरों के सिलसिले में भी मुत्तला किया।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद किए जाने से मुतालिक खबरों पर सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि इन खबरों से इस बात की तस्दीक होती है जो पहले से मालूम था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के दहशतगर्दाना हमलों के जवाब में एक मखसूस मुकर्रर और तालमेल से की गई कार्रवाई थी जिसका मकसद पाकिस्तान की शह वाली दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे और उसमें मदद फराहम करने वालों को नीस्तो नाबूद करना था।
1: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
0: कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत खुद को तमाम रुकावटों के मुकाबले अपने तौर पर मुस्तहकम करने की सलाहियत रखता है, ख्वाह वो रुकावटें इक्तिसादी हों, तकनीकी हों या जोग्राफियाई सियासी। नई दिल्ली में CII सालाना बिजनेस समिट 2026 में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया हर रोज मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम, जोग्राफियाई, सियासी और कारोबारी सूरत हाल की वजह से बहरान का सामना कर रही है, लेकिन भारत लगातार इस मुखालिफ सूरत हाल को मौके में तब्दील करता रहा है। भारतीय इकतसादी बुनियादों को इंतहाई वसी तर करार देते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत कभी दबाव में नहीं आया और चैलेंज भरे दौर में हमेशा ज्यादा मजबूत बनकर उभरा है। अहलकारों, अवामी शिकायतों और पेंशन के महकमे के वजीर डॉ जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 16वीं पेंशन अदालत की सदारत करेंगे। काफी वक्त से इल्तवा में पड़ी 985 शिकायतों पर, जिनका ताल्लुक 37 वजारतों और महकमों से है, अदालत में बरमौका हल के लिए गौर किया जाएगा। पेंशन और पेंशन याफ्तगान के महकमे ने बताया कि अब तक 15 पेंशन अदालतों के जरिए तकरीबन 28,000 मामलों पर गौर किया जा चुका है, जिसमें से तकरीबन 20,000 को बरमौका ही निपटा दिया गया, जिससे कामयाबी की 71% की शरह का इजहार होता है। स्कूली तालीम और खानदगी के महकमे के सेक्रेटरी संजय कुमार ने कहा कि NCERT और CBSE ने मुश्तरक तौर पर तीसरी जमात से आठवीं जमात तक के तलबा के लिए हिसाब किताब पर मबनी सोच और मसनूई ज़हानत से मुतालिक एक नई दरसियात तैयार की है। इस पहल के मुतालिक बात करते हुए जनाब कुमार ने कहा कि यह दरसियात पहले ही नाफिज कर दी गई है। उन्होंने मजीद मुतला किया कि NCERT 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के लिए भी मसनूई ज़हानत की निसाबी किताबें तैयार कर रही है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल के लिए राजस्थान में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। कल तक गुजरात, महाराष्ट्र और मगरबी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने कल के लिए साहली कर्नाटक में गर्मी और हब्स वाला मौसम रहने की पेशगोई की है। इस दौरान मौसमियात की एजेंसी ने आइंदा 2 से 3 दिनों के लिए शिमाल मशरकी खित्ते, अंडमान और निकोबार जजायर और अरुणाचल प्रदेश में बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। स्टॉक मार्केट में तेल की बढ़ी हुई कीमतों और अमेरिका ईरान कशीदगी के सबब मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से तकरीबन 2% की कमी आई है। सेंसेक्स 1456 पॉइंट्स या 1.92% की कमी के साथ 74,559 पर बंद हुआ। निफ्टी में 436 पॉइंट्स या 1.83% की कमी आई और ये 23,380 पर बंद हुआ। गैर मुल्की करेंसी की मार्केट में आज रुपए की कदर में 32 पैसे की कमी आई और $1 की कदर रिकॉर्ड कम होकर 95 रुपये 63 पैसे हो गई। बैडमिंटन में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल मर्दों की डबल्स की भारत की सरकर्दा जोड़ी थाईलैंड ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मर्दों के डबल्स के इफ्तिताही मुकाबले में इंडोनेशिया की जोड़ी को 21-19, 23-21, 21-10 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के ब्रायन जेरमी गॉन्टिंग और मोहम्मद हाइकल से होगा। बैंकॉक में इस साल BWF सुपर 500 टूर्नामेंट के लिए भारत ने 27 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल एक मजबूत दस्ता भेजा है। IPL में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के दरमियान मैच जारी है। गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के लिए 169 रन का निशाना रखा। गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। CBI ने नीट के मुबैना पेपर लीक मामले के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ रियासतों से कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमिलनाडु में AIADMK में फूट पड़ गई है। 30 मेंबरानी असेंबली पर मुश्तमिल बड़ा हिस्सा विजय के टीवी के हुकूमत की हिमायत के लिए तैयार है, कल अक्सरियत साबित की जाएगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आला अख्तियारात के हामिल एक कमेटी तश्कील दी है जो मुल्क भर में अदालतों की जदीदकारी का खाका तैयार करेगी। भारत जुमेरात से 2 रोजा ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बाहमी मफाद के आलमी और इलाकई मामलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: जारी है। विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत अधिकतम राज्यों को 6 माह का समय रहेगा अपेक्षित तैयारी के लिए।
1: आशुतोष जी, जिस तरह से मंत्री जी ने भी कहा कि 6 महीने का समय दिया गया है तैयारी करने के लिए, लेकिन जब तक जैसे कि 1 जुलाई से ये प्रावधान लागू होने हैं और तब तक मनरेगा के प्रावधान ही लागू रहेंगे, तो इसमें क्या कहीं कोई संशय है या कुछ इस तरह की बात है जिसमें लोगों को समझ नहीं आ रहा या राज्यों से कोई अपेक्षा समर्थन नहीं मिल पा रहा?
2: जो विपक्षी राज्य हैं उनकी ओर से ये सवाल उसी समय से उठने शुरू हुए थे कि इसमें अगर 40% राज्यों को खर्च करना पड़ेगा तो राज्यों पर भार पड़ेगा और वो समस्या होगी। तो जो विपक्षी राज्यों की ओर से ये समस्याएं आ रही, वो उनकी ओर से ये सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन जो दूसरी बातें हैं इसमें कि देखिए, जो नए प्रावधान इसमें किए गए कि भाई आप 125 दिन की का गारंटी देंगे, आपकी जो निगरानी व्यवस्था होगी, निगरानी तंत्र होगा, वो बिल्कुल जमीन पर मौजूद होगा। अगर 1 सप्ताह का साप्ताहिक कोई काम होता है तो सप्ताह खत्म होते ही उसे तत्काल पेमेंट होना चाहिए, इस तरीके की तैयारियां। और प्लस ये कि आप एक तैयारी इस लिहाज से करते हैं कि हमें किस तरीके के कंस्ट्रक्शंस करने हैं, क्योंकि इसमें पंचायतों की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। बहुत सारी योजनाएं जो पहले से चल रही थी उसको इसमें समाहित किया जाना है, तो इस तरीके की तैयारी की बात थी। देखिए, अदरवाइज तो क्या है, 2005 से ही ये योजना चल रही थी तो चल ही रही थी। जो बदलाव हुए उसको देखते हुए जो तैयारी राज्यों को करनी है, उस लिहाज से जो ग्रामीण विकास मंत्री ने जो बात कही, मुझे वही लगता है इसमें बहुत कंफ्यूजन की बात नहीं है।
1: और 1 जुलाई से इस तरह की योजना लागू हो रही है और इसमें जिस तरह से आपने भी बताया कि इसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, नए कामों को भी, और साथ ही साथ समय से भुगतान को सुनिश्चित किया गया है, और अगर भुगतान अगर समय से नहीं होता तो क्या किसी तरीके का उनको हर्जाना भी मिलने की इसमें कुछ प्रावधान है?
2: जी बिल्कुल, ये अच्छी बात इसमें है, क्योंकि देखिए जो पुराने रिकॉर्ड जो बताते हैं मनरेगा के टाइम से जो चलती रही थी बात, उसमें ये समस्या शुरुआत से आ रही थी कि काम कर लिया, भुगतान नहीं हो रहा है, महीनों महीनों पड़े हुए हैं, और फिर देने के लिए जो है सो मजदूर को रिश्वत देनी पड़ रही है, इस तरीके की समस्या। तो इसमें बाकायदा ये इंतजाम किया गया, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड में होगा ना कि आपने आज से काम शुरू किया और अगले 20 दिन तक पहले काम किया, ये रिकॉर्ड में है। और उसमें प्रोविजन है कि आपको जो है कार्य संपन्न होने के बाद मैक्सिमम जो है 15 डेज का दिया गया है कि उसके बीच में आपको भुगतान करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो पर डे के हिसाब से हर्जाना उसमें जोड़ना होगा। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि तभी तंत्र ज्यादा मजबूती से काम कर पाता है जब उसमें एक जवाबदेही तय कर दी जाती है। तो यहाँ जवाबदेही
1: जवाबदेही की आपने बात करी, तो इस बारे में भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कुछ जानकारी दी है।
0: विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत रोजगार देने के लिए भारत सरकार ने ही अपने बजट में 95,600 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया है। राज्यों ने भी अपने अपने बजट में विकसित भारत जी राम जी को लागू करने के लिए प्रावधान किया है, और केंद्र और राज्यों की कुल राशि अगर जोड़ ली जाए तो ये 1,51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। मजदूरों को भुगतान DBT के माध्यम से उनके बैंक या डाकघर में जो अकाउंट है उसमें किया जाएगा। कोशिश होगी कि 3 दिन के अंदर हो, लेकिन अधिकतम 15 दिन के अंदर प्रक्रियाएं पूरी करके उनके खाते में पैसा आ जाए। 15 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं आया, हमारे मजदूर भाई बहन विलंबित भुगतान के पात्र भी होंगे। जो देरी से देंगे तो उस पर एक निश्चित राशि अलग से देनी पड़ेगी, और मांगने पर अगर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा।
1: जिस तरह से मंत्री जी ने कहा कि अगर मांगने पर रोजगार नहीं मिलता तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो कहीं ना कहीं कोई संशय की गुंजाइश तो बनती नहीं है। ये योजना पहले की योजना से किस मायने में अलग देखते हैं आप?
2: 2-3 बड़े अंतर हैं अगर सिर्फ प्रावधान की बात करें। प्रावधान की सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर उसमें 100 दिन की गारंटी थी तो इसमें 125 दिन की गारंटी है, और राज्यों को ये तय करने का अधिकार दिया गया कि आप कौन सा लीन पीरियड मानते हैं और कौन सा ऐसा पीरियड मानते हैं जिसमें काम नहीं दिया जा सकता। ये दोनों चीजें हैं उसमें, रेनी सीजन है, अब पता चला उस बीच में कोई रोजगार मांगने आ जाए तो कैसे देंगे आप, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम होना है वहां पर। तो इस तरीके की छूट भी है राज्यों को। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है कि ये थोड़ी बहुत घटनाएं होती थी कई जगहों से कि काम मांगने पर भी काम नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि इंतजार करवाते थे वो जो जिलाधिकारी होते थे, वो ये देखते थे कि भाई अभी काम शुरू करना है तो फिलहाल इसको टाल कर रखो, जो एक होता है ना कि फिलहाल आप इसको नजरअंदाज करो, फिर कोई काम शुरू होगा तो फिर महीने भर बाद 45 दिनों बाद एक कोई काम शुरू हो रहा है तो उसमें जोड़ने की कोशिश होती थी। इसमें जो अच्छी बात है नई स्कीम में क्या है कि विभिन्न योजनाओं

0: के तहत बहुत सारे कार्य राज्य सरकारों के भी चल रहे होते हैं। गांव में हॉस्पिटल बन रहे हैं, कोई और काम हो रहा है, बहुत तरीके के काम, कोई तालाब खुदाई की बात हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको इससे जोड़ा जा सकता है। जो इन्होंने बात कही कि केंद्र और राज्यों के पैसे मिला करके केंद्र ने 95,000 करोड़ रुपीज का इसमें प्रोविजन किया है, और राज्यों की ओर से जो 40% की बात थी उसको जोड़ करके उन्होंने वो कहा। अब इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई व्यक्ति जो अनस्किल्ड लेबर, जिसकी बात हम करते हैं क्योंकि इसमें अनस्किल्ड लेबर को ही मिलता है, वो कोई काम मांगे और उसे काम नहीं दिया जा पाए, मुझे ऐसी कहीं गुंजाइश नहीं दिखती है। फिर भी अगर कहीं इस तरीके की स्थिति होती है तो मुझे लगता है वहां जरूर जानबूझकर लापरवाही हो रही है। ये एक सबसे बड़ा अंतर है कि बदलाव दिखेगा, मुझे लगता है।
1: जी, क्या इसमें राज्य सरकार या पंचायत के स्तर पे भी जो कुछ कार्य होते थे उसमें इसमें समाहित किया गया है उनको, और जिससे कि आपने अभी जैसे बताया
0: बिल्कुल
1: कि
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: सारे कार्य
0: जी
1: अलग अलग
0: उसमें
1: तरीके से चलते रहते थे लेकिन सबको एक समाहित करके जिसमें कि धन का आवंटन की कमी ना आए, क्योंकि एक बड़ा भाग इसमें बजट में भी इसके लिए प्रस्तुत किया गया है।
0: यही बात जो राज्य विरोध कर रहे थे इस साल, उनको यही समझाने की कोशिश हुई थी कि 40% ये आप पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ रहा है। अगर कोई भी निर्माण हो रहा है राज्य में तो वो राज्य के फायदे के लिए है या नहीं, तो राज्य के लिए फायदे के है तो राज्य उसमें हिस्सेदारी क्यों नहीं करेंगे। राज्य के लोगों के फायदे के लिए है कि नहीं कि उन्हें रोजगार मिलेगा, तो फिर राज्यों की हिस्सेदारी क्यों नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारी और जवाबदेही, ये दोनों चीज इसमें समाहित किया गया है, मुझे जिससे मुझे लगता है ये ज्यादा प्रभावी होगा, जमीन पर ये दिखना शुरू होगा।
1: जी, इस बारे में केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि एक बड़ी धनराशि इसके लिए रखी गई है और इसमें कौन कौन से कार्य कराए जा सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ जानकारी दी है।
2: 1,51,000 करोड़ से ज्यादा की विशाल धनराशि से गांव में इंफ्रा के सारे काम व्यापक पैमाने पर होंगे। जल संरक्षण के काम, गांव में अधोसंरचना के काम, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, खेत, सड़क, जो जरूरी है सब किए जा सकेंगे। आजीविका मूलक काम भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदी हो, FPOs हो, उनके लिए वर्किंग शेड जैसी कई अधोसंरचनाएं भी बनाई जा सकेंगी। और प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए भी संरचनाएं, जैसे रिटेनिंग वाल वगैरह, अगर नदी के किनारे कोई गांव है या जहाँ पानी भरता है तो वैसे काम भी लिए जा सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत जो काम करने वाले हमारे कर्मचारी साथी है उनको पर्याप्त और समय पर वेतन का भुगतान हो, इसके लिए प्रशासनिक व्यय को भी बढ़ा के 6 से 9% कर दिया गया है। मजदूरों की जिंदगी में एक नए सवेरे का आगाज हो रहा है और विकसित भारत के लिए विकसित गांव बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी का पूरा करने में यह योजना मील का पत्थर साबित होगा।
1: जैसे केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विकसित गांव बनाने की तरफ ये एक बड़ा कदम है, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि क्या गांव के आसपास ही उनको रोज़गार मुहैया कराया जाएगा, इसके लिए समर्पित होगा, या उसमें कहीं दूरी का भी कोई प्रावधान नहीं है?
0: जो इसकी मंशा है वो यही है कि गांव के आसपास, जो जहां के रहने वाले हैं उसके आसपास ही रोजगार मुहैया हो। और चूंकि बहुत बड़े स्तर पर कार्य चल रहे होते हैं हर जगह, कार्य और नए शुरू किए जा सकते हैं। अब जैसे इन्होंने बात कही कि जल संरक्षण, अब जल संरक्षण आज इसके की प्राथमिकता में शामिल है, तो जल संरक्षण को सबसे ऊपर रखा गया। इसके अलावा एक खूबसूरत बात इसमें जोड़ी गई है कि आपदा से निपटने की तैयारी। अब देखिए, आपदा से निपटने की तैयारी कई मिनिस्ट्री के लेवल पे चल रही है, जिसमें होम मिनिस्ट्री भी शामिल है और उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्री शामिल है, उसमें वाटर रिसोर्सेस मिनिस्ट्री भी शामिल है, केंद्र से लेकर के राज्य तक, यानी एक पूरे सहयोग की बात होगी। हर मिनिस्ट्री केंद्र से लेकर के राज्य तक एक दूसरे से सहयोग करके ऐसी अधोसंरचना का, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा होगा जो स्थायी होगा और वो हमेशा के लिए देश के काम आएगा। तो जाहिर तौर पर उसमें गांव तो शामिल होंगे ही। आप ये मान के चलिए कि अधिकतर जो इसमें लाभ मिलना है वो गांव को मिलना है। शहरों में तो बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट आ रहे होते हैं कहीं ना कहीं से, गांव में ही समस्या सबसे ज्यादा खड़ी होती है, जहां राज्य सरकार भी कई बार हिचकिचाती है और केंद्र सरकार से जो पैसे जा रहे हैं कई बार वो खर्च नहीं हो पाते हैं ढंग से, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इस स्कीम के जरिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा गांव को होगा, और इसीलिए बात हो रही है ना कि गांव, हम लोग तो हमेशा से बोलते रहे कि भारत गांव का देश है, बचपन से हम लोग ये पढ़ते भी रहे हैं। गांव विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा, यही इसकी मंशा है।
1: और शहरों पे भी जो
0: जी
1: ग्रामीण का जो बोझ होता है, अचानक से शहरों पे शहरीकरण का बोझ है, शायद उसको भी कम करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र का भी विस्तार होगा। एक महत्वपूर्ण जो मैं इसमें बात देख रहा था कि 5 किलोमीटर से अगर दूर होगा कोई कार्यस्थल तो उसके लिए मजदूरों को कुछ अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा, ये शायद

0: इस योजना को काफी आकर्षक बनाता है।
1: जी बिल्कुल। अब अगर कोई गांव का एक मजदूर, आप उसे 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक काम दे रहे हैं और दिन भर की दिहाड़ी के हिसाब से, जो चूंकि इसमें मिनिमम वेजेस का ही ये एक हिसाब होता है,
0: जी
1: उस पे तो वो बहुत आकर्षक कभी नहीं हो सकता। इसीलिए ये बात देखिए, जो पहली योजना थी मनरेगा, उसमें भी ये बात थी कि उस घर के आसपास, लेकिन उसमें कोई एक डिस्टेंस को डिमार्केट नहीं किया गया था कि हाँ 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो आसपास आप कुछ भी बोल सकते थे, 10 किलोमीटर भी बोल सकते थे। तो ये बताना कि भाई 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में हम, ये बहुत आकर्षक बनाता है। तो एक तो 125 दिन की गारंटी, दूसरा पेनल्टी अगर उनको समय पर भुगतान नहीं किया जाता है उनका जो वेतन है, और तीसरा गांव के बिल्कुल आसपास। ये तीनों चीजें हैं जो इसे बहुत ही आकर्षक बनाएगी।
0: जी, क्योंकि ये एक अधिनियम ऐसा है जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय योजनाओं का भी समन्वय है, तो एकल योजना बहुवित्त पोषण दृष्टिकोण को इससे काफ़ी बढ़ावा मिलता हुआ नज़र आता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि राज्य सरकार पे अलग योजनाएं चल रही हैं उसी मतलब की, और केंद्र सरकार भी इसी तरह की कोई योजना चला रही है, और शायद गांव के लेवल पर, पंचायत लेवल पे भी, स्थानीय स्तर पे भी इस तरह की कभी कभी योजनाएं आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका समावेशीकरण हो जाएगा तो उसमें बेहतर होगा कि एक तरह की योजना जिसकी कि खास तौर पे ज़रूरत है ग्राम के क्षेत्रों को, उसका पूरा भरपूर लाभ मिल सके।
1: बिल्कुल यही मंशा है, कन्वर्जेंस। जितनी स्कीम चल रही है उसका कन्वर्जेंस होना चाहिए, तभी क्या है कि आप पैसे को सही तरीके से खर्च कर पाएंगे और सही तरीके से निर्माण भी हो पाएगा। ये बहुत जरूरी इसका हिस्सा था और वही जरूरी है देश के लिए हर तरीके से।
0: चलिए, तो मोटे तौर पे ये मान लिया जाए कि गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार मिलेगा, जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा और चरम मौसम से बचाव संबंधी कार्य इसमें लागू किए जा सकेंगे, 100 दिन के मुकाबले 125 दिन का रोजगार इसमें सुनिश्चित किया गया है, और साथ ही साथ भुगतान भी समय पर मिले इसकी गारंटी भी की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो शायद इस योजना को पहली योजना से ज़्यादा आकर्षक बनाती हैं, और साथ ही साथ जिम्मेदारी भी तय करती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। आशुतोष जी, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: मंथन
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में देश से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। कल जयपुर से मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित की गई नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस करेगी।
4: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
3: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन ना करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्का

0: मुन्नेत्र कड़गम के एकमात्र विधायक एस कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा के रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरा शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच मुंबई शेयर बाजार में आज लगभग 2% की गिरावट आई। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि हरिहरन, अमसा करुणन और एम आर अर्जुन की जोड़ी तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा और श्वेतपर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 169 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 6 ओवर में 3 विकेट पर 32 रन बना लिए थे। हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation in the matter. The NEET UG 2026 examination was conducted by the National Testing Agency or NTA on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group SOG has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Earlier, as per sources, the Rajasthan Police SOG arrested 5 persons from Dehradun, including the alleged mastermind, Sikar-based career counselor Rakesh Kumar, on the 7th of May. 4 NEET aspirants were also arrested the following day. Nashik police have also detained a man in connection with the NEET paper leak case. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, those who are involved in the alleged NEET UG paper leak incident will be nabbed and jailed. He said NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam.
3: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है।
4: वी हैव हैंडेड ओवर दिस मैटर टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर इंक्वायरी एंड ऑल दोस इन्वॉल्वड इन सच रॉन्ग डूइंग विल बी सेंट टू जेल सो दैट स्टूडेंट्स फ्यूचर आर नॉट एडवर्सली अफेक्टेड इन एनी वे। अलॉन्ग विद दिस वी विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन अगेन इन अ कम्प्लीटली फेयर मैनर विद नो इरेगुलरिटीज ऑफ एनी काइंड एंड नो एडिशनल फी विल बी चार्ज फॉर द री एग्जामिनेशन।
3: फीस नहीं चार्ज करेंगे।
2: The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of tomorrow's floor test for the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Karyakram has split into two groups over extending support to the government.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसके अंतर्गत आज आपने आलम जमील बख्श की गई गजलें सुनी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम राग रंजन। इसके अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे आरुल सेठ का राग दरबारी में गायन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राग रंजन के अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में श्री अरुल सेठ का राग दरबारी में गायन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर रात्रि के 11 बजने को है। ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर होंगे अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी

0: to discuss opportunities for global collaboration through India's growing innovation ecosystem. India will host the BRICS Foreign Ministers meeting on the 14th and 15th of this month. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said during the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. In Maharashtra, 6 devotees were killed and around 15 others injured after a wall collapsed during a religious gathering in Jat Tehsil of district this afternoon. More than 300 devotees had gathered at the site when strong winds accompanied by heavy rain lashed the area. The injured have been admitted to hospitals in Jat and Sangli Civil Hospital for treatment. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has appealed to the people of the state for practical implementation of Prime Minister Modi's call. He urged citizens to reduce fuel consumption and avoid unnecessary purchase of gold. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Sunrisers Hyderabad by 82 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad tonight, chasing a target of 169 runs. Sunrisers Hyderabad were all out for 86 runs in 14.5 overs. Earlier put into bat, Gujarat Titans posted 168 runs for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 11:10 हुए हैं और वक्त हो चला है आपके मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत का। तो आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिवादन कार्यक्रम फिल्म संगीत में, जिसे लेकर आज मैं हूं आपके साथ सविता। और जैसा कि अब ये रात का पहर है, जब सब चीज़ें खामोश हो जाती हैं, पूरे दिन की थकान उतारने के लिए इंसान भी कहीं ना कहीं खामोशी का एक लहजा ले लेता है। खुद को शांत रखना भी बहुत बड़ी कला होती है, और रात का ये समय जब होता है तब कोशिश की जाती है कि पूरे दिन की जो थकान है, पूरे दिन की जो भाग दौड़ है, उससे थोड़ा सा सुकून ले लिया जाए। यानी उसको भूलकर कुछ एक ऐसा सुकून आए मन में कि अगले दिन के लिए एक नया जोश भर जाए, क्योंकि ये रात का समय ही है जब अपने आप को एक बार फिर से एनर्जेटिक बनाना होगा, क्योंकि कल सुबह एक नए दिन की शुरुआत होगी जहाँ कुछ नई बात होगी, कुछ नए साथ होंगे। लेकिन बात दिल में कोई रह जाए तो भाई बात कुछ बनी नहीं। बात तो तब है जब दिल की बात कह दी जाए। तो फिलहाल तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गीत के साथ और बात करेंगे कि क्या बात की जाए।

तो कुछ बातें ऐसी रहती हैं जो शायद हम किसी से कभी साझा ही नहीं कर पाते हैं। पूरा दिन गुजर जाता है लेकिन वो बातें खुद में ही रह जाती हैं। ऐसे में जब गर्दिश में तारे नजर आएं और यादों के सहारे एक सिलसिला बन जाए, एक बात जो दूर दूर तक कोई सुनने वाला ना हो लेकिन फिर भी कहने का दिल कर जाए, तो बेहतर रहता है कि अपने शब्दों को उस आसमां तक पहुंचा दिया जाए।

कुमार सानू साहब की आवाज़ में बड़ा सा खूबसूरत सा गीत था, और गीत बड़ा ही ज़बरदस्त इसलिए लगा है कि वो चांद को कह रहे हैं कि भाई मेरा चांद मुझे आया है नज़र। अब वो चांद कौन है, कैसा है, ये तो हमारी अपनी खुद की सोच पर निर्भर करता है। कभी कभार जब हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं होता है तो हम आसमां की तरफ देखकर भी अपनी बातें कह देते हैं, या यूँ कहिए कि जब अकेले होते हैं तो हमारा सबसे बेहतरीन जो साथी होता है वो शायद ये मौन आसमान ही होता है, जिसमें कुछ चित्र उकेरने लगते हैं हम, कुछ खुद से बनाने लगते हैं, कुछ बनी बनाई तस्वीरें हमें दिखाई देने लग जाती हैं। यूँ मानिए कि जो रात का सफ़र होता है ना, उस सफ़र में ये जो चांद है, ये जो आसमान है, ये हम सफ़र बन जाता है। और हम सफ़र की जब बात आती है तो हम कई तरह के सपने भी बुनने लग जाते हैं, और ये यकीन भी करने लग जाते हैं कि अब शायद वो घड़ी पास आ रही है जब हम पास आ रहे हैं।

जी हाँ, ज़र्रा ज़र्रा कह रहा है कि जो ज़रा ज़रा सा पास आए हैं आप, ये वाकई बड़ा ही ख़ास बन गए हैं। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में एक गीत सुना था अभी आपने। और जब कोई पास आ जाए तो फिर भाई तारीफ़ करने का भी मन करता है, मन करता है कि जो हमें महसूस हो रहा है उसके लिए उसे वो ज़रूर बता दिया जाए। और जब दिल की बात ज़ुबान पर आ जाती है तो कभी किसी की खूबसूरती की तारीफ़ शायद इस अंदाज़ में की जा सकती है।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ों में एक गीत सुना आपने फिल्म द जेंटलमैन से। और अब अगर बात करें आपके दिल की बात, तो आप सभी के संदेश हमें मिल रहे हैं। संदेश हमें मिला है अनिल कुमार वर्मा का। इनके साथ पूरा वर्मा परिवार है, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा, जो हमें संदेशा भेज रहे हैं कुरावली से। संदेशे के साथ जुड़े हुए हैं सुदर्शन शाह अपने पूरे परिवार के साथ, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह के साथ। नेपा नगर से इन्होंने संदेशा भेजा है। सतीश अनेजा जी जुड़े हमारे साथ बिमला अनेजा के साथ और ये हमें चंडीगढ़ सिटी से संदेशा भेज रहे हैं। तो राजेंद्र जाजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने कहा है कि किसी भी गीत में हमें बस शामिल कर लीजिएगा। इनके साथ हैं ऊषा जाजूरिया, चारू जाजूरिया और ये सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लीजिए हमारे साथ ये अकरम हुसैन प्रिंस डाक बाबू का भी एक संदेशा मिला है, जो कि हमें कोआथ बिहार से संदेशा भेज रहे हैं और इन्होंने हमें सीतामढ़ी से संदेशा भेजा। इनके साथ पूरा जो है

परिवार जुड़ा हुआ है। संदेश के साथ हमारे साथ हैं इसमें महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस डाक बाबू बेगम इशरत अकरम वसीम अकरम रुबीना वसीम आरिज वसीम नदीम अकरम शमीम अकरम और ममता रानी शर्मा पूनम कुमारी शर्मा कुवात बिहार से है शेख जफर हसैन और नरगिस जफर। संदेश के साथ जुड़े हुए बबलेश परिवार और बबलेश जी हमें संदेशा भेज रहे हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार डैनी पवार मनीष पवार रामदेवरा से दिनेश चौहान और डांगरी से है बाबूराम जयपाल और खलीफों को बावड़ी से खलीफों की बावड़ी से इन्हें संदेशा भेजा है खुदा बख्श खलीफा जो कि रेडियो दीवाना के नाम से जाने जाते हैं। तो आप सभी का संदेशा मिला बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। यास्मीन अनजान हमारे साथ जुड़े हुए हैं साइमा नवाज हसन नवाज बाबू अहमद मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत ये मोहम्मदीन मोहम्मद यासीन अनजान हमारे साथ जुड़े हैं अपने पूरे परिवार के साथ जो कि हमें झारखंड से संदेशा भेज रहे हैं। तो गुरमीत सिंह भी जुड़े हुए हैं साउथ एक्सटेंशन से संदेशा भेज रहे हैं गुरमीत सिंह मीता और कह रहे हैं गीत सुहाने लग रहे हैं। संदेश के साथ ये पाटिल परिवार जुड़ा हुआ है जो कि हमें छत्रपति संभाजी नगर से संदेशा भेज रहा है राजेश सांबले पाटिल राजदीप राजेश राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश मेहर अरोड़ा का संदेशा मिला है ममता अरोड़ा कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये श्रीगंगानगर राजस्थान से संदेशा भेज रहे हैं। तो राजकुमार डूढ़ी प्रमोद कुमार डूढ़ी पुष्पिंदर डूढ़ी जो कि हमें संदेशा भेज रहे हैं गांव फरासी हिसार से संदेशे के साथ पीआर नवानकर पूरा परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है निर्मला विशाल और नारायण इंगले राजकुमार खर्चे आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये हमें नरविला महाराष्ट्र से संदेशा भेज रहे हैं। संदेश के साथ हरिंदर शिंदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जसवीर जस्सी सीता और गीता जो कि पंजाब रथाना गांव से संदेशा भेज रहे हैं। अनिल मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल मोहन जी के साथ हैं उषा मोहन और टिल्लू नायक जो हमें पहाड़गंज मुल्तानी दांडा से संदेशा भेज रहे हैं। तो वहीं कैथल हरियाणा से मधु नायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदेश के साथ जायसवाल परिवार भी जुड़ा हुआ है शंकर लाल गणेश लाल शुभप्रसाद जायसवाल और साथ हैं कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल सभी का संदेशा हमें मिला है। और संदेश के साथ गगनेजा परिवार भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है गगनेजा परिवार हमें जलालाबाद वेस्ट से संदेशा भेज रहे हैं इनके साथ है सुरेश पूनम विशाल प्रिया और दिशानी और निमित। संदेश के साथ हमारा जो और सफ़र है वो बढ़ता ही जा रहा है अब्दुल गफ़ार डावर खुशनसीब अब्दुल हक डावर और संदेश के साथ जुड़े हुए हैं ज़ियाउल हक डावर मोहम्मद उमर डावर और ये हमें संदेशा भेज रहे हैं खंडवा से। छत्तीसगढ़ से हमारे पास संदेशा मिला है सोहन जोशी और पायल जोशी का। संदेश के साथ अब जो हमारे अगले श्रोता हैं वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ और ये हमें संदेशा भेज रहे हैं जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा और जतिंदर कौर गुरमीत सिंह और लवप्रीत कौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदेश के साथ जसबीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं जो कि जींद हरियाणा से जुड़े हैं। तो संदेशा हमें मिला है ये संदेशा हमें मिला है फागुराम यादव का जो हमें संदेशा भेज रहे हैं कह रहे कि कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। फागुराम यादव जी ने हमें संदेशा भेजा है कांकनेर संभल से संभलपुर से संदेशा भेजा है ज्योति यादव और ओजस्वी यादव इनके साथ हैं किशन सपकाल आशा सपकाल सोनिया सपकाल सायरा सपकाल का भी संदेशा मिला साथ है इनके विशाल सपकाल जो कि हमें शास्त्रीनगर बीड शहर से संदेशा भेज रहे हैं। तो नंद किशोर घाटे पूरा घाटे परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो संदेश के साथ हमारे साथ ये चौटाला हरियाणा से दारा सिंह शर्मा जी परिवार है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है दारा सिंह संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदेश में हमारे साथ जो अगला संदेशा हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं वो है फारूक अली खान का जो कि कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। स्वीटी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि स्वीटी सिंह जोड़ा स्वीटी दीवाना सुखविंदर सिंह जोड़ा स्वीटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से संदेशा भेज रहे हैं। कृष्णनगर से भी संदेशा हमें मिला है कृष्णनगर से संदेशा मिलने के अलावा हमारे पास ये एक संदेशा आया है परवेश कुमार का जिन्होंने हमें संदेशा कहाँ से लेकर भेजिए छत्तीसगढ़ पलारी से हमें संदेशा भेज रहे हैं प्रकाश वर्मा प्रिंस वर्मा निखिल यशस्वी वर्मा और संदेशे के साथ हमारे साथ हाजी मसर अली अंसारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मजर अली अंसारी जो हमें मऊ से संदेशा भेज रहे हैं।

हैं रज़िया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाज़ीपुर से है आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। संदेशा हमें मिला है उषा मोहन का और कह रही हैं कि कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, शानदार कार्यक्रम पेश करने के लिए बधाई स्वीकार करें, जो कि पीटीआई संसद मार्ग यानी हमारे बिल्कुल बगल से, हमें बहुत ही पास से, बहुत ही करीब से हमें संदेशा भेज रहे हैं अनिल मोहन जी। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब कार्यक्रमों को जो है अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और कार्यक्रम में अब अगले गीत की तरफ चलते हैं।

कुमार सानू की आवाज़ में बहुत ही पुराना ये गीत और गीत का संगीत उससे भी ख़ास नदीम श्रवण का दिया हुआ ये संगीत उस दौर में यानी कि 90 के दशक की बात की जाए तो बहुत ही लोकप्रिय रहा। फिलहाल तो लोकप्रियता का आलम ये है कि भाई हम जो हैं अब उस मुकाम पे आ गए हैं, क्योंकि ये भी तो लोकप्रियता है ना कि जब अब धीरे धीरे जब आप सफ़र शुरू करते हैं तो उसे अंजाम तक भी लेकर आ ही जाते हैं। तो इस सफ़र को अब उसके अंजाम तक लेकर आने का समय हो चला है। अब आपसे इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की मैं सविता लेती हूँ इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन छोड़े जा रही हूँ आपको एक बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, जल्द मिलेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संकेत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। इस समय मध्यरात्रि के 12 बजने को हैं। अब इन मीटरों पर हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुभरात्रि। लेकिन AIR लाइव न्यूज 24/7 पर हमारे प्रसारण अब भी जारी हैं। रात्रि के 12 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न राज्य स्थानों पर भेजी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे से पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने SP वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉ शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में उपस्थित रहे। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
3: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा, नेदरलैंड्स की यात्रा।

0: यहाँ पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 86 रन पर ऑल आउट हो गई। कगिसो रबाडा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। फुटबॉल में ईस्ट बंगाल ने लगातार दूसरी बार भारतीय महिला लीग का खिताब जीत लिया है। सीथू एफसी और सेसा फुटबॉल अकादमी के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ होने के बाद ईस्ट बंगाल ने खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: को ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: Chief Justice of India Suryakant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice Arvind Kumar to prepare a blueprint for the modernization of courts across the country and secure a government allocation of 40 to 50,000 crore rupees for the purpose. In Maharashtra, 6 devotees were killed and around 15 others injured after a wall collapsed during a religious gathering in Jat Tehsil of Sangli district yesterday. More than 300 devotees had gathered at the site when strong winds accompanied by heavy rain lashed the area. The injured have been admitted to hospitals in Jat and the Sangli Civil Hospital for treatment. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has appealed to the people of the state for the practical implementation of Prime Minister Modi's call. He urged citizens to reduce fuel consumption and avoid unnecessary purchases of coal. In IPL cricket, Gujarat Titans outclassed Sunrisers Hyderabad by 82 runs to take the top position in the points table in Ahmedabad. Chasing a target of 169 runs, Sunrisers Hyderabad were all out for 86 runs in 14.5 overs. Today, Royal Challengers Bengaluru will take on Kolkata Knight Riders in Raipur, Chhattisgarh at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
2: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात के 12:10 और ये समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम सुरों का सफरनामा का आनंद उठाने का। आज के सुरों का सफरनामा में आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स पर जो ना केवल गीतों में बल्कि गजलों की दुनिया का भी बेताज बादशाह रहा है, और वो हैं हम सबके चहेते मशहूर गजल और गीत गायक जगजीत सिंह। जी हाँ, हमारा आज का प्रोग्राम समर्पित है मशहूर गायक जगजीत सिंह को। जगजीत सिंह जो गजलों की दुनिया में वो चमकता हुआ सितारा है जो कभी अस्त नहीं हो सकता। इनके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इनके गाए हुए इस गीत के बाद।

श्रोताओं, फिर से स्वागत है आप सभी का सुरों का सफ़रनामा में। ये गीत अभी आपने सुना फिल्म प्रेम गीत से जगजीत सिंह की आवाज़ में। तो हम बात कर रहे थे गायक जगजीत सिंह पर। जगजीत सिंह का पूरा नाम था जगजीत सिंह धीमान। इनका जन्म 1941 को श्री गंगानगर राजस्थान में हुआ था। श्रीगंगानगर को श्रोताओं आज के समय में बीकानेर के नाम से भी जाना जाता है। जगजीत सिंह एक नामधारी सिख पंजाबी परिवार से संबंध रखते थे और इनके पिता सरदार अमर सिंह धीमान पीडब्ल्यूडी में सरकारी मुलाजिम थे। वैसे इनका मूलतः इनका गांव पंजाब के रोपड़ जिले में है। जगजीत सिंह ने अपनी स्कूली शिक्षा श्रीगंगानगर के खालसा हाईस्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज से पूरी की थी। इसके बाद इन्होंने जालंधर के डीएवी कॉलेज से आर्ट्स में स्नातक की डिग्री ली।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना फिल्म अर्थ से जगजीत सिंह की मधुर आवाज़ में। श्रोताओं, जगजीत सिंह जी कॉलेज के दिनों से ही आकाशवाणी जालंधर के लिए गीत गाना और संगीत बनाना शुरू कर चुके थे और बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर दी। इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनके पिता ने इन्हें पंडित छगनलाल शर्मा और मल्हार घराने के उस्ताद जमाल खान के पास हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेने के लिए भेज दिया। हालांकि जगजीत सिंह जी किशोरावस्था से ही मंच पर गीत गाने और संगीत बनाने लगे थे, लेकिन फिर भी इनके पिता चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर इंजीनियर बने, और शायद उसकी वजह ये भी थी कि ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे।

श्रोताओं, ये गीत भी अभी आपने फिल्म अर्थ से सुना। श्रोताओं, जगजीत सिंह को जब अपने पिता से प्रोत्साहन मिला तो इन्होंने अपनी संगीत की शिक्षा पूर्ण की और 1965 में बिना अपने परिवार को बताए ये बॉम्बे चले गए। वहाँ आकर इन्हें बहुत सारे अवसर मिले। शुरुआत इन्होंने एड के जिंगल्स गाकर की और उसके बाद पार्श्व गायकी के लिए इन्होंने संघर्ष करना शुरू किया। इसी के साथ श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म साथ साथ से ये गीत जगजीत सिंह की आवाज़ में।

श्रोताओं, वैसे जगजीत सिंह जी एक बहुत ही प्रतिभाशाली गायक रहे हैं। अपने 51 साल के करियर में इन्होंने हिंदी के अलावा उर्दू, पंजाबी, बंगाली, नेपाली, गुजराती और सिंधी भाषाओं में भी अनेकों गीत गाए हैं। 1987 में जब इनकी एल्बम बियॉन्ड टाइम रिलीज हुई, तभी से ये देश के नामचीन कलाकारों में शामिल हो गए थे। और इस एल्बम की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये देश की पहली डिजिटल रिकॉर्ड एल्बम थी। तो वाकई में मानना पड़ेगा कि जगजीत सिंह जी एक बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत बड़े गायक थे। इसी के साथ सुनते हैं जगजीत सिंह जी की आवाज़ में फिल्म दुश्मन से उनका गाया हुआ ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, जगजीत सिंह जब फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित होने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हीं दिनों इनकी मुलाकात चित्रा दत्ता नामक एक बंगाली युवती से हुई। हालांकि चित्रा दत्ता तलाकशुदा थी, ये अपने पति से पहले ही तलाक ले चुकी थी, लेकिन तब भी आखिरकार इन दोनों ने सन 1969 में शादी कर ली। इन दोनों ने एक साथ साथ बहुत सारी गजलें गाई हैं और इनका एक बेटा भी हुआ था जिनका नाम विवेक था। हालांकि जगजीत सिंह को एक गायक के तौर पर प्रसिद्धि सन 1977 से ही मिलनी शुरू हो गई थी, और क्योंकि 1977 में इनकी एक एल्बम द अनफॉरगेटेबल रिलीज हुई थी, और जिसके बाद ये एक गायक के तौर पर पूरी तरह से स्थापित हो गए थे। आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये मधुर गीत।

ये गीत श्रोताओं अभी आपने सुना फिल्म दुश्मन से। श्रोताओं, अगर बात जगजीत सिंह जी की निजी जिंदगी की जाए तो अन्य लोगों की भांति इनकी जिंदगी भी सुख और दुख से भरी रही थी। इनका बेटा विवेक महज 20 साल की उम्र में ही एक सड़क दुर्घटना में स्वर्ग सिधार गया था और बेटे की मृत्यु का दोनों पति पत्नी पर बहुत गहरा असर पड़ा था। दोनों को बहुत ही गहरा सदमा लगा था। जगजीत सिंह जी ने पूरे 1 साल तक गीत संगीत से दूरी बनाए रखी। वहीं इनकी पत्नी चित्रा सिंह ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी और साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि अब वो किसी भी गीत की रिकॉर्डिंग नहीं करेंगी। 1 साल तक जगजीत सिंह ने धीरे धीरे 1 साल बाद जगजीत सिंह ने धीरे धीरे संगीत की दुनिया में वापसी शुरू की और उसके बाद 2009 में इनकी सौतेली बेटी मोनिका चौधरी ने भी आत्महत्या कर ली थी। ये इनके लिए किसी बहुत बड़े सदमे से कम नहीं था। इसके अलावा जगजीत सिंह जी कई प्रकार की बीमारियों जैसे मधुमेह और हाइपरटेंशन से भी ग्रसित थे। 1998 और 2007 में 2 बार इनके दिल का ऑपरेशन हुआ था और जब इन्हें पहला हार्ट अटैक आया था तभी से इन्होंने सिगरेट पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। हालांकि इस सब का इन्होंने अपने काम पर कोई फर्क नहीं पड़ने दिया था, लेकिन फिर भी सेहत का ध्यान इन्हें रखना ही पड़ा था। इसी के साथ श्रोताओं, सुनते हैं फिल्म जॉगर्स पार्क से जगजीत सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, जगजीत सिंह जी की उपलब्धियों की फहरिस्त यूं तो बहुत लंबी है, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि उन्होंने कुछ टीवी शोज में भी काम किया था। इन्होंने टीवी सीरियल मिर्ज़ा गालिब में भी कुछ गज़लें गाई थी, और साल 2007 में इन्होंने संसद भवन के केंद्रीय सभागार में बहादुर शाह जफर की लिखी गज़ल लगता नहीं है दिल मेरा भी पेश की थी। श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म वीरजारा से ये गीत सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में।

ये बादशाह हम सबको अलविदा कहकर इस दुनिया से चला गया। जगजीत सिंह की मृत्यु 70 साल की उम्र में मुंबई में हो गई थी। आज भले ही वो हमारे बीच मौजूद ना हो, लेकिन अपनी गायकी और गज़लों के जरिए वे हमेशा हमारे बीच मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ आज का सुरों का सफ़रनामा इस गीत के साथ समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी की सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी की सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य वीआईपी काफिलों के वाहनों की संख्या तुरंत 50% कम करने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आई है। इस बीच कुवैत ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इसराइल की आयरन डोम रक्षा प्रणाली के इस्तेमाल की भी आधिकारिक

पुष्टि हुई है। रूस ने सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस सफल परीक्षण पर रूसी सेना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरमत दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिसाइल प्रणालियों में से एक है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जाना जाना।
1: अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म हमराही से मोहम्मद रफी साहब की आवाज में।

श्रोताओं, अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म अनमोल घड़ी से। गायिका है सुरैया।

सहमी घबराई ढलकी मोरी धानी चुनरिया ली मैंने अंगड़ाई बिन देखे शर्मा।

बेटा डर मत डर मत डर मत आहे भर मत भर मत भर मत चिंता कर मत कर मत कर मत यूं ही मर मत मर मत मर मत ओ बे

श्रोताओं, इसी के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म बैजू बावरा से मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी की सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। उसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलिवफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आई है। इस बीच कुवैत ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे, जहां उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 2 दिन की अहम शिखर वार्ता होगी। ये शिखर बैठक ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान से जुड़े संकट के कारण अमेरिका और चीन के संबंधों पर दबाव बढ़ गया है। ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरो मध्य बंद किए जाने और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी से चीन के तेल आयात और व्यापार पर असर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सांगली में कल दोपहर दीवार गिरने की घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इस हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनहानि की खबर से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य वीआईपी काफिलों के वाहन की संख्या तुरंत 50% कम करने के निर्देश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं, इसी के साथ आज का गीत बाहर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रात के 3 बजने को हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्र

0: सरकार आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा के मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर रहेगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक धार्मिक आयोजन के दौरान दीवार गिरने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 86 रन पर ऑल आउट हो गई। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. The NEET UG 2026 examination was conducted by the National Testing Agency NTA on the 3rd of this month. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of the flow test with the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Karagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs has elected S.P. Velumani as the AIADMK Legislature Party leader. Leaders of the faction met the media after a meeting at former minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. India will host the BRICS Foreign Ministers meeting on the 14th and 15th of this month. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said, during the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. Talking about Prime Minister Narendra Modi's visit to the UAE, Mr. Jaiswal said that during the visit, there will be talks on energy security.
2: During the visit to the United Arab Emirates as well, discussions will take place on energy security. Apart from this, there will be also the Nordic Summit along with the visits from Norway, Sweden, Italy and the Netherlands. These countries are major hubs of innovation and India is also doing significant work in the innovation ecosystem. Therefore, discussions will take place on all these issues and how we can help lead India towards the vision of a developed nation.
1: Chief Justice of India Surya Kant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice Arvind Kumar to prepare a blueprint for the modernization of courts across the country and secure a government allocation of 40 to 50,000 crore.

0: आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गजल और गीत का। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। सुबह के 4 बजने को हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना। कलाकार हैं तिसुरा वी रामाचंद्रन, पी रामा, एम बाला मुराजी कृष्णा।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

श्रोताओं, नाद ब्रह्म कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने एस बालाचंदर द्वारा बजाया वीणा पर राग नमन रयानी सुना। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई 2026 सुबह के 5:53 और 50 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब आगे आपको कुछ प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, जबकि 5:20 पर आप सुन सकते हैं देशभक्ति गीत।

5:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी। वहीं 6 बजे का वक्त होगा हिंदी में समाचार का। 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार।

6:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम वंदना, वहीं 6:40 पर आप सुनेंगे चिंतन, जिसके अंतर्गत आज आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विचारों के बारे में जानेंगे।

0: 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रामचरितमानस में बाल कांड, और अब प्रातः के 5 बजने को हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस करेगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी के सरकार के लिए आज होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटक

0: रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपड्डी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति में आई बाधाओं को प्रभावी रूप से संभाला है और ये सुनिश्चित किया है कि जनता पर इसका न्यूनतम बोझ पड़े। सीआईआई वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत ने घरेलू उत्पादन को 36,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन कर दिया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। श्री पुरी ने कहा कि भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल और एलएनजी तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार मौजूद है और आपूर्ति को लेकर कोई समस्या नहीं है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा के मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स की टीम 86 रन पर ऑल आउट हो गई। प्रतियोगिता में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मैं योगाचार्य सुनील गौतम आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी सांस का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी श्वास लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए। अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास, और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है। ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा, और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को, यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का, आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना, यही आपका एक ध्यान बन जाता है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है, दीर्घ श्वास के अभ्यास से बेहतरीन मेडिटेशन हो जाता है, हमें फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली फिट रखने में समर्थ। धन्यवाद।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी सांस भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और सांस भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, सांस छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे

कंधे की सीध में लाए। पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इंपैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति। इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई कंप्यूटर कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर स्वर रंजनी कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए विदुषी उमा गर्ग द्वारा गाया राग वैरागी।